मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में हिंदी समाचार हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाइची ने अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझा लक्ष्य के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। इसके अनुसार दोनों देशों की समृद्धि, सुरक्षा और आर्थिक भविष्य आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्यों के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में डिजिटल प्रयोग जैसे मुद्दे शामिल हैं। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह करेंगे। कार्यशाला में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी उपस्थित रहेंगे। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वोत्तम प्रथाएं साझा की जाएंगी और कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों पर चर्चा होगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो रही है। लाखों श्रद्धालु 57 दिन की यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी। श्रद्धालुओं का पहला जत्था कल कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के नुनवान और गांदरबल जिले के बालतल आधार शिविर पहुंचा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोगों के मारे जाने और 90 लोगों के घायल होने की खबर है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। उधर सीरिया में कल राजधानी दमिश्क के कैफे में हुए विस्फोट में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के गृह मंत्रालय ने बताया कि ये कैफे राजधानी के हिजाज जिले में पैलेस ऑफ जस्टिस से 100 मीटर की दूरी पर है। सुरक्षा बलों ने हमले की जांच के लिए इलाके की घेराबंदी की है। और स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। कल रात स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल और क्रोएशिया के बीच जारी मैच के विजेता से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हिंदी समाचार अभी हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। इस समय सुबह के 6:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवा रहे हैं समूह स्वर में ये देशगान।

0: असाधारण बना सकता है तो वह है निरंतरता। निरंतरता का अर्थ है बिना रुके, बिना थके और बिना हारे अपने लक्ष्य की दिशा में लगातार आगे बढ़ते रहना। यही गुण व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करता है, उसकी प्रतिभा को निखारता है और उसे सफलता के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाता है। आज के समय में अधिकांश लोग सफलता तो चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आवश्यक धैर्य, अनुशासन और निरंतर परिश्रम से बचना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि कम समय में अधिक सफलता मिल जाए। जब परिणाम तुरंत नहीं मिलते तो वे निराश होकर अपने प्रयास छोड़ देते हैं, जबकि प्रकृति का नियम है कि हर महान कार्य समय और निरंतर प्रयास की मांग करता है। बीज बोने के तुरंत बाद वृक्ष नहीं बनता, बल्कि उसे मिट्टी, जल, धूप और वर्षों की निरंतर वृद्धि की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार मनुष्य का व्यक्तित्व भी लगातार सीखने, मेहनत करने और संघर्ष करने से विकसित होता है। निरंतरता केवल मेहनत करने का नाम नहीं है, बल्कि हर परिस्थिति में अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित रहने का नाम है। जीवन में अनेक कठिनाइयाँ आती हैं, कभी असफलता मिलती है, कभी निराशा घेर लेती है और कभी परिस्थितियाँ हमारे विरुद्ध दिखाई देती हैं। ऐसे समय में जो व्यक्ति अपने संकल्प को नहीं छोड़ता और लगातार प्रयास करता रहता है, वही अंततः सफलता का अधिकारी बनता है। असफलता किसी भी यात्रा का अंत नहीं होती, बल्कि वह सफलता की ओर बढ़ने का एक महत्वपूर्ण पड़ाव होती है। निरंतर प्रयास करने वाला व्यक्ति हर असफलता से सीखता है और पहले से अधिक मजबूत होकर आगे बढ़ता है। प्रकृति हमें निरंतरता का सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत करती है। सूर्य प्रतिदिन बिना किसी अवकाश के उदय होकर संसार को प्रकाश देता है। चंद्रमा अपने निश्चित समय पर अपनी कला बदलता है। नदियां चट्टानों से टकराने के बाद भी अपना मार्ग नहीं बदलती, बल्कि निरंतर बहते हुए अंततः समुद्र तक पहुँच जाती हैं। ऋतुओं का परिवर्तन भी एक निश्चित क्रम में होता है। यदि प्रकृति अपने नियमों में निरंतर ना रहे तो संपूर्ण सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए प्रकृति का प्रत्येक दृश्य हमें यह प्रेरणा देता है कि जीवन में सफलता का मार्ग निरंतरता से होकर भी गुजरता है। शिक्षा के क्षेत्र में निरंतरता का महत्व अत्यंत अधिक है। कोई भी विद्यार्थी केवल परीक्षा के दिनों में पढ़कर उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त नहीं कर सकता। प्रतिदिन नियमित अध्ययन, समय का सदुपयोग और लगातार अभ्यास ही उसे ज्ञानवान बनाते हैं। इसी प्रकार खेलों में खिलाड़ी वर्षों तक कठिन अभ्यास करते हैं, तब जाकर वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश का नाम रोशन करते हैं। संगीत, नृत्य, साहित्य, विज्ञान, चिकित्सा, प्रशासन, व्यवसाय अथवा किसी भी क्षेत्र में सफलता का आधार निरंतर अभ्यास और अनुशासित जीवन ही होता है। महान वैज्ञानिक, साहित्यकार, खिलाड़ी और समाज सुधारकों का जीवन इस सत्य का परिणाम है। उन्होंने अनेक कठिनाइयों का सामना किया, अनेक बार असफल हुए, आलोचनाएं भी झेली, लेकिन अपने लक्ष्य से कभी विचलित नहीं हुए। उनकी सफलता का रहस्य कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि वर्षों तक किया गया सतत परिश्रम और अटूट आत्मविश्वास था। यही कारण है कि आज उनका जीवन पूरी मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। निरंतरता केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज और राष्ट्र के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निरंतर पालन करता है, तब एक सशक्त और विकसित राष्ट्र का निर्माण होता है। शिक्षक यदि नियमित रूप से विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें, किसान निरंतर परिश्रम करके अन्न उत्पादन करें, सैनिक हर राष्ट्र की सुरक्षा के लिए तत्पर रहे, चिकित्सक सेवा भावना से कार्य करें और प्रत्येक नागरिक अपने दायित्वों का पालन करें, तो देश प्रगति के नए आयाम स्थापित करता है। इसलिए निरंतरता केवल व्यक्तिगत गुण नहीं, बल्कि राष्ट्रीय विकास की आधारशिला भी है। निरंतरता वह दीपक है जो संघर्ष के अंधकार में भी आशा का प्रकाश फैलाता है। जो व्यक्ति निरंतर चलते रहने का साहस रखता है, वही अपने सपनों को वास्तविकता में बदलता है और अपने जीवन को प्रेरणा का उदाहरण बना देता है।
1: निरंतरता, इस विषय पर आप सुन रहे थे कार्यक्रम विचार बिंदु। संकलन एवं वाचन स्वर था विक्की गुप्ता का। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:35 होने को हैं और लीजिए अब प्रस्तुत है आपके लिए कार्यक्रम रामचरितमानस का गायन। भाग क्रमांक 113 है और इसमें मुख्य गायन स्वर महेंद्र कपूर और भूपेंद्र सिंह का है। इसके संगीत संयोजक हैं

0: इस भक्ति गीत के साथ ही आज की आराधना यहीं संपन्न होती है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:30 होने वाले हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विचार बिंदु। विषय है निरंतरता। संकलन एवं वाचन स्वर है विक्की गुप्ता का।
1: और कदम कदम से मंजिल मिलती है। यह कहावत हमें जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संदेश देती है कि महान उपलब्धियां एक ही दिन में पर्याप्त नहीं होती, बल्कि निरंतर किए गए छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम होती हैं। मनुष्य के जीवन में अनेक गुण होते हैं, परंतु यदि कोई एक गुण उसे साधारण से

दशरथ कुमारों की बारात कई दिनों पहले जनकपुर पहुंच चुकी है। योग लग्न देखकर राजा जनक की मंडली के लोग बारातियों को आमंत्रित करने जनवा से पहुंचे। गुरु वशिष्ठ से आज्ञा ले कुल की रीतियां संपन्न कर स्वयं अवध नरेश मुनियों तथा साधुओं को साथ लेकर चले। राजा दशरथ का भाग्य तथा वैभव देख ब्रह्मा सहित देवगण उनकी सराहना कर रहे हैं। शिव ब्रह्मा आदि देवताओं की टोलियां अपने अपने विमानों पर सवार होकर फूल बरसाती श्री राम का विवाह देखने चल पड़ी हैं। विवाह मंडप की अद्भुत रचना अलौकिक साज श्रृंगार तथा अयोध्या वासियों के सुंदर रूप के सामने देवता तथा देवांगनाएं मानो प्रभाहीन हो गई हैं। ब्रह्मा को विशेष आश्चर्य होता है क्योंकि वहां उस मंडप में उन्हें अपनी कोई रचना दिखाई नहीं देती। चकित देवताओं को भगवान शंकर सांत्वना देते हैं कि विचार कर देखो, ये सीता तथा अखिल ब्रह्मांडों के परमेश्वर साक्षात भगवान का शुभ विवाह है। प्रसन्न मन और पुलकित शरीर वाले राजा दशरथ के साथ ब्राह्मणों तथा साधु संतों की मंडली ऐसी शोभायमान है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हैं। इसी प्रकार चारों कुमारों की शोभा निराली है, मानो अपने चार अवयवों के साथ संपूर्ण मोक्ष ने शरीर धारण कर लिया है।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस का गायन। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 6:45 हो रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बात। जानकारी का विषय है भिंडी में रोग प्रबंधन।
1: किसान भाइयों, सब्जियों का हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। भिंडी भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल है। भिंडी के फल को मुख्यतः सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। भिंडी मुख्य रूप से रोगियों के लिए बहुत ही लाभदायक होती है, परंतु इसके अन्य भागों जैसे तना इत्यादि को उद्योगों में भी प्रयोग किया जाता है। अन्य फसलों की तरह भिंडी में भी अनेक कीड़ों एवं बीमारियों का प्रकोप होता है। तना एवं फलभेदक, यह कीट वर्षा भर सक्रिय रहता है। व्यस्क कीट मध्यम आकार का पतंगा होता है, जिसका सिर एवं वक्ष पीले रंग का होता है। मादा समागम के पश्चात रात में या प्रातः पौधे की पत्तियों, फूलों, प्रारोहों एवं फलों पर एक एक करके 200 से 400 तक अंडे देती है, जो गोल व नीले हरे रंग के होते हैं। अंडे गर्मियों में 3 से 4 दिन में तथा जाड़ों में 1 सप्ताह में फूट जाते हैं। सुंडियों के पुष्ट भाग पर छोटे छोटे कड़े बाल होते हैं और बीच बीच में काली तथा नारंगी धब्बे वाली धारियों। सुंडियों के पृष्ठ भाग पर छोटे छोटे कड़े बाल होते हैं और बीच बीच में काली तथा नारंगी धब्बे वाली धारियां भी पाई जाती है, इसलिए इसे धब्बों वाली या चित्तीदार सुंडी भी कहते हैं। गर्मियों में 19 से 21 दिन का व जाड़ों में 30 से 39 दिन का होता है। साल में इसकी 12 पीढ़ियां पाई जाती है। इस कीट की सुंडियां भिंडी के फलों, फूलों, कलियों एवं पौधों की कोमल टहनियों को क्षति पहुंचाती है। फसल के प्रारंभ में ही जब पौधे 2-3 सप्ताह के होते हैं, उसी समय सुंडियां निकलकर पौधों के प्ररोह में छिद्र करके प्रवेश कर जाती है। परिणाम स्वरूप वे मुरझा जाते हैं। इस तरह लगभग 50% तक फसल नष्ट हो जाती है। जब पौधे पर फूल, कलियां एवं फल आने लगते हैं तो सुंडियां उनमें प्रवेश कर जाती है। प्रवेश क्षेत्र कीट के मल मूत्र से भरे देखे जा सकते हैं। इस कीट के प्रकोप से कलियां नहीं खिलती, फूल झड़ने लगते हैं एवं फल दूषित, छोटे तथा खाने योग्य नहीं रह जाते। इसके प्रबंधन के लिए किसान भाइयों प्रभावित शाखा व फल को तोड़कर नष्ट कर दें। प्रकाश प्रपंच व फेरोमोन ट्रैप की व्यवस्था करें। फसल की प्रारंभ से निगरानी रखें। जैसे ही पौधे पर कीट का आक्रमण दिखाई दे तो ट्राइकोकार्ड नामक परजीवी कीट के 1,00,000 अंडे प्यूपा प्रति हेक्टर की दर से 5-6 बार 15 दिन के अंतराल पर फसल में छोड़ना चाहिए। अधिक प्रकोप होने पर कीटनाशक लेमडा साइहेलोथ्रिन 5 EC की 800 मिलीलीटर मात्रा या फेंटोएट 50 EC की 1 लीटर मात्रा का 500 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टर की दर से छिड़काव करना चाहिए। सफ़ेद मक्खी, इस कीट की अर्भक जू की तरह कोमल और पीले रंग के होते हैं। ये पत्तियों की निचली सतह पर चिपके रहते हैं। व्यस्क पंख युक्त 1 से 1.5 मिलीमीटर लंबे तथा पीली सफ़ेद रंग के होते हैं। इसके पंख चमकीले होते हैं। यह कीट वर्ष भर सक्रिय रहता है। मादा पत्तियों की सतह पर 100 से 150 अंडे देती है। अंडों के फूटने के साथ ही अभ्रक अपने मुखांग पत्तियों में छुपकर रस चूसते हैं और 3 निर्मोचन कर प्यूपा में बदल जाते हैं। प्यूपा अवस्था वातावरण के अनुसार 9 दिन से 12 दिनों तक होती है। संपूर्ण जीवन चक्र गर्मियों में लगभग 2 सप्ताह एवं जाड़ों में 4 सप्ताह होती है। इस कीट के अभ्रक एवं व्यस्क दोनों ही पत्तियों का रस चूसकर क्षति पहुंचाते हैं, जिससे पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और पौधे की बढ़वार रुक जाती है। पौधे छोटे रह जाते हैं और उनमें फूलों तथा फलों की संख्या कम रह जाती है। इसके साथ साथ यह कीट अपने शरीर से मीठा पदार्थ निकालता है, जिसके ऊपर काली फफूंदी उग जाती है, जो प्रकाश संश्लेषण में बाधा पहुँचाती है। फसल को दूर से देखने से रोग युक्त एवं काले रंग के दिखाई देती है। यह कीट भिंडी के पीला सिरामोजिक रोग के विषाणु के वाहक का कार्य भी करती है। इसके प्रबंधन के लिए किसान भाइयों खेत के पास उगे हुए परपोषी पौधे तथा खरपतवारों को नष्ट कर देना चाहिए। पीले चिपचिपे ट्रैप की व्यवस्था करें। कीटनाशी थायोमिथाक्सोम 25 WP या इमिडा क्लोरोप्रिड 17.8 SL की 125 मिलीलीटर 1 लीटर मात्रा का 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टर छिड़काव करें।

0: इस तरह किसान भाइयों भिंडी के कीटों एवं रोगों का एकीकृत प्रबंधन करके अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बात, मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलो हर्ट्स और FM बैंड 100.2 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:50 हो रहे हैं। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज के प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की एक संक्षिप्त रूपरेखा। श्रोताओं, अब से कुछ ही समय बाद सुबह 7 आप आनंद ले सकेंगे लोकगीतों के कार्यक्रम गूंजे जंगल का। सुबह 7:15 पर गैर फिल्मी गीतों गजलों के कार्यक्रम सुगम संगीत का प्रसारण किया जाएगा। जनसंपर्क से प्राप्त सूचनाओं और पुराने फिल्म संगीत के कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा का प्रसारण किया जाएगा 7:30 पर।

सुबह 8:30 पर इनसे मिलिए कार्यक्रम रायपुर से अनुप्रसारित किया जाएगा। बातों और गीतों के कार्यक्रम गुंजन का आप आनंद ले सकेंगे सुबह 9:00। सुबह 11:05 पर आप सुन सकेंगे श्रोताओं के समीक्षात्मक पत्रों और ईमेल पर आधारित आपका मनपसंद कार्यक्रम चिट्ठी पत्री। दोपहर 12:00 एनसीईआरटी और सीआईईटी द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग का अनुप्रसारण किया जाएगा। एक ही शीर्षक पर आधारित फिल्म संगीत के कार्यक्रम चयन का आप आनंद ले सकेंगे दोपहर 12:30 पर। दोपहर 1:05 पर खेती की बात का पुनः प्रसारण किया जाएगा। ग्रामीण महिलाओं के कार्यक्रम घर गोसाई का प्रसारण होगा दोपहर 1:10 पर, जिसमें चर्चा का विषय होगा बारिश का पानी संजोने के उपाय और नई कृषि पद्धति का लाभ, साथ ही यातायात नियम और उनकी सावधानियां। दोपहर 1:40 पर श्रोताओं के ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत के कार्यक्रम ईमेल की गूंज का आप आनंद ले सकेंगे। गैर फिल्मी गीतों और गजलों के कार्यक्रम गीत गंधा का प्रसारण होगा दोपहर 2:30 पर।

0: शाम 5 बजे से हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होगी, जिसमें शाम 5 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। शाम 5:05 पर गैर फिल्मी गीतों और भजनों का कार्यक्रम होगा भजन संध्या। शाम 5:30 पर युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवाणी प्रसारित किया जाएगा, जिसमें आप सुनेंगे हेलो फ्रेंड्स। ये तो थी हमारे केंद्र से प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। सुबह के 6:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में संस्कृत समाचार हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: इयम् आकाशवाणी।

0: सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तस्य जापानस्य समकक्षीया साने ताकाइची इत्येषः पाकिस्तानात् सीमापारे आतंकवादं समेत्य सर्वेषु रूपेषु अभिव्यक्तिषु आतंकवादस्य हिंसक उग्रवादस्य च निन्दां कृतवन्तौ। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलनस्य संयुक्त वक्तव्ये द्वौ नेतारौ गतवर्षे अप्रैल मासस्य द्वाविंशति दिनांके जम्मू कश्मीरस्य पहलगाम इत्यत्र जातम् आतंक्याक्रमणं कट्वा लोचितवन्तौ। उभौ प्रधानमन्त्रिणौ हिन्द प्रशांत क्षेत्रस्य उभयोः देशयोः मध्ये सहयोगं विस्तारयितुं प्रतिबद्धतां पुनरुद्घाटितवन्तौ।
1: आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं। एक फ्री प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की है। इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
0: भारत जापान विशेष सामरिक वैश्विक सहभागित्वस्य आधार स्तंभेषु अन्यतमार्थिक सुरक्षा प्रधानतायाः विषये भारत जापान देशौ परस्परं प्रतिबद्धतां पुनः दृढीकृतवन्तौ। आर्थिक सुरक्षा सहकार विषये भारत जापान संयुक्त घोषणापत्रे अवदतां यत् आर्थिक सुरक्षा सहभागित्वं परस्पर विश्वासस्य सहभागी मूल्यानां संबद्ध हितानां च आधारेण वर्तते। उभयोः पक्षयोः समृद्धिः सुरक्षा आर्थिक भविष्यं च सुदृढतया परस्परं सम्बद्धमस्ति इति मान्यता अस्ति। अद्यतनीकृतस्य मुक्तस्य च इंडो पैसिफिक इत्यस्य तथा च म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट इन द रीजन्स महासागर इति उपक्रमस्य समन्वयः उभयोः पक्षयोः कृते आर्थिक सुरक्षा सहकारं वर्धयितुम् आवश्यकं प्रोत्साहनं प्रददाति इति घोषिता अस्ति। लोकसभाध्यक्षः ओम बिरला अद्य कोलकातायां पश्चिमबंगाल विधानसभायाः नवनिर्वाचित सदस्येभ्यः द्विदिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रमस्य उद्घाटनं करिष्यति। अस्य कार्यक्रमस्य उद्देश्यं नवनिर्वाचितेभ्यः सदस्येभ्यः समिति व्यवस्था वित्तीय निरीक्षणं संसदीय विशेषाधिकाराः विधायकेषु उदयोन्मुख आंकिकीयोपक्रमाः इत्यादीनां संसदीय विधायी कार्याणां विविधपक्षेभ्यः परिचय प्रदानं वर्तते। पंचायती राज मंत्रालयः षोडश वित्तायोगस्य अनुशंसानां विषये विचारार्थम् अद्य नवदिल्ल्यां राज्यस्य पंचायती राज मंत्रिणां एकां राष्ट्रिय कार्यशालाम् आयोजयति। कार्यशालायाः अध्यक्षतां केन्द्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंहः केन्द्रीय राज्य मंत्रिणः प्रोफेसर एसपी सिंह बघेलस्य उपस्थितौ करिष्यति। कार्यशालावधौ चर्चा वित्त मंत्रालयस्य व्यय विभाग द्वारा प्रख्यापितस्य षोडश वित्तायोग ग्रामीण स्थानीय निकायानुदानस्य कार्यान्वयनाय परिचालन दिग्निर्देशेषु केन्द्रता भविष्यति। वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा अद्य जम्मू कश्मीरस्य पहलगाम बालटाल मार्गयोः आरभ्यते। सप्तपञ्चाशत् दिवसीयायां तीर्थयात्रायां सम्पूर्णे भारतदेशात् लक्षोपलक्षाः भक्ताः अमरनाथ गुहातीर्थं प्रति पवित्र यात्रां करिष्यन्ति इत्यपेक्षा अस्ति। तीर्थयात्रिणः भगवतः शिवस्य आशीर्वादं प्राप्तुं प्राकृतिकरूपेण निर्मितं हिमशिवलिङ्गं द्रष्टुं च प्रायः 88.3 सहस्र मीटर परिमितेषु ऊर्ध्वतायां स्थित पवित्र अमरनाथ गुहायां गच्छन्ति। आईसीसी महिला विंशति प्रतिविंशति विश्व चषक क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां इंग्लैंड दलेन साउथ अफ्रीका दलं 40 धावनांकैः पराजितम् इति वार्ताः।
2: संस्कृत समाचार अभी हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे।

मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 7 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम गूंजे जंगल। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए सुषमा तिर्की और साथियों के स्वरों में सादरी लोक भाषा में ये हकवा गीत।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 7:15 हुए हैं। लीजिए अब पेश है कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम का पहला नगमा पेश है जगजीत सिंह की आवाज में।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। गालिब के लिए ही ये गज़ल पेश है गुलाम अली की आवाज़ में।

0: श्रोताओं, इसी गज़ल के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 7:30 होने वाले हैं। लीजिए प्रस्तुत है जनसंपर्क से प्राप्त समाचार और पुराने फिल्म संगीत का कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा।
1: जनसंपर्क से प्राप्त सूचना
2: और पुराने फिल्मी गीतों पर केंद्रित कार्यक्रम
3: नमस्कार सरगुजा।
4: नमस्कार सरगुजा।

सुन सकते हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर भी इसकी पहुंच है, ताकि हर जानकारी हो आपके हाथ में। इस कार्यक्रम से मिली जानकारी के कारण हाथी प्रभावित क्षेत्रों के लोग सुरक्षित रास्ते अपनाकर अपने घर सुरक्षित लौट रहे हैं। अब जंगल या गांव के किसी भी हिस्से में निकलने से पहले हाथियों की सही स्थिति जानने का सबसे भरोसेमंद माध्यम है हमर हाथी हमर गोट। सुनते रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। हमर हाथी हमर गोट, जहां हर सूचना है आपकी सुरक्षा के लिए। जानकारियां अभी और हैं, पर आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत। फिल्म का नाम है गुलामी। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की। गीत लिखा है गुलजार ने और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

बहुत बहुत स्वागत है साथियों, आप सभी का नमस्कार सरगुजा कार्यक्रम में। कार्यक्रम के आज के अंक में मैं हूं स्वाति। आइए जानते हैं कुछ जानकारियां और समाचार। जंगली हाथियों की गतिविधियों और उनके संभावित विचरण क्षेत्रों की सटीक जानकारी देने वाला विशेष कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट प्रतिदिन शाम 5 बजे आपके अपने 4 आकाशवाणी केंद्रों अंबिकापुर, रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ से प्रसारित हो रहा है। ये कार्यक्रम FM रेडियो चैनलों पर भी उपलब्ध है, जिसे आप आसानी से रेडियो सेट, मोबाइल फोन या गाड़ियों में चलते फिरते भी

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा। अगला समाचार इस प्रकार है। विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान अवकाश हुआ प्रतिबंधित। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 13 जुलाई से 17 जुलाई 2026 तक आहूत है। जिले में प्राप्त होने वाले विधानसभा प्रश्नों का उत्तर समय सीमा में तैयार कर शासन स्तर पर प्रेषित किया जाना आवश्यक है। इस स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर द्वारा जारी आदेशानुसार जिले में पदस्थ समस्त शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों के समस्त प्रकार के अवकाश पर प्रतिबंध लगाया गया है। विधानसभा सत्र के दौरान समस्त अधिकारी और कर्मचारी मुख्यालय में रहना सुनिश्चित करेंगे। अति आवश्यक कार्य या अपरिहार्य कारणों से अवकाश पर जाने या मुख्यालय छोड़ने की स्थिति में संबंधित कार्यालय के अधिकारी या कर्मचारियों के अवकाश की स्वीकृति कार्यालय प्रमुख के द्वारा की जाएगी। इसके अलावा कार्यालय प्रमुख या विभाग प्रमुख कलेक्टर से लिखित अनुमति प्राप्त करने के बाद ही अवकाश पर प्रस्थान करेंगे। सूचनाएं और भी हैं, लेकिन आइए अब सुनते हैं फिल्म गुमराह का ये गीत महेंद्र कपूर की आवाज़ में। गीत लिखा है साहिर लुधियानवी ने और संगीत है रवि का।

जिले में विभिन्न भवनों और संस्थानों की फायर सेफ्टी और सुरक्षा के लिए जांच दल गठित। कलेक्टर ने जिले में स्थित विभिन्न बहुमंजिला आवासीय भवनों, कोचिंग सेंटरों, ट्यूशन कक्षाओं, होटल, लॉज, मॉल, व्यावसायिक परिसरों एवं अन्य सार्वजनिक भवनों की सुरक्षा में प्रवेश एवं निकास, फायर सेफ्टी की जांच हेतु जांच दल का गठन किया है, जिसमें अनुविभागीय दंडाधिकारी अंबिकापुर अध्यक्ष होंगे। वहीं नगर पुलिस अधीक्षक, कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग, कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग, कार्यपालन अभियंता नगरपालिक निगम और अग्निशमन अधिकारी SDRF सदस्य होंगे। कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा में अगला समाचार है जनपद पंचायत अंबिकापुर से। जनपद पंचायत अंबिकापुर के सामान्य सभा एवं सामान्य प्रशासन समिति की बैठक आज। जनपद पंचायत अंबिकापुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि 3 जुलाई 2026 को जनपद पंचायत अंबिकापुर की सामान्य प्रशासन समिति की बैठक सुबह 11:30 पर और सामान्य सभा की बैठक दोपहर 1 बजे से कार्यालय जनपद पंचायत अंबिकापुर के सभाकक्ष में आयोजित की गई है। उन्होंने बैठक में सर्व संबंधितों को निर्धारित तिथि और समय पर उपस्थित होने का आग्रह किया है। अगला समाचार है एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय मैनपाट में प्रवेश से संबंधित। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय मैनपाट में कक्षा 11वीं के लिए प्रवेश आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय मैनपाट जिला सरगुजा में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 11वीं में प्रवेश हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। विद्यालय में कक्षा 11वीं के लिए कुल 24 रिक्त सीटें उपलब्ध हैं, जिनमें गणित एवं विज्ञान संकाय के लिए 10, वाणिज्य संकाय के

लिए 14 सीटें निर्धारित हैं। प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थी 1 जुलाई 2026 से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकेंगे। आवेदन पत्र एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय मैनपाट से या विद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरकर 20 जुलाई 2026 तक विद्यालय में सीधे जमा करना होगा। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। प्राप्त आवेदनों के आधार पर तैयार की गई मेरिट सूची 22 जुलाई 2026 को विद्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी, साथ ही साथ विद्यालय के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित की जाएगी। चयनित विद्यार्थियों का प्रवेश कक्षा 10वीं की परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। प्रवेश प्रक्रिया 25 जुलाई 2026 से प्रारंभ होगी और प्रवेश की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। विद्यालय प्रबंधन ने पात्र और इच्छुक विद्यार्थियों से निर्धारित समयावधि में आवेदन प्रस्तुत करने की अपील की है। और इन समाचारों के बाद आइए अब करते हैं थोड़ा मनोरंजन फिल्म यहूदी के इस गीत के साथ, जिसमें स्वर है मुकेश के, गीत लिखा है शैलेंद्र ने और संगीत शंकर जयकिशन का है।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में छात्रावास अधीक्षक के रिक्त पदों हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय पेटला सीतापुर, जो वर्तमान में घघरी अंबिकापुर में संचालित है, एवं एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय सहनपुर लुंड्रा, ये भी वर्तमान में घघरी अंबिकापुर में संचालित है। इस विद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए छात्रावास अधीक्षक पुरुष के एक रिक्त पद की अस्थायी रूप से मानदेय आधार पर नियुक्ति की जाएगी। इन पदों के लिए इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थियों से 25 जून 2026 से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 5 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। पद हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। शासकीय आवासीय संस्थाओं में अधीक्षक पद पर कार्य करने वाले अनुभवी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। भर्ती संबंधी विस्तृत जानकारी कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास अंबिकापुर जिला सरगुजा के सूचना पटल और जिला वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। अभ्यर्थी निर्धारित आवेदन पत्र में डाउनलोड करके उसे पूर्ण रूप से भरकर अंतिम तिथि तक ईमेल पर प्रेषित कर सकते हैं। आइए अब सुनते हैं नमस्कार सरगुजा का ये अंतिम गीत। फिल्म का नाम है दिल एक मंदिर, आवाज है लता मंगेशकर की, गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने और संगीत शंकर जयकिशन का है।

0: श्रोताओं, इस अंतिम गीत के साथ कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा यहीं समाप्त होता है।
1: जनसंपर्क से प्राप्त सूचना
2: और पुराने फिल्मी गीतों पर केंद्रित कार्यक्रम
3: नमस्कार सरगुजा।
4: नमस्कार सरगुजा।
0: मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी कि 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं। श्रोताओं, अब से कुछ ही पलों में पहले हिंदी में समाचार प्रभात और फिर अंग्रेजी भाषा में मॉर्निंग न्यूज़ का अनुप्रसारण हम दिल्ली केंद्र से करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकायची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत के दो मैचों

0: की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाइची ने अलकायदा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। दोनों नेताओं ने क्वाड ढांचे के अंतर्गत व्यावहारिक सहयोग बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुगमता मजबूत करने के लिए आसियान सदस्य देशों के साथ सहयोग के महत्व का भी उल्लेख किया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में उनके परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा है। आयोग ने कहा है कि उसने संबंध में दोनों गुटों के दावों और प्रतिदावों पर ममता बनर्जी और पार्टी नेता ऋणव्रत बनर्जी को अलग अलग पत्र लिखे हैं। आयोग ने यह भी कहा कि दोनों पक्षों को सोमवार शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। ये घटनाक्रम तृणमूल कांग्रेस के अंदर पार्टी के संगठन की संरचना और पार्टी की ओर से कार्य करने के अधिकार को लेकर चल रहे विवाद के बीच आया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नव निर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नव निर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में उभरती डिजिटल पहल शामिल है। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। विचार विमर्श से केंद्र राज्य सहयोग को सुदृढ़ करने और 2047 तक विकसित भारत बनाने की परिकल्पना के अनुरूप पंचायतों को लिए बेहतर शासन, बुनियादी सुविधाओं, सार्वजनिक सेवाओं और समावेशी ग्रामीण विकास प्रदान करने के लिए सशक्त बनाने का मजबूत ढांचा विकसित करने में सहायता मिलने की उम्मीद है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।

0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर का दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी।
2: बम बम बोले और हर हर महादेव के जयकारों के बीच अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था आज सुबह पवित्र गुफा की तरफ रवाना हो गया। अगले 57 दिनों की इस यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु नुनवन पहलगाम और बालतर रास्तों से होते हुए बाबा बर्फानी के यहां अपनी हाजिरी देंगे। दोनों रास्तों पर अधिकारियों ने मेडिकल कैंप, आराम करने की जगहें, लंगर, पीने के पानी की सुविधा और मौसम की पल पल की जानकारी रखने जैसे व्यापक इंतजाम किए हैं। यात्रा को सुरक्षित रूप से पूरा करने के लिए सुरक्षा कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बीच यात्रियों का दूसरा जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से निकलकर घाटी की तरफ रवाना हो गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
1: ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई अपने पिता और पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में सुरक्षा कारणों से शामिल नहीं होंगे। भारत में ईरान के प्रतिनिधि आयतुल्ला हकीम इलाही ने बताया कि धमकियों और निगरानी जोखिमों के कारण मुज्तबा खामनेई का सार्वजनिक रूप से सामने आना सुरक्षित नहीं है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम 4 से 9 जुलाई तक ईरान और इराक में होगा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोग मारे गए और 90 लोग घायल हो गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। रूस पर किए जा रहे लगातार हमलों को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने 40 दिनों का ताबड़तोड़ हमला बताया है। सीरिया में कल राजधानी दमिश्क के एक कैफे में हुए विस्फोट में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस घटना में 20 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल किसी भी गुट ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। सुरक्षा बलों ने हमले की जांच के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी है। दमिश्क के गवर्नर माहिर मारवान इदलिबी ने कहा है कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
3: स्पेन और पुर्तगाल फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुर्तगाल ने आज क्रोएशिया को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। इससे पहले स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की की। मंगलवार को डलास में प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल से होगा। इससे पहले फ्रांस, नॉर्वे, कनाडा, मोरक्को, ब्राजील, पैराग्वे, बेल्जियम, अमरीका और इंग्लैंड भी अंतिम 16 में पहुंच चुके हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में सोमवार को इंग्लैंड का सामना मैक्सिको से होगा। अमरीका मंगलवार को बेल्जियम के साथ खेलेगा। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच 2 मैच की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। यह श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गॉल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। ये श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। उधर इंग्लैंड ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। लंदन में कल दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 40 रन से हरा दिया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने पहले सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। रविवार को लंदन के लॉर्ड्स में फाइनल में इंग्लैंड का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: और खेल खबरों के बाद एक दुखद घटना। आंध्र प्रदेश के मरकापुरम जिले में आज सुबह कंभम के पास एक सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना खाद से लदे एक ट्रक के ऑटो रिक्शा को टक्कर मारने से हुई। घायलों को गिदलूर और कुंभम के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। बात मौसम की। उत्तराखंड में मॉनसून पूर्ण रूप से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। नैनीताल और बागेश्वर जिलों में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी और

0: रुद्रप्रयाग में भी कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना है। विभाग ने संवेदनशील क्षेत्रों को लोगों को सतर्क रहने और यात्रा करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। दक्षिण पश्चिम मानसून दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ चुका है। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, केरल, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में मूसलाधार बारिश हो सकती है। दिल्ली में दिन में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश की संभावना है। राजधानी में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। भारत और जापान के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, भारत और जापान मिलकर बनाएंगे सैन्य साजो सामान, मोदी और तकाईची में शिखर वार्ता। अमर उजाला ने जापान के प्रधानमंत्री के संतूर पर हाथ आजमाने का चित्र दिया है। पत्र लिखता है, संतूर बजाकर चौंकाया पीएम मोदी समेत कई लोग हैरान। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एआई से बने फर्जी फैसलों की कानूनी मिसालें देने पर सख्त रुख अपनाने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने दिया है। दैनिक जागरण लिखता है, एआई से लिखे गए फर्जी फैसले जहरीली गैस जैसे। अदालत ने कहा, फैसलों के प्रति जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। नीट जेईई में निर्णायक हो सकते हैं 12वीं के अंक, नीट पुनर्परीक्षा के नतीजे 20 जुलाई को, हिंदुस्तान की सुर्खी है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में फिर राम मंदिर परिसर पहुंची एसआईटी, रडार पर हैं 100 लोग, ट्रस्टी से पूछताछ, नवभारत टाइम्स की खबर है। शेयर बाजार में निवेशकों पर 3 लाख करोड़ की बारिश, सेंसेक्स में 579 अंकों का उछाल, लोकसत्य की खबर है। अमीर युवाओं की पसंद बदली, 40% से ज्यादा भारतीय छुट्टियां मनाने के लिए अब कोरिया, मिस्र, जापान, मालदीव जैसे नए देश जा रहे, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पत्र लिखता है, ट्रेवल इंश्योरेंस लेने वाले हर साल 10% बढ़ रहे। खामेनेई के अंतिम संस्कार यात्रा से पहले हवाई निगरानी हुई कड़ी, कई राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 करोड़ लोग जुड़ सकते हैं, राजस्थान पत्रिका की खबर है। कई समाचार पत्रों ने देश भर के कई राज्यों में हो रही बारिश का चित्र दिया है। देश बंधु की सुर्खी है, दिल्ली में मानसून ने दी दस्तक, लोगों को तेज धूप और गर्मी से मिली राहत, राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं। राजस्थान और दिल्ली पहुंचा मानसून, 2 दिन अति बारिश का अलर्ट। हिंदुस्तान ने संपादकीय पन्ने पर भारत जापान के सभ्यतागत संबंध पर लेख प्रकाशित किया है, शीर्षक है, भारत जापान रिश्तों में नई गर्मजोशी।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत के 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi and his Japanese counterpart Sanae Takaichi strongly condemn terrorism and violent extremism in all its forms and manifestations. Election Commission seeks responses from rival factions of Trinamool Congress regarding competing claims about party's organizational elections and authorized signatories. Annual Sri Amarnath Yatra begins from both Pehelgam and Baltal routes in Jammu and Kashmir. Iran's Supreme Leader Mojtaba Khamenei to skip Father Ali Khamenei's funeral over security fears.

श्रोताओं, ये आवाज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। इस आवाज ने पूरे देश को मुस्कुराने पर भी मजबूर किया और सोचने पर भी। ये वही आवाज है जिसमें लोक की मिट्टी की सौंधी महक है, रंगमंच की तपस्या है और जीवन के अनगिनत रंगों का अनुभव है। जी हाँ, रघुवीर यादव एक ऐसा नाम जिसने 60 के दशक से अब तक हर पीढ़ी को अपना कायल बना लिया है। नाटकों का मंचीय संसार हो या टीवी धारावाहिक मुंगेरी लाल के हसीन सपने, चाचा चौधरी, या फिर उनके यादगार किरदार जो उन्होंने फिल्मों में निभाए हैं, जैसे मैसी साहब, सलाम बॉम्बे, पीपली लाइव या वाटर में, और अब पूरे देश को जोड़ता पंचायत सीरीज में उनका किरदार।

0: श्रोताओं, ये आवाज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। इस आवाज ने पूरे देश को मुस्कुराने पर भी मजबूर किया और सोचने पर भी। ये वही आवाज है जिसमें लोक की मिट्टी की सौंधी महक है, रंगमंच की तपस्या है और जीवन के अनगिनत रंगों का अनुभव है। जी हाँ, रघुवीर यादव एक ऐसा नाम जिसने 60 के दशक से अब तक हर पीढ़ी को अपना कायल बना लिया है। नाटकों का मंचीय संसार हो या टीवी धारावाहिक मुंगेरी लाल के हसीन सपने, चाचा चौधरी, या फिर उनके यादगार किरदार जो उन्होंने फिल्मों में निभाए हैं जैसे मैसी साहब, सलाम बॉम्बे, पीपली लाइव या वाटर में, और अब पूरे देश को जोड़ता पंचायत सीरीज में उनका किरदार पूरे कार्यक्रम में बनी रही, वो भी बड़ी अद्भुत रही। उनकी आंखें बोलती हैं, खामोशी संवाद बन जाती है और उनकी आवाज सीधे दिल तक पहुंच जाती है। अपने बिलासपुर प्रवास में हमारे छोटे से अनुरोध पर रघुवीर यादव जी आज आकाशवाणी के स्टूडियो में श्रोताओं से रूबरू हैं। आकाशवाणी बिलासपुर की इस विशेष भेंटवार्ता में हम हृदय से स्वागत करते हैं भारतीय रंगमंच और सिनेमा के अप्रतिम अभिनेता, संवेदनशील गायक और हमारे आज के अतिथि रघुवीर यादव जी का। आपका स्वागत और अभिनंदन आकाशवाणी बिलासपुर में।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: बातचीत चूंकि आपके नाटक से ही शुरू हुई है तो मैं पहले वहीं से ही बात शुरू करना चाहूंगी, पियानो से ही।
1: जी।
0: और समाज की एक बहुत बड़ी समस्या को बड़े ही सहज सरल ढंग से आपने मुख्य रूप से उसको सामने प्रकट किया और उस नाटक के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आईं। थिएटर का लक्ष्य, थिएटर का उद्देश्य, हमारी संवेदनाएं, हमारे अंदर जो घट रही घटनाओं की अभिव्यक्ति, सब कुछ दिखाई दिया। तो ये प्रेरणा इस नाटक को लेने की, क्योंकि सब कुछ इसमें आपका था, अभिनय भी, निर्देशन भी, कास्टिंग भी, सब आपने खुद किया इसका।
1: जी, जी।
0: कैसे ये नाटक इतना प्रभावी बन पड़ा?
1: एक्चुअली ये नाटक फेरेंस कैरेंथी का एक प्ले है जो क्लासरूम प्रोडक्शन के लिए उन्होंने लिखा था। तो जब मैंने ये प्ले पढ़ा, उसका ट्रांसलेशन भी पढ़ा, तो मुझे दम तो था नाटक में, लेकिन वो एक्सरसाइज, बतौर एक्सरसाइज की तरह वो लिखा गया था।
0: जी जी।
1: तो मैंने फिर इसको चाहा कि, क्योंकि आज जो ज़माना है अकेलेपन से बहुत
0: जूझ रहा है।
1: हाँ, जूझ रहा है
0: जी।
1: और हर शख्स ऐसा भटका हुआ है और ऐसे लगता है, तो ये तो मेरे जहन में था, वो मेरे अंदर थी ये बात। फिर क्या है कि मेरा था म्यूजिक से ताल्लुक, तो उसमें पियानो है कि वो पियानो बेचना चाहती है और एक शख्स है जो और दोनों तूफान आ गया है, मतलब पूरा मुंबई में बारिश है, तो मैंने उस तरह की बारिश है, बाहर नहीं निकल पा रहे, तो बस एक शख्स है जो मज़े लेने के लिए। तो मेरे जहन में आया कि वो पियानो, क्योंकि अकेलेपन, अकेली रह गई है और पियानो बेच रही है, जो उसकी ज़िंदगी में वो साथ रहा। तब मुझे मेरे जहन में आया कि म्यूज़िक तो एक ऐसा है कि अकेलापन महसूस होने ही नहीं देता, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ, ये मेरे ही साथ हुआ कि म्यूज़िक ने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। कभी भी कोई भी परेशानी, उलझन, कुछ भी हुआ, कितनी भी आफत मुसीबतें आई, म्यूज़िक ने मुझे हमेशा पकड़ के खींच लिया और खींच के एक नया रास्ता दिखा दिया।
0: क्या बात है।
1: तो मैंने फिर उसको, उसका जो एडेप्टेशन किया, तो फिर उसमें मैंने ये डाला कि भैया अगर आपके पास म्यूज़िक है तो उसे जाने मत दीजिए। अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंट आप बजाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो तो तमाम एक उम्र, क्या वो तो कई उम्रों के लिए कम है।
0: सच। हाँ, जी जी।
1: कि आप उम्र कितनी भी उम्र तक बजाते रहिए, करते रहिए, तो ऐसा लगता है कि उम्र बड़ी छोटी सी लगती है। तो ये मुझे लगा, तो फिर मैंने कहा कि ज़माना उसी तरह का है कि लोग अकेले भटक रहे हैं, तो अकेलेपन का एक वो है कि एक सुझाव है कि आप म्यूज़िक इख्तियार कर लीजिए और फिर देखिए आपका अकेलापन कैसे गायब होता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा।
0: क्या बात है। और ये सारी बातें एक नाटक के माध्यम से हर व्यक्ति तक बड़ी सुंदर ढंग से पहुंची हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। उसके पीछे जो आपकी कला साधना दिख रही थी कि एक क्षण के लिए भी मंच से यदि डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, एकाग्रता भंग नहीं होती है, तो कलाकार की कितनी बड़ी साधना उसके पीछे है।
1: लोग अकेले भटक रहे हैं, तो अकेलेपन का एक वो है कि एक सुझाव है कि आप म्यूज़िक इख्तियार कर लीजिए और फिर देखिए आपका अकेलापन कैसे गायब होता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा।
0: क्या बात है। और ये सारी बातें एक नाटक के माध्यम से हर व्यक्ति तक बड़ी सुंदर ढंग से पहुंची हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। उसके पीछे जो आपकी कला साधना दिख रही थी कि एक क्षण के लिए भी मंच से यदि डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, एकाग्रता भंग नहीं होती है, तो कलाकार की कितनी बड़ी साधना उसके पीछे है कि वो बांध के उतनी देर तक सारे दर्शकों को रख सकता है। तो अब मैं थोड़ा सा आपके जीवन की तरफ आना चाहूंगी, क्योंकि आपके बारे में बहुत सारी बातें

0: हर जगह सभी को पता है कि आपका बचपन कैसे बीता, आप कैसे बाहर निकले वहां से और क्या हुआ, लेकिन फिर भी हमारे श्रोताओं के लिए हम आपके द्वारा सुनना चाहेंगे कि कैसे कैसे रास्तों से चलते चलते ये यात्रा तय हुई है।
1: जी, एक्चुअली अगर मैं कहूँ तो ये 50s के आसपास की बात है, और उस वक्त बिल्कुल मेरे ख्याल से जनसंख्या भी बड़ी कम हुआ करती थी, बहुत दूर दूर तक सब जंगल और ये था। तो मेरा बचपन, मेरा, मैं किसान हूँ, किसान फैमिली को बिलोंग करता हूँ, और बैलगाड़ी चलाया करता था, भैंसे चलाया करता था, दूध का धंधा होता, यादव हूँ तो जाहिर है बस यही धंधे कर पाते थे
0: बिल्कुल,
1: और खेती वेती होती रहती थी। तो मुझे सबसे पहले म्यूजिक से मेरा ताल्लुक है, तो सबसे पहले जो मेरा म्यूजिक का एहसास, जो स्वर मुझे मिले, वो मैं आधारताल, जबलपुर में एक जगह है, वहाँ एक तालाब है जिसकी वजह से वो नाम पड़ा आधारताल। वो तालाब के बगल के में एक टीला है, टीला पे एक मकान हुआ करता जो मेरे नाना जी का था, वहीं हम रहते थे उसी में। तो वहीं वो जमीन पड़ी हुई थी नाना जी की, वहीं खेती वेती किया करते थे, तो हम गर्मियों में वहाँ जाया करते थे। तो मुझे गर्मियों के इसलिए याद है, जाते तो हमेशा थे लेकिन गर्मियों की याद है कि मैं 3-3.5 साल का रहा हूँगा। तो वहाँ जो खेतों की मेड़ से एक पापड़ बेचने वाला निकलता था, सिर्फ एक घर के लिए वो पापड़ दूर से बेचता था। अब मैं 3.5 साल का हूँ और मैं उसको सुनता था, तो वो पापड़ बेचता था कि मूम का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो,
0: क्या बात,
1: मूम का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो। तो हम उसको बुलाते थे पापड़ वाले, तो फिर वो देखता था, फिर वहीं से पापड़ बेचते हुए मूम का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो, फिर आके बैठ जाता था, फिर पापड़ देने लग जाता था कि मूम का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो।

0: बस ये जो मैंने और इतनी आत्मा से इतना रूहानी लगता था वो उसका, तो मैं फिर दिन भर घर में पापड़ बेचता रहता था। वहीं से फिर संगीत का मुझे जो हुआ, फिर रामलीला रासलीला ये सब। और वो ज़माना ऐसा था कि सब्जी बेचने वाले भी गा गा के सब्जी बेच रहा है। एक चूरन वाला आता था, वो भी मैं कभी नहीं भूलता, कि भीख मांगने आते थे एक सूरदास जी, वो भी वो रस खान का एक भजन गाते हुए निकलते थे, तो मैं उनके पीछे पीछे चला जाता था। ऐसा लगता है मैं भी भीख मांगने लगूं इनके साथ में, इतना मजा। तो वो रस खान का गाते थे, वो अपनी उनकी पत्नी थी, अंधे थे, वो पत्नी थी, पत्नी के कंधे पे हाथ रख के और गाते हुए निकलते थे, मैं उनके पीछे पीछे जाता था। वो था कि आज गई हो तो भो रही हो, रस खान रही कभी नंद के भो नहीं, भाको जियो जुग लाख करो रही, जसमती को सुख जात कहो नहीं। अरे तेली लगाई लगाई के अंजन भो है, बनाया बनाया जिठो नहीं, डारी हमेल निहारती आनन भारत, जो चुचकारत छो नहीं, धूर भर अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनिया कटी पीरी कछौटी। और बादशाह भी को रस खान बिलो, कत भारती काम कला निधि कोटी, काग के भाग बड़े सजनी, हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी, हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी।
1: वाह वाह वाह, आपके बचपन की जो यादें हैं और बचपन में जो सुर आपके अंदर गए हैं धुन के रूप में, उसको तो आपने बहुत बहुत ही सुंदर ढंग से आज हमारे श्रोताओं के लिए प्रस्तुत किया है। और संगीत के ये जो बीज, जो छोटे छोटे अलग अलग घटनाओं के द्वारा, चाहे वो मूंगफली बेचने वाला हो, पापड़ बेचने वाला हो, उन सब से आपने ग्रहण किया।
0: जी यही सब लोग उस्ताद हैं मेरे। हाँ, लोग ढूंढते रहे तो मुझे तो पूरी पूरी पूरी कायनात ऐसा लगता उस्ताद है, पेड़ पौधे चिड़ियों पक्षियों से। मैं फिर गाना गाता तो एक फैक्ट्री से वो बजता था सायरन। तो वो जब बजता था तो उससे मैं आवाज मिला के फिर बड़ी देर तक गाता रहता था। एक बात ये है कि ईश्वर देता सभी को है, अगर हम उसको पहचान लेना तो चीज़ें बड़ी आसान सी हो जाती हैं, हम पहचानते नहीं। और दूसरी बात यह है कि माँ बाप को भी मैंने देखा कि बच्चों को भटकाने बड़ा उनका हाथ होता है, कि पड़ोस का बच्चा ये कर रहा है तो वहाँ चले जाओ, वो इंजीनियर है तो वो करना कुछ और चाहते, उसे कुछ और करवाते हैं, फिर यहाँ भटकाव शुरू हो जाता है। तो मुझे भी आया, लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे मना, मेरे नाना जी खुद ही मंदिर बनवा दिया था उन्होंने, और मंदिर में सब वहाँ के जो कोई जात पात कुछ नहीं होता था। फिर स्कूल भी बनाया लक्ष्मी नारायण यादव विद्या भवन, अभी भी है जबलपुर में। तो बच्चे वहीं पढ़ने के लिए आते थे, मालूम नहीं था कि कौन किस जात का है, सब लोग वहाँ इकट्ठे आके वहाँ पढ़ा करते थे।

0: और वहीं से सब लोग सीखते रहते थे।
1: बहुत सारा इनपुट्स आपको अपने छोटे से गांव में ही मिल गया था।
0: ये मैं एक बात बता दूं, सब जगह है ये। अब तो खैर जो ये सब ये फोन और ये सारा आ जाए तो मेरे ख्याल से वो जो जड़ें हैं, वो जो जमीन है, वो थोड़ी सी मिटती हुई नजर आ रही है।
1: जी,
0: नहीं
1: जी,
0: तो छत्तीसगढ़ भी कितना खूबसूरत, यहाँ के लोग वहाँ भी थे, वो भी बहुत,
1: यहाँ की भी लोक संस्कृति, जितना लोक के प्रति आपका अनुराग है और लोक से आपने जो ग्रहण किया है वो आपको सभी जगह एक साम में दिखाता है, चाहे बुंदेलखंड में जाएं, चाहे आप मालवा में जाएं, चाहे आप यहाँ छत्तीसगढ़ में आए, वो सब के अंदर प्रकृति की जो सुगंध रची बसी
0: जी,
1: है
0: जी।
1: वो बिल्कुल वैसी ही रहती है, उसमें कोई अलगाव नहीं रहता। तो आप तो निकल गए थे, गाँव से ही बाहर निकल गए थे, कुछ खोज रहे थे, कुछ तो खोज लिया था, कुछ और पाने के लिए निकल ही गए थे। तो वो निकलने बाद की जो यात्रा थी वो काफ़ी लंबी रही और ने आपको दिशाएं दे दी जिंदगी की।
0: जी जी जी जी, क्या है कि मैं वो तो मैं मालूम होगा सभी को कि मैं हायर सेकेंडरी फेल हो गया था, तो शर्मिंदगी से बचने के लिए, क्योंकि वहाँ सब लोग का बस एक ही इरादा था कि बच्चा सातवीं आठवीं तक पढ़ जाए, उसके बाद फैक्ट्री में डाल दो उसको, उसके बाद शादी कर दो, उसके बाद ये बस यही था। तो मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता था, मुझे ऐसा लगता है हटके करो ना, ये क्यों सब कुछ यही, सब लोग एक ही जैसा करेंगे तो मजा क्या है जिंदगी का। बस फिर वो बहाना मिल गया। तो आज भी मैं शुक्रगुजार हूँ उस मालिक का कि उसने मुझे फेल कर दिया।
1: हाँ, सच बात है।
0: हाँ, मुझे तब से लगा कि इंसान को फेल होना भी कितना जरूरी है, और हमेशा कुछ टूटता है तभी कुछ बनता है, जब जब टूटा है तभी कुछ ना कुछ बन ही जाता है, और ऐसा बनता है कि उस टूटने को उस वक्त इतना पॉजिटिव ले लेते हैं कि या मालिक अच्छा किया उस वक्त टूटा वो
1: जी।
0: हाँ, तो फिर गया मैंने पहली दफा थिएटर, नाम जब वो घर से गया तो ललितपुर में नाटक कंपनी लगी हुई थी, यन्नू कपूर के फादर की नाटक कंपनी थी
1: जी, जी।
0: उसका नाम था भोपाल थिएटर कंपनी, वहाँ पाकिस्तान के थे, लाहौर के वहाँ के रहने वाले थे, लेकिन पारसी थिएटर के नाम से वो था बस। तो वहाँ फिर मैं हो गया, क्योंकि मैं जिसके साथ गया था प्रोफेशनल भगोड़ा था वो, जहाँ भी जाता भाग उसका दो चार दिन बाद भाग ही जाता था, तो उसके साथ गया तो उसकी आदत थी, वहाँ छोड़ के चला गया, तो फिर मैं इनके पास गया,
1: अकेला छोड़ के गया।
0: हाँ हाँ हाँ,
1: ओके जी।
0: तो गया तो फिर मैं नाटक कंपनी के मालिक जो थे वो सुबह सुबह पहुँच गया कि ऐसा ऐसा है, तो क्या करते, मैंने कहा गाना गाता हूँ, तो उनका सुनाओ, तो मैं बुंदेलखंडी, मुझे साल शाम में फ़र्क मालूम नहीं था, मैंने सुना दिया कि बदली तेरी नज़र तो नज़ारे बदल गए, ये चांदनी ये चांद सितारे बदल गए, मैं गा के सुना देता हूँ।
1: हाँ।

0: नजर
1: तो कहने लगे उच्चारण वाला पार्ट फिर दिए।
0: हाँ, तो नहीं तो फिर उन्होंने कहा बेटा गाते तो सुरीला हो लेकिन तुम्हारा तलफ्फुज बड़ा खराब है। तो मैंने कहा कि जी तबले पे गाऊंगा तो ठीक हो जाएगा। मुझे क्या मालूम तलफ्फुज का मतलब क्या होता है। तो हंसने लगे सारे लोग
1: जी।
0: तो हंसे तो फिर मुझे फिर शर्मिंदगी हुई। तो कहने लगे बेटा तलफ्फुज का मतलब उच्चारण होता है, तलफ्फुज का मतलब प्रोनंसिएशन होता है। तो मैंने कहा हाँ मैं ठीक कर लूंगा। तो मुझे 2 रुपए 50 पैसे में उन्होंने रख लिया। और फिर वो शर्मिंदगी,
1: ये 60 के दशक की बात है।
0: जी जी जी जी 67 के बात है। तो उन्होंने मुझे रख लिया 2.5 रुपए रोज पे। और वो शर्मिंदगी, वो जो तबला वाला फिर मैंने कहा मैं तबला ठीक करके ही छोड़ूंगा। उसके बाद फिर मैंने 6 और 1 साल के अंदर उर्दू लिखनी पढ़नी भी सीखी।
1: वाह वाह वाह क्या बात है।
0: उससे फिर और मैंने देखा कि उर्दू जबान जो सुनना सिखाती है जा जा शा सा, तो वो सुनना, तो वो फिर वहाँ फिर रहने के बाद फिर आहिस्ते आहिस्ते शुरू में गाना गाता था। फिर उन्होंने मैं एक्टर बना दिया, पहली बार सिपाही बना मैं। उसे फिर रोया मैं कि क्या मुझे हाथ को पकड़ के खड़ा कर, बोलना कुछ नहीं था लेकिन खड़ा कर दिया, बड़ा अच्छा लगा। भाला पकड़ा के खड़ा कर दिया था, वो अनारकली नाटक होता था उसमें। खैर वहाँ से फिर मुझे लगा, सब लोग कहने लगे बेटा कुछ तो करना पड़ेगा, सीखो ये, तब सीखना फिर शुरू किया, फिर आग लगी।
1: आपकी पढ़ाई लेकिन आपने जारी रखी ना।
0: हाँ नहीं फिर उसके बाद फिर मैं हायर सेकेंडरी का एग्जाम देने दोबारा से गया वहाँ जबलपुर गया, फिर कर लिया था मैंने।
1: जी जी जी जी। तो ये जो अंदर से आपके अंदर आगे बढ़ने की जो एक बात थी वो लगातार बनी रही। फिर आप NSD तक भी गए, फिर NSD में

0: एक अलग ही ढंग से आपकी प्रतिभा उसे एक अलग उठान मिला, तो वो अनुभव कोई यादगार क्षण वहाँ के जो आपको वहाँ से इतने वर्षों तक जोड़े रखे सिनेमा में आने से पहले?
1: क्या है कि एक तो वहाँ थिएटर मुझे समझ आया, यहाँ पारसी थिएटर, और जो खाना बदोशी में जो मुझे सीखने मिला, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे खूबसूरत दिन वही थे। और हमेशा इंसान कमियों में सीखता है, अभाव में ही सीखता है। अगर सब कुछ दे दिया जाए तो कुछ तो, मैं इस मामले में इत्तेफाक से मैं लकी रहा कि मुझे वो बिल्कुल। उसके बाद जब मेरा इंटरव्यू हुआ वहाँ, मुझे पता लगा कि थिएटर सिखाया जाता है।
0: जी जी।
1: उसी वक्त मेरी नौकरी सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन में भी लग रही, तो वहाँ 450 रुपये थे, यहाँ सीखने के लिए 200 रुपये था स्कॉलरशिप।
0: जी जी।
1: तो मैंने कहा मैं ये करूँगा, 450 नहीं चाहिए मुझे, 200 रुपये चाहिए। मैं चला गया, भर दिया फॉर्म, और अलकाजी साहब थे तो वहाँ इंटरव्यू हुआ। तो इंटरव्यू हुआ तो 6 साल पारसी थिएटर का, वो जब इंटरव्यू हुआ तो 45 मिनट तक इंटरव्यू चला। तो अलका साहब ने खुद ही कह दिया कि भैया हम आपके स्कॉलरशिप भी दे दी और अब आ जाओ, हम आपको सेलेक्ट कर लिए।
0: देखिए ये अनुभव आपका कितना काम है, सच बात है।
1: फिर मैंने 3 साल वहाँ ट्रेनिंग की, और मैंने एक्टिंग में नहीं किया, मैंने स्टेज क्राफ्ट में किया। क्योंकि मैंने उनसे कहा कि मुझे सब कुछ सीखना, तो उन्होंने स्टेज क्राफ्ट में डाल दिया। अब मेरे क्लास के सारे बच्चे, मेरी क्लास के क्या दूसरी और भी, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर, उन दिनों राज बब्बर भी वहीं थे और पंकज कपूर, ये सारे लोग थे उस वक्त। तो कहने लगे तू तो एक्टर, ये तो मजदूरों का काम है। मैंने कहा मुझे मजदूरी ही करना है। फिर उसमें जो स्टेज क्राफ्ट में मुझे मज़ा आया है, फिर मैं कारपेंट्री और ये उससे डिजाइनिंग और मेकअप और सारा कुछ सीखता रहा।
0: इस दौरान आपका संगीत का जो रुझान है, उसको
1: संगीत तो कहाँ छूटता है, संगीत तो मैं बिल्कुल अलग से टाइम निकाल के, और संगीत की वजह से ही फिर और भी चीज़ें मुझे सीखने को मिली। एक तो क्या एहसास और ये जो इमोशंस की जो बारीकियाँ, वो संगीत से ही बड़ी जल्दी पकड़ में आती है, बड़े जल्दी पकड़ में आते
0: हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो ये मेरे साथ था, तो फिर बस लगा।
0: इतने सारे वाद्य यंत्र आप बजा लेते हैं
1: जी,
0: तो गांव से तो कुछ तबला आपने
1: कुछ नहीं? कुछ नहीं जी, मेरे पास वो तबला तो वो भी नहीं आता, उसको तबला समझ रहा। हारमोनियम में हाथ नहीं लगाने NSD गया, तब फिर मुझे हारमोनियम पहली दफा मैंने, क्योंकि वहां छू नहीं देते वो पार्सी थिएटर में।
0: हाँ, अच्छा। हाँ, नहीं मुझे लगा आपने कहा तो उसका
1: कनेक्शन। नहीं जी, जी। तो हारमोनियम था वहाँ, मेरे मंदिर में रखा हुआ था, लेकिन इतना वो नहीं था, नहीं बजा पा रहा था मैं, क्योंकि पढ़ने लिखने में लगा हुआ, तो फिर घर से भागना भी था। अगर वहाँ हारमोनियम सीख लेता फिर वहीं मंडली बना लेता मैं, तो ये भी जरूरी था। तो ईश्वर की तरफ से जो होता है। फिर NSD आए वहाँ, फिर मैंने हारमोनियम इंस्ट्रूमेंट, फिर सितार और ये जो है, तो बस ऐसे ही दिल बहलाने के लिए बहुत ज्यादा।
0: लेकिन आपके द्वारा जो फ्लूट बज रही थी
1: जी जी,
0: मतलब बांसुरी आप इतना सुंदर बजा रहे थे स्टेज में, लाइव बज रही थी, तो वो तो बता रही है कि आपने कितनी गहराई तक संगीत को साधा है।
1: तो एक तो क्राफ्ट, स्टेज क्राफ्ट में था, तो फिर बनाना भी आ गया, फिर बनाना भी सीख लिया। मेरे पास करीब 1500 करीब आसपास, और कई तरह की फ्लूट बना रखी मैंने, को इम्प्रोवाइज करता रहता हूँ, तो मुझे बड़ा मजा आता है। मुझे तो हर उसमें ये पाइप अगर घर में पड़ा हो तो इसका मैं फ्लूट बना लेता। पाइप हमारा वो एक बार वो आया, प्लम्बर आया, तो उसका पाइप चोरी हो गया घर में लगा था, तो मैंने कहा घर से कौन, तो पता लगा मैंने पाइप काट के फ्लूट बना लिया।
0: क्या बात है सर, मतलब जुनून था ये। हाँ, ऐसा नहीं कह सकते, ये आपके अंदर की प्रतिभा का अतिरेक था कि आप किसी भी जो भी चीज़ आपको सामने दिख रही थी उसको आप एक वाद्य यंत्र में बदल दे रहे थे फ्लूट के रूप में। अद्भुत बात रही। और फिल्मों की तरफ जो बातें, हमने तो आपको मतलब मैं तो ये कहूँ कि पूरे भारत में आप कई पीढ़ियों के प्रणेता रहे। मतलब हमारे बचपन में हमने चाचा चौधरी और मुंगेरी लाल के हसीन सपने से शुरुआत की, आज की जनरेशन आपको पंचायत में देख कर खुश हो रही है। तो आप तो सभी जनरेशन, सभी दौर के पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो ये बात जो है कि फिल्मों में जो शिफ्ट हुआ आपका, कि आप पहली बार जब फिल्मों में, तो क्या आपने अपनी इच्छा से अभिनय चुना है, कैसे आना?
1: नहीं, अभिनय तो था, लेकिन फिल्मों के अभिनय का मुझे वो नहीं था, क्योंकि मैं चाह रहा था कि करूँगा तो अच्छे तरीके से करूँगा। लोगों ने कोशिश की कॉमेडियन बनाने की, तो मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता था, क्योंकि इतनी जिंदगी सीखने में लगाई और सिर्फ मुझे एक ठप्पा लगाना चाह रहे, तो मैं, क्योंकि काफ़ी लोग कह भी रहे थे जब NSD 3 साल पूरे किए, कोर्स ख़त्म किया, तो वहाँ पे कह रहे थे कि आ जाओ बम्बई आ जाओ। मैंने कहा नहीं भाई, मैं तो थिएटर करूँगा। मैं इत्तेफाक से मुझे वहाँ रेपर्टरी में, NSD रेपर्टरी में, तो मैं 10 साल फिर उसमें रहा।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: कई फिल्मों को मैंने मना किया, छोटा मोटा, मैंने कहा मैं नहीं करूँगा। फिर किस्मत वही, मैसी साहब मिल गई मुझे, तो मैसी साहब मैंने वहीं रह के की दिल्ली में, सलाम बॉम्बे वहीं रह के की, सही परंजपी की, मैंने 3 फिल्में की वो भी वहीं रह के। बाद में मुझे शेखर कपूर पकड़ के ले गए अपनी फिल्म के लिए,
0: जी जी जी,
1: क्यों मैंने उनकी फिल्म को मना

0: कर दिया
1: बिल्कुल
0: था कि कहीं से फोन आया उनका कि वो एक फिल्म बना रहे हैं दुश्मनी, उसमें कॉमेडियन का रोल है। तो मैंने फौरन कहा नहीं मुझे नहीं करना, कह रहे शेखर कपूर कर रहे, मैंने कहा कोई कर रहा हूँ मैं कॉमेडियन का नहीं करना मुझे। तो शेखर खुद ही मेरे घर पहुंच गए, मुझे फिर वो ले गया, फिर उसके बाद फिर वो सिलसिला शुरू हुआ।
1: और मैं श्रोताओं को ये भी बताना चाहूंगी कि मसीह साहब को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली और उसमें आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार भी मिला, और उसके बाद की कई फिल्में ऐसी हैं, करीब 7-8 फिल्में ऐसी हैं जिन्हें ऑस्कर से भी नॉमिनेट किया गया, ऑस्कर के लिए सिलेक्ट किया गया, चयनित किया गया। तो ये सारी उपलब्धियां आपके खाते में, मुझे तो लगता है उपलब्धियों की किताब है जो मैं इस इंटरव्यू में तो नहीं बता सकूंगी, लेकिन आपके अभिनय की बात हो, आपके संगीत की बात हो, आपके वादन की बात हो, आपके स्टेज क्राफ्ट की बात हो, इतनी सारी कलाओं को आप अपने में समेटे हुए हैं और रंगमंच आपका बेस बना, आधार बना है। अभी यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे रंगमंच के लिए जब वर्कशॉप में आते हैं बड़े उत्साह से आते हैं, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अभी बीच में मुझे ऐसा लगा कि समाज के साथ जुड़ने के लिए कुछ झरोखे चाहिए होते हैं जहाँ से उनकी बात हम तक आए, हम उन्हें कुछ बता सकें। ये छोटी छोटी खिड़कियों में ये थिएटर्स बड़े प्रभावशाली हैं, तो उन सारे लोगों को जो थिएटर से जुड़ना चाहते हैं, क्या क्या हासिल किया जा सकता है ज़िंदगी में थिएटर से जुड़ के?
0: एक तो ज़िंदगी का सलीका थिएटर से ही मिलता है। आप अगर थिएटर से जुड़े हैं तो एक तो कभी अकेला नहीं महसूस करेंगे, और थिएटर को एक्टिंग के उसमें ना लें, अगर ये तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है कि हम एक्टिंग करने के लिए थिएटर, ज़िंदगी सीखने के लिए अगर आपको जाना है तो थिएटर ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ सब कुछ सीखने मिलेगा और सीखना पड़ेगा आपको
1: जी।
0: क्योंकि थिएटर में ऐसा कोई काम नहीं जो आपको नहीं आना चाहिए, वो झाड़ू लगाने से लेके और कपड़े धोने से लेके और खाना बनाने से लेके सब कुछ, सबसे पहली जिम्मेदारी यही होती है कि आपको किचन संभालना आना चाहिए, क्योंकि वो जो रस का स्वाद जो आप तैयार करते वही ज़िंदगी का स्वाद है कि आप कैसे अपनी ज़िंदगी को संभालते हैं। और क्या है कि सीखने के लिए समंदर पड़ा हुआ है पूरा, एक ज़िंदगी बड़ी छोटी सी लगती है, सच कह दूँ ज़िंदगी इतनी छोटी है कि इतना कुछ पड़ा हुआ है। और अगर आपने पहले से तय कर लिया कि मुझे वो बनना है, जैसे आपने मंजिल बना ली तो आप तो बन तो जाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या है? इसलिए मैंने कोई मंजिल नहीं बनाई, मैंने सीखना बस रास्ता बनाना चाहा है कि रास्ता बनाते चलूँ, कहीं ध्यान नहीं जाता अवार्ड ये मिल जाए, वो एकदम जिम्मेदारी लगती है कि आप सही रास्ते पे हैं, बस ये पता लग जाता है अगर कोई अवार्ड मिल जाता है कि सही रास्ते पे हैं, उससे बहुत ज़्यादा खुश नहीं कि मैं बस अब बन गया, बनता कभी नहीं है, सच कह रहा हूँ, जितना सीखते उतना खालीपन लगता है। तो एक तो मुझे तैरने में मज़ा नहीं है, मुझे डूबने में ज़्यादा मज़ा आता है कि डूब के अगर कोई काम किया जाए तो देखिए उसका कुछ और ही प्रभाव पड़ता है, असर होता है। कोई भी काम अगर डूब के किया जाए बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल जी। कल का जो नाटक था उसने बहुत सारी बातों के साथ साथ संवेदनशीलता के एक पक्ष को भी बड़े प्रबल रूप में रखा। एक मजाक के रूप में एक बातचीत शुरू होती है, बाद में एक संवेदनशील एक इंसान के रूप में बदलना, और फिर तो ये थिएटर के साथ भी मुझे लगता है कि ये जो कलाएं हैं आज जो संवेदनहीनता के दौर से हम गुजर रहे हैं, प्रकृति के प्रति हम बोलते हैं लेकिन हम आपस में भी संवेदनहीन हो रहे हैं।
0: जी जी जी।
1: तो ये थिएटर किस प्रकार इस चीज को हमारे जीवन में वापस ला सकता है?
0: बस यही है जैसा मैंने कल वो प्ले, यही इसीलिए मैंने किया कि भैया ये कुछ तो एक अख्तियार कर लीजिए, कोई एक चीज़ तो, चाहे वो पेंटिंग हो चाहे कुछ हो, अब कुछ तो एक आपका साथी होना चाहिए हैं, इंसान साथियों में नहीं आते
1: जी।
0: हाँ, यही कोई एक कला है, अगर आप उसे अख्तियार कर लें।
2: शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
0: करने के लिए कोई काम नहीं करना चाहिए, तो बस यही है। जी जी जी।
1: एक ही नाटक आप कई बार कई मंचों पे करते हैं
0: जी,
1: क्या कुछ नया हो जाता है? जैसे एक राग मालकोंश कोई प्रस्तुत करता है एक मंच पे, अगली बार फिर राग मालकोंश ही गाता, फिर भी वो नया होता है।
0: क्योंकि मैंने बांध के कुछ नहीं रखा है कि रट्टे मार के, मैं बिल्कुल नहीं करता, समझ के और वो है उस तरह से मैंने रिहर्स किया इस नाटक को, तो हर दिन चेंज हो जाता है, हर दिन कुछ ना कुछ फर्क आता है, जैसे किया था अजीब वैसे नहीं, फिर ऑडियंस को देख के भी फिर कुछ
1: इम्प्रोवाइज होता है। जी। कई सारी भाषाओं पर आपका अधिकार है
0: जी।
1: और कई सारे डायलॉग्स आपके बहुत सारे लोगों तक पहुंचते हैं और लोगों को बहुत हंसाते हैं, आप हर भाव में बड़े पारंगत हैं, आप हंसा भी सकते हैं, रुला भी सकते हैं, गंभीर भी हो जाते हैं, तो ऐसी कोई बात हमारे श्रोताओं तक इस रेडियो के माध्यम से पहुंचे?
0: वो जो रास्ते में दवा बेचने वाले नहीं होते हैं, तो मैंने एक बार करके दिखा दिया था, यूं इम्प्रोवाइज है वो सारा। तो लो जी उठ बैठ, मुश्किल कुशा है जिसको काटे काला नाग कई पैर जिए। लो भाई मेरे सज्जनों, जिसको काटे जुल्फ नागर मांग कर पानी ना पिए, अजगर करे न चाकरी।

0: पंछी करे ना काम, दास मलू का कह गए सबके दादा राम, बच्चे जरा बैठ जा। तो मेहरबान कदरदान उगालदान थूकदान पीकदान, आपकी बस्ती में आपके नगर में हर माई की 24 तारीख को आता हूँ। क्यों आता हूँ, किस लिए आता हूँ बताऊंगा। पेट में दर्द होता है, मसूड़ा सूख गया है, पेट में दर्द होता है, जो दवा बताऊंगा एक तोला गद्दी पर रख के फांकी मारू, ऊपर से एक लाट ठंडा पानी पियो, सुबह को खाओ, शाम को मर्ज रहेगा ना मरीज रहेगा। दांतों में दर्द हो गया है, मसूड़ा सूख गया है, जो मंजन बताऊंगा एक तोला गद्दी पर रख के दो घिस्से इस तरह मारो, दो घिस्से उस तरह मारो, ठंडे पानी से कुल्ली करो 3200 बार, बस भूलना।
1: क्या बात है सर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
0: थैंक यू सो मच।
1: कितने अद्भुत अनुभव आपको अपनी इस रंग यात्रा के दौरान हुए हैं
0: जी।
1: और ये खुशी, ये हंसी, ये जो आनंद है आपके जीवन में, और उमंग लाए और आप बहुत आगे तक जाएं। बहुत ही अच्छी बातचीत, बहुत सारे पक्षों को हमने आज इस बातचीत में समेटने की कोशिश की है। हमारे श्रोताओं में बच्चे भी हैं, युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सभी लोग आज आपको सुन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे?
0: एक तो ऑडियंस को देख के बड़ा अच्छा लगा मुझे, और ऐसा लगता है कि बार बार वापस आता रहूं। और क्या है कि सिर्फ ऐसा लगता है कि सिर्फ परफॉर्म करनी, यहाँ से भी कुछ सीख के ही जाता हूँ कि जिस तरह के लोग, जिस तरह से प्यार यहाँ मिलता है, तो ऐसा लगता है कि क्यों ना मैं शामिल रहें। तो बस यही है, और बस यहाँ जो थिएटर रंगकर्मी हैं उनसे कहना चाहूँगा कि वक्त ज़ाया ना करें, अपने आप को पहचानें, क्योंकि खूबी सबके अंदर ईश्वर ने दी हुई है, खामियां भी हैं, खूबियां भी हैं, तो खामियों को खूबियों में तब्दील करिए, और जो खूबियां उनको और बेहतर बनाने की कोशिश करिए। सीधी बात यह है, वक्त जाया ना करो, लेजी मत बनो।
1: बहुत अच्छा लगा आज रघुवीर यादव जी हमारे साथ रहे, और वाकई में आपकी ये सृजन धर्मिता, इसी तरह आपकी मंजिल, जैसा आपने कहा कि आप मंजिल को देख कर नहीं चल रहे हैं, बल्कि यात्रा के अलग अलग पड़ाव में आप लोगों से जुड़ रहे हैं, प्रकृति से जुड़ रहे हैं, और सारी बातों को साथ लेकर आपके अंदर जो कुछ भी है उसे उड़ेल कर आप दे रहे हैं हम सबको। ये यात्रा ऐसी ही बनी रहे, आपकी सृजन धर्मिता से आप लोगों को यूं ही प्रेरणा और मनोरंजन देते रहें, यही मेरी कामना रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर यहाँ आने के लिए और बातचीत करने के लिए।

इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे भारत के प्रसिद्ध अभिनेता और रंगकर्मी श्री रघुवीर यादव से ली गई भेंट वार्ता। भेंट करता थी सुप्रिया भारतीयन। यह आकाशवाणी बिलासपुर की प्रस्तुति थी। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में।

इनसे मिलिए कार्यक्रम का अनुप्रसारण रायपुर केंद्र से किया जा रहा था। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन।

बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बातों और गीतों के कार्यक्रम गुंजन में। आज आपके साथ मैं हूँ स्वाति। श्रोताओं, आज तारीख है 3 जुलाई। आज हम कुछ बातें करेंगे उन खास घटनाओं, जन्म और महत्वपूर्ण दिवस पर जिनका संबंध आज की तारीख यानी कि 3 जुलाई से है। आज है अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। इसके साथ साथ साहित्य जगत में भी ये तारीख अविस्मरणीय है, क्योंकि विश्व प्रसिद्ध लेखक फ्रांस काफ्का का जन्म भी आज के दिन ही हुआ था। तो इन सभी विषयों पर आज गुंजन में हम कुछ बातें करेंगे, मगर आइए शुरुआत करते

ते हैं इस मोहक गीत से। फिल्म का नाम है दिल क्या करे, आवाज़ें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की, संगीत है जतिन ललित का।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन। नदियों को नाला बना दिया, जमीन को बंजर कर डाला, इंसान ने अपनी सहूलियत के लिए सुंदर धरा को जहरीला कर डाला। एक सवाल मन का दरवाज़ा खटखटाता है, मगर उसके जवाब से हम सब आंखें चुराते हैं। ये बताइए, क्या एक रुपए की प्लास्टिक की थैली हमारी करोड़ों की सेहत और इस खूबसूरत धरती से ज़्यादा कीमती है? जवाब हम सब का एक है, नहीं। लेकिन हम अपनी आदतों और सुविधाओं के गुलाम हैं, इसीलिए पर्यावरण को प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस विश्व स्तर पर मनाया जाता है। श्रोताओं, बातें अभी और भी हैं, पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम गुंजन का ये अगला गीत। फिल्म का नाम है मैंने दिल तुझको दिया। इसमें आवाज़ें हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की। गीत लिखा है फैज़ अनवर और प्रवीण भारद्वाज ने, और संगीत डब्बू मलिक का है।

0: चौपाल में नवा कार्यक्रम शुरू हुई सवे रविवार संझा के ठीक 7:30 बजे से।
1: हाँ, फरमाइशी कार्यक्रम हवे, संगी अपन फरमाइश भेजी और हमन गीत बजाबो।
0: कौन सा गीत?
2: सुघर गीत जैसे

0: बस हमर कार्यक्रम में मेल करी किसानवाणी अंबिकापुर 2026@gmail.com। जुलाई के पहला रविवार से कार्यक्रम शुरू होही।
1: चौपाल फरमाइश।
2: श्रोताओं, आज कार्यक्रम गुंजन में बात हो रही है उस जहर की जो हमारी रसोई से लेकर हमारी सांसों तक पहुंच चुका है, यानी कि प्लास्टिक बैग। क्या आप जानते हैं कि जिस प्लास्टिक की थैली को हम केवल 10-12 मिनट प्रयोग करके कचरे में फेंक देते हैं, उसे धरती माँ के सीने से पूरी तरह समाप्त होने में 500 से 1000 साल तक लग जाते हैं। ये प्लास्टिक मिट्टी की उर्वरा शक्ति पर भी बुरा प्रभाव डालता है। ये मिट्टी में मिलकर उसकी पानी अवशोषित करने की, यानी कि

पानी को सूखने की क्षमता को रोक देता है। आपने घरों के आसपास भी देखा होगा कि प्लास्टिक बारिश के पानी में बहकर नालियों को भी जाम कर देता है, जिससे गंदा पानी कई बार सड़कों पर भी आने लगता है। श्रोताओं, पर्यावरण ही नहीं, मनुष्य और पशु पक्षियों के लिए भी प्लास्टिक जानलेवा सिद्ध होता है। इस विषय पर कुछ और बातें करेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं अभिजीत सावंत और सुनिधि चौहान के स्वरों में गाए इस गीत को, जिसमें बोल हैं समीर के, संगीत हिमेश रेशमिया का है और फिल्म का नाम है आशिक बनाया आपने।

श्रोताओं, गीत से पहले हम बात कर रहे थे कि प्लास्टिक सभी जीवधारियों के लिए भी नुकसानदायक है। इससे कैंसर होने का खतरा होता है। गर्म खाना अगर हम प्लास्टिक या प्लास्टिक के बने डब्बों या किसी बर्तन में रखते हैं जो प्लास्टिक का बना हो, तो इससे जहरीले रसायन जैसे बिस्फेनॉल ए भोजन में मिल जाते हैं, जो कैंसर का खतरा बढ़ा देते हैं। इसलिए जहाँ तक हो सके इसके प्रयोग से बचना चाहिए। ये प्लास्टिक जितना हम मनुष्यों को हानि पहुँचाता है, उतना ही पशुओं और अन्य जीवों की जान पर भी ये बहुत बड़ा संकट है। आए दिन समाचारों में हम पढ़ते, सुनते और देखते ही हैं कि गाय और अन्य आवारा पशु कचरे के साथ प्लास्टिक खा लेते हैं, जो कभी उनके गले में अटक जाता है तो कभी इससे उनके पेट में गांठ बन जाने से उनकी मृत्यु हो जाती है। इतना ही नहीं, लाखों टन प्लास्टिक हर साल समुद्र में फेंका जाता है, जिसे जाकर उसमें रहने वाले जीव, कछुए, मछलियां और व्हेल ये उसे खा लेते हैं और इसके कारण दम घुटने से उनकी मृत्यु हो जाती है। श्रोताओं, प्लास्टिक के प्रयोग की समस्या बहुत गंभीर है और इन गंभीर बातों के बाद आइए थोड़ा सा अपना मन हल्का करते हैं फिल्म पापा कहते हैं कि इस गीत के साथ। इसमें आवाज़ है उदित नारायण की, गीत लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत राजेश रोशन का है।

0: ओ समझ गई, यानी 230-600। पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
1: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का एसटीडी कोड लगाओ 0777 4 और मिला दो 230-600।
0: अरे वाह, 0777 4 230-600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की, अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
1: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर, मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।

0: राम राम हो विष्णु भैया,
1: राम राम विष्णु भैया।
0: ए दे भाई नगद तो दे फट फट फट फट ट्रैक्टर में दे राउर भीड़े ही।
1: कैसे कहिया विष्णु भैया, ए दे आगु तो ए दे बर्धमान ले खेत ला जोतत रहे।
0: हाँ
1: है नहीं
0: हाँ?
1: बेरा हर ज्यादा लगे।
0: हाँ
1: मैं दे रेडियो कर कार्यक्रम ला सुने।
0: कौन कार्यक्रम ला?
1: ये दे किसान वाणी।
0: हाँ
1: तेकर में यदि जानकारी भेटाइस नहीं।
0: हाँ।
1: ये दे राउत ला हालू हालू बढ़िया लेहन खेती करना है नहीं तो नवा तकनीक ले खेती करी। अब यदि विशेषज्ञ मन कर जानकारी ला सुन पारे में।
0: हाँ।
1: आए?
0: हाँ।
1: तेकर में कहन की दे ट्रैक्टर ला बिसोहू बने राउर बिसोए के तो देखी राउर कर उपज नहीं बढ़ी नहीं।
0: हाँ।
1: ताहा
0: तो राउर ऐसे कहा थी कि ये दे सांझा 7:30 बजे रोज जे कार्यक्रम आयल किसान वाड़ी तेला सुन के
1: हो
0: ये दे बढ़िया बढ़िया तकनीक ला सीखे ही। ये तो महू तो सुनू भाई ये दे आकाशवाणी अंबिकापुर कर ये सुघर कार्यक्रम किसान वाड़ी ला रोज 7:30 बजे ले 8 बजे कर बीच और मीडियम वेव 238.09 मीटर चाहे कही तो 1260 किलोहर्ट्ज पर नहीं। अब आज कर तो भाई कहता है कि ये दे FM में भी 100.2 MHz में भी एला दे सुन सकते
1: है। हाँ, अभी तो शुरू है कि सा है।
0: हाँ, तो नागा तो देखी भाई अब माहू सुनू आकाशवाणी अंबिकापुर ले आए वाला कार्यक्रम खेती पाती ले जुड़ल कार्यक्रम
1: किसान वाणी।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुंजन स्वाति के साथ। अभी आपने सुना फिल्म दिल चाहता है का ये गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में। इस गीत को लिखा था जावेद अख्तर ने और इसकी धुन तैयार की थी शंकर एहसान लॉय ने। श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस, इस पर आज हम कुछ बातें कर रहे थे। ये दिवस केवल एक दिन मनाने और उस पर कुछ चर्चा परिचर्चा करने या फिर किसी तरह के आयोजन करने तक सीमित नहीं रह जाना चाहिए, इस बात का हम सभी को ध्यान देना होगा। ये हम सब का नैतिक कर्तव्य है कि स्वयं के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए हम उदाहरण बने, उनके स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य को गंभीरतापूर्वक ध्यान में रखते हुए अपने शहर, ज़िले, राज्य, देश और फिर अपनी पूरी धरती को प्लास्टिक मुक्त करने के प्रयास में हम सभी अपना अपना योगदान दें। साथ ही समाज में इसके प्रति जागरूकता भी फैलाएं। एक एक प्रयास ही वो कड़ी है जो इस मुहिम को सफल बना सकती है। तो इस संकल्प के साथ आइए कार्यक्रम गुंजन में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं फिल्म तुमसा नहीं देखा का ये गीत उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में। इस गीत को लिखा है समीर ने और संगीत है नदीम श्रवण का।

0: रेखा जल्दी रेडियो लगा, मंगलवार है, घर आंगन मेल में मेरी चिट्ठी आने वाली है।
1: अरे पर दीदी मुझे तो फोन पर बात करनी थी, क्या आज फोन नहीं लगेगा?
2: अरे नहीं रेखा, फोन के लिए शनिवार सुबह 10:30 पर नंबर मिलाना है। फोन इन का प्रसारण तो रविवार दोपहर 1:10 पर ही होगा। आज मंगलवार को सिर्फ पत्र और ईमेल वाला मेल ही आएगा।
0: पर आरती रेडियो ठीक से सेट तो कर दे।
2: रेडियो एकदम सही सेट है, मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: अच्छा और फोन नंबर क्या है?
2: नंबर है 231 917

0: और 231918 कोड लगाओ 07774। और पत्रों के लिए ईमेल याद है ना, gharanganair@gmail.com।
1: समझ गए, मंगलवार को मेल और रविवार को फोन।
0: आकाशवाणी अंबिकापुर, घर आंगन। मंगलवार घर आंगन मेल, रविवार फोन इन, बात करें, गीत सुने। सुनिए मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: घर आंगन, आपकी आवाज, आपकी पहचान।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुंजन स्वाति के साथ। आज 3 जुलाई के दिन सन 1883 में प्राग, ऑस्ट्रिया हंगरी में 20वीं सदी के सर्वश्रेष्ठ लेखकों में से एक फ्रांस काफ्का का जन्म हुआ था। काफ्का को साहित्य में रुचि रखने वाले बहुत अच्छे से जानते हैं। काफ्का 20वीं सदी के प्रभावशाली और रोचक लघु कहानियों और उपन्यास के जर्मन लेखक थे। इनका जन्म प्राग में हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी सभी रचनाएं जर्मन भाषा में लिखीं। उनकी जर्मन भाषा में लिखी गई रचनाएं वैश्विक साहित्य का हिस्सा बनी। तो श्रोताओं, लेखक काफ्का के बारे में हम और भी कुछ बातें करेंगे, लेकिन आइए कार्यक्रम गुंजन में सुनते हैं ये अगला गीत फिल्म बाजीगर से। आवाजें हैं आशा भोसले और विनोद राठौड़ की। गीत लिखा है जफर गोरखपुरी ने और संगीत अनु मलिक का है।

0: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू
1: बेबी को बेस पसंद है।
2: इंस्टा फरमाइश, आपकी पसंद मनभावन और ईमेल की गूंज के बाद हम आपके लिए लेकर आए हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का एक और कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश। इसके लिए आपको करना है ये कि आकाशवाणी अंबिकापुर के इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज पर पोस्ट किए गए पोस्टर पर अपनी फरमाइश, नाम और पता कमेंट सेक्शन में लिखना है। बस हो गया आपका काम खत्म और हमारा शुरू। फिर हम शामिल करेंगे आपको कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश में, जिसे आप सुनेंगे हर रात 8:00 से 8:45 तक। तो देर किस बात की, आज ही अपने पसंदीदा गीत की फरमाइश भेजें और सुनिए कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश।
1: बेबी को बेस पसंद है।
3: श्रोताओं, इस गीत से पहले हम बात कर रहे थे लेखक उपन्यासकार फ्रांस काफ्का के बारे में। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना द मेटामॉर्फोसिस है, जिसे द ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में भी अनुवादित किया गया है। ये सन 1915 में प्रकाशित एक उपन्यास है जो आधुनिक साहित्य की सबसे प्रभावशाली और चर्चित रचनाओं में से एक है। यदि आप भी साहित्य में रुचि रखते हैं तो इस उपन्यास को ज़रूर पढ़ें। और आइए अब सुनते हैं गुंजन का ये अगला गीत फिल्म साजन से, जिसमें आवाज़ है अनुराधा पौडवाल की, गीत लिखा है समीर ने और संगीत नदीम श्रवण का है।

इसी के साथ कार्यक्रम गुंजन यहीं समाप्त होता है। प्रादेशिक समाचार अब हम रायपुर केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। राजधानी रायपुर में आज से 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और प्रदेश में मानसून के सक्रिय होने के साथ ही खेती किसानी के काम में आई तेजी, निर्धारित लक्ष्य का लगभग 13% बोनी का कार्य पूरा हुआ। अब समाचार विस्तार से। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे। कार्यशाला में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वोत्तम प्रथाएं साझा की जाएंगी और कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों पर चर्चा होगी। राजधानी रायपुर में आज से 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सम्मेलन में मुख्य अतिथि होंगे। सहकारिता विभाग और अपेक्स बैंक द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से किसान, सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि और विशेषज्ञ शामिल होंगे। कृषि मंडपम ऑडिटोरियम में होने वाले इस 2 दिवसीय सम्मेलन में सहकारिता, कृषि विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने पर चर्चा की जाएगी। इससे पहले आज सुबह रायपुर के मरीन ड्राइव में सहकार संकल्प दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौड़ में युवा, विद्यार्थी, किसान, सहकारी संस्थाओं के सदस्य और विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हुए। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थयात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर का दर्शन करेंगे। श्रद्धालु लगभग 3,888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा में भगवान शिव का आशीर्वाद लेने और प्राकृतिक

0: रूप से निर्मित बर्फ के शिवलिंग के दर्शन करने के लिए जाते हैं। यह यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। प्रदेश में मानसून के सक्रिय होने के साथ ही खेती किसानी के काम में तेजी आ गई है। अब तक लगभग 6,25,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बोनी पूरी हो चुकी है, जो निर्धारित लक्ष्य का लगभग 13% है। इस खरीफ सीजन में राज्य में 48,69,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बोनी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किसानों को मांग के अनुरूप खाद और प्रमाणित बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही खाद बीज वितरण व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही पर कार्रवाई करने को कहा है। कृषि विभाग के अनुसार अब तक किसानों को 7,28,000 मीट्रिक टन उर्वरक और 3,00,000 क्विंटल से अधिक प्रमाणित बीज वितरित किए जा चुके हैं। मौसम विभाग ने आज मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी से अति भारी बारिश होने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। वहीं प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान बस्तर संभाग में एक दो स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश हुई। वहीं दुर्ग, बिलासपुर और सरगुजा संभाग में एक दो स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई है। मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी जिले के औंधी क्षेत्र में कल आए आंधी तूफान में एक पेड़ 11 KV विद्युत लाइन पर गिर गया, जिससे आसपास के दर्जनों गांव में बिजली आपूर्ति ठप हो गई। सूचना मिलने पर विद्युत विभाग की टीम मौके पर पहुंची और देर शाम तक विद्युत आपूर्ति को बहाल किया गया। युवाओं, महिलाओं, किसानों और नए उद्यमियों को स्वरोजगार और उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने जिला व्यापार और उद्योग केंद्र द्वारा आज सुकमा में तेजस कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। कार्यशाला में विशेषज्ञ प्रतिभागियों को स्टार्टअप पंजीकरण, विभिन्न शासकीय योजना, ऋण, बैंक और वित्तीय सहायता, मार्केटिंग, ब्रांडिंग और व्यवसाय शुरू करने और उससे आगे बढ़ाने के बारे में जानकारी देंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। राजधानी रायपुर में आज से 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। और प्रदेश में मानसून के सक्रिय होने के साथ ही खेती किसानी के काम में आई तेजी, निर्धारित लक्ष्य का लगभग 13% बोनी का कार्य पूरा हुआ। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं। समय है तापमान सूचना का। स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में अंबिकापुर नगर का अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस, साथ ही वर्षा 49 मिलीमीटर दर्ज की गई। तापमान सूचना समाप्त हुई।

लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज के शेष प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। सुबह 11:05 पर आप सुन सकेंगे श्रोताओं के समीक्षात्मक पत्रों और ईमेल पर आधारित आपका मनपसंद कार्यक्रम चिट्ठी पत्री। दोपहर 12:00 एनसीईआरटी और सीआईटी द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग का अनुप्रसारण किया जाएगा। एक ही शीर्षक पर आधारित फिल्म संगीत के कार्यक्रम चयन का आप आनंद ले सकेंगे दोपहर 12:30 पर।

दोपहर 1:05 पर खेती की बात का पुनः प्रसारण किया जाएगा। ग्रामीण महिलाओं के कार्यक्रम घर गोसाई का प्रसारण होगा दोपहर 1:10 पर, जिसमें चर्चा का विषय होगा बारिश का पानी संजोने के उपाय, नई कृषि

पद्धति का लाभ और यातायात के नियम और उनकी सावधानियां। दोपहर 1:40 पर श्रोताओं के ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत के कार्यक्रम ईमेल की गूंज का आप सभी आनंद ले सकेंगे। गैर फिल्मी गीतों और गजलों के कार्यक्रम गीत गंधा का प्रसारण होगा दोपहर 2:30 पर।

शाम 5 बजे से हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होगी, जिसमें शाम 5 बजे आप सुन सकेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। शाम 5:05 पर भजन संध्या का प्रसारण किया जाएगा। शाम 5:30 पर युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवाणी आप सुन सकेंगे, जिसमें आप सुनेंगे हेलो फ्रेंड्स। शाम 6:05 पर विचार बिंदु का पुनः प्रसारण किया जाएगा। विषय है निरंतरता, संकलन और वाचन स्वर है विक्की गुप्ता का।

लोकगीतों के कार्यक्रम गोधूली का आप आनंद ले सकेंगे शाम 6:20 पर। शाम 6:30 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी प्रसारित किया जाएगा। सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा, इसका प्रसारण किया जाएगा शाम 7:05 पर। और शाम 7:20 पर ग्रामीण श्रोताओं के कार्यक्रम चौपाल का प्रसारण किया जाएगा। रात 8:00 सोशल मीडिया आधारित फरमाइशी कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश का आप आनंद ले सकेंगे। और रात्रि 9:15 पर फिल्म संगीत के कार्यक्रम चित्रपट संगीत का भी आप आनंद ले सकेंगे। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे ईमेल की गूंज।

राग प्रधान कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात्रि 10 बजे। रात्रि 10:30 पर कार्यक्रम मन भावन का प्रसारण किया जाएगा। और ये तो थी हमारे केंद्र से आज के प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की एक संक्षिप्त रूपरेखा। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 10:05 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है नए फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम नए तराने।

स्वागत है साथियों आप सभी का कार्यक्रम नए तराने में। और आज नए तराने कार्यक्रम का पहला गीत आइए सुनते हैं फिल्म बरेली की बर्फी से, जिसमें आवाज़, गीत और संगीत अर्को का है।

0: अपनापन, वो भरोसा जो सालों साल आपने दिखाया हम पर,
1: उसे और मजबूत बनाने हम ला रहे हैं FM 100.2 MHz पर अपना प्रसारण।
0: साफ और स्पष्ट आवाज अब और भी बेहतर अंदाज में आपके दिलों तक।
1: तो जुड़िए आकाशवाणी अंबिकापुर से और जोड़िए आपके अपनों को भी।
0: आपका अपना आकाशवाणी अंबिकापुर, मीडिया वेव 1260 किलोहर्ट्ज के साथ अब FM 100.2 MHz पर भी।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नए तराने स्वाति के साथ। आइए अब आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं मोनाली ठाकुर की आवाज में फिल्म लुटेरा का ये गीत। गीत लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत है अमित त्रिवेदी का।

0: चौपाल में नवा कार्यक्रम शुरू हुई सवे रविवार संझा के ठीक 7:30 बजे से।
1: हाँ, फरमाइशी कार्यक्रम हवे, संगी अपन फरमाइश भेजी और हमन गीत बजाबो।
0: कौन सा गीत?
2: सुघर गीत जैसे

0: बस हमर कार्यक्रम में मेल करी किसान वाणी अंबिकापुर 2026@gmail.com। जुलाई के पहला रविवार से कार्यक्रम शुरू हो ही।
1: चौपाल फरमाइश।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम नए तराने, इसमें आप सुनते हैं अगला गीत फिल्म ऐ दिल है मुश्किल से। गीत को गाया है अरिजीत सिंह ने, शब्द रचना है अमिताभ भट्टाचार्य की और धुन तैयार की है प्रीतम ने।

0: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू
1: बेबी को बेस पसंद है।
2: इंस्टा फरमाइश, आपकी पसंद मनभावन और ईमेल की गूंज के बाद हम आपके लिए लेकर आए हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का एक और कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश। इसके लिए आपको करना है ये कि आकाशवाणी अंबिकापुर के इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज पर पोस्ट किए गए पोस्टर पर अपनी फरमाइश, नाम और पता कमेंट सेक्शन में लिखना है। बस हो गया आपका काम खत्म और हमारा शुरू। फिर हम शामिल करेंगे आपको कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश में, जिसे आप सुनेंगे हर रात 8:00 से 8:45 तक। तो देर किस बात की, आज ही अपने पसंदीदा गीत की फरमाइश भेजें और सुने कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश।
1: बेबी को बेस पसंद है।
3: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नए तराने और अब हम बढ़ते हैं अगले गीत की ओर। नीरज श्रीधर और सुनीति चौहान की आवाज़ों में आइए सुनते हैं इरशाद कामिल का लिखा ये गीत, जिसमें संगीत प्रीतम का है और फिल्म का नाम है लव आजकल।

0: चौपाल में नवा कार्यक्रम शुरू हुई सवे रविवार संझा के ठीक 7:30 बजे से।
1: हाँ, फरमाइशी कार्यक्रम हवे, संगी अपन फरमाइश भेजी और हमन गीत बजाबो।
0: कौन सा गीत?
2: सुघर गीत जैसे

0: बस हमर कार्यक्रम में मेल करी किसानवाणी अंबिकापुर 2026@gmail.com। जुलाई के पहला रविवार से कार्यक्रम शुरू होही।
1: चौपाल फरमाइश।
2: श्रोताओं आइए अब सुनते हैं फिल्म रुस्तम

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नए तराने। आइए अब सुनते हैं फिल्म रॉय का ये गीत, जिसमें आवाज है मीत ब्रोज अनजान और कनिका कपूर की। इनकी आवाजों में आइए सुने ये गीत, जिसे लिखा है कुमार ने और संगीत मीत ब्रोज और अनजान का है।

लक बाई चांस। आइए कार्यक्रम नए तराने में सुनते हैं इस फिल्म से ये गीत, जिसमें आवाज है शंकर महादेवन की, गीत लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत शंकर एहसान लॉय का है।

आइए अब सुनते हैं फिल्म मर जावा का ये गीत जुबिन नौटियाल की आवाज़ में। गीत लिखा है कुणाल वर्मा ने और संगीत है पायल देव का।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नए तराने और आइए अब सुनते हैं फिल्म शेरशाह का ये गीत, जिसे गाया है बी प्राक ने, गीत लिखा है जानी ने और संगीत भी है बी प्राक का।

आइए अब सुनते हैं फिल्म तमाशा का ये गीत अलका याग्निक और अरिजीत सिंह की आवाज़ों में। गीत लिखा है इरशाद कामिल ने और संगीत है AR रहमान का।

आइए श्रोताओं, कार्यक्रम नए तराने में अब बढ़ते हैं अगले गीत की ओर और सुनते हैं फिल्म ऑल इज वेल का ये गीत अरिजीत सिंह की आवाज़ में। गीत लिखा है शब्बीर अहमद ने और संगीत हिमेश रेशमिया का है।

श्रोताओं, आपको हम याद दिला दें कि अब से कुछ ही समय पश्चात अर्थात सुबह 11:05 पर आप सुन सकेंगे श्रोताओं के समीक्षात्मक पत्रों और ईमेल पर आधारित आपका मनपसंद कार्यक्रम चिट्ठी पत्री। दोपहर 12:00 एनसीईआरटी और सीआईटी द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग का अनुप्रसारण किया जाएगा। एक ही शीर्षक पर आधारित फिल्म संगीत के कार्यक्रम चयन का आप आनंद ले सकेंगे दोपहर 12:30 पर। और मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। 11 बजने वाले हैं हिंदी समाचार, अब हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमापार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाइची ने अलकायदा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत अपनी मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। इस मुश्किल समय में स्थानीय लोग भारतीय डॉक्टरों और मेडिकल टीम की निस्वार्थ सेवा की सराहना कर रहे हैं। भारत वेनेजुएला में सबसे पहले मदद करने वाले देशों में शामिल है। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंदी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में उनके परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा है। आयोग ने संबंध में दोनों गुटों के दावों और आपत्तियों पर ममता बैनर्जी और पार्टी नेता ऋतव्रत बैनर्जी को अलग अलग पत्र लिखे हैं। आयोग ने कहा कि दोनों पक्षों को सोमवार शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई अपने पिता और पूर्व सर्वोच्च नेता

0: आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में सुरक्षा कारणों से शामिल नहीं होंगे। भारत में ईरान के प्रतिनिधि आयतुल्ला हकीम इलाही ने बताया कि सुरक्षा जोखिमों के कारण मुज्तबा खामेनेई का सार्वजनिक रूप से सामने आना सुरक्षित नहीं है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम 4 से 9 जुलाई तक ईरान और इराक में होगा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर के दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। एक पत्र में श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक सनातन अध्याय बताया। पुर्तगाल फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। कनाडा के टोरंटो में आज पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। मंगलवार को डलास में प्री क्वार्टर फाइनल में पुर्तगाल का सामना स्पेन से होगा। इससे पहले लॉस एंजलिस स्टेडियम में कल रात स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हिंदी समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 11:05 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के पत्रों पर आधारित कार्यक्रम चिट्ठी पत्री।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना प्रिय कार्यक्रम चिट्ठी पत्री। मैं हूं शक्ति और आज इस कार्यक्रम में आपके पत्रों का जवाब देने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं प्रमेंद्र कुमार जी। आपका हार्दिक स्वागत है प्रमेंद्र जी।
1: धन्यवाद शक्ति, और साथ ही साथ चिट्ठी पत्री सुन रहे हमारे सभी श्रोताओं को मैं नमस्कार करता हूँ। और देखिए, आज हमारे पास ढेर सारे पत्र और ईमेल हैं, तो बिना विलंब किए शुरू करते हैं पत्रों और ईमेल का सिलसिला। तो सबसे पहला पत्र आज आप किनका ले रही हैं?
0: आज का पहला पत्र हमें प्राप्त हुआ है शाहदरा स्थित बिहारी कॉलोनी से। यह पत्र भेजा है वलीम सलीम अंसारी जी और आसमा नाज जी ने। अपने पत्र में आप लिखते हैं, पिछले कई वर्षों से आकाशवाणी अंबिकापुर के नियमित श्रोता हैं। सुबह प्रसारित होने वाले गुंजन कार्यक्रम, उसके बाद चयन कार्यक्रम, दोपहर के ईमेल की गूंज और रात्रि में प्रसारित होने वाले इंस्टा फरमाइश कार्यक्रम आप नियमित रूप से सुनते हैं। यदि कभी कोई कार्यक्रम सीधे नहीं सुन पाते तो आप अपने मित्र द्वारा उपलब्ध कराई गई रिकॉर्डिंग के माध्यम से भी उसे सुनते हैं। आगे पत्र में आपने लिखा है, ईमेल की गूंज के कार्यक्रम संचालन तथा श्रोताओं के नामों के प्रसारण संबंधी कुछ सुझाव और अपनी प्रतिक्रिया आपने लिख भेजी है।
1: बिहारी कॉलोनी शहादरा के हमारे प्रिय मित्र, श्रोता मित्र वलीम सलीम अंसारी जी, आसमा नाथ जी और रेडियो श्रोता संघ के सभी सदस्य, आप सभी को आकाशवाणी अंबिकापुर परिवार की ओर से सादर नमस्कार और पत्र लिखने के लिए हार्दिक धन्यवाद। आपने बड़ा ही आत्मीय पत्र लिख भेजा है और जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि आप वर्षों से हमारे नियमित श्रोता हैं और गुंजन, चयन, ईमेल की गूंज तथा अन्य कार्यक्रमों को पूरे मन से सुनते हैं। आपका ये जो निरंतर जुड़ाव है, ये हम सभी के लिए मूल्यवान है। आपने कार्यक्रमों के संबंध में जो अपने विचार और सुझाव हमसे साझा किए हैं, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि श्रोताओं के प्रत्येक प्रतिक्रिया को

0: बड़े ही महत्वपूर्ण ढंग से और बड़ा ही उसे ध्यान देते हैं। और हम श्रोताओं से भी गुजारिश करेंगे कि चूँकि हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि हम आपके नाम को या आपके पता को सत्यापित कर सकें, तो हमारी यही अपेक्षा रहती है आप सभी से कि आप अपना नाम और पता सही लिखकर भेजेंगे। तो और कार्यक्रमों की जहाँ तक बात है, तो हमारा हमेशा से यही प्रयास रहता है कि सभी श्रोताओं की सहभागिता जो है वो कार्यक्रमों में निष्पक्षता के साथ हम करें, संतुलित रहे और पारदर्शिता बनी रहे, और ताकि हमारे सभी श्रोता आकाशवाणी परिवार का अभिन्न सदस्य के रूप में अपने आप को महसूस करें। देखिए, रेडियो केवल आवाज़ों का माध्यम नहीं है बल्कि विश्वास का एक जीवंत पुल है, और ये जो पुल है इसे आपके जैसे जागरूक श्रोताओं के सहयोग से ही मजबूत किया जा सकता है। तो आपकी बात हमारे लिए केवल एक पत्र नहीं है बल्कि ये हमारे प्रसारण को बेहतर बनाने की दिशा में एक प्रेरणा भी है। तो यही कहेंगे कि इसी आत्मीयता के साथ अपना स्नेह, सुझाव और विश्वास बनाए रखिए। आकाशवाणी अंबिकापुर परिवार की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: प्रमेंद्र जी, आइए अब देखते हैं कि अगला पत्र हमें कहां का प्राप्त हुआ है। यह पत्र हमें प्राप्त हुआ है छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी जिले के बनियापारा से। इसे भेजा है श्री रामचंद्र माखीजा काफिर, श्रीमती सविता माखीजा, बेबी स्वाति माखीजा, महेश कुमार कुकरेजा, संध्या कुकरेजा, पूजा छुटकी, शरद कुमार डोडवानी, दीपक मोनू उन्नति, घनशानी, कीरत राय वाधवानी, प्रदीप कुमार साहू और समस्त माखीजा परिवार ने।
0: जी,
1: अपने पत्र में आपने 29 जून 2026 सोमवार के प्रसारण का विस्तार से उल्लेख किया है। आप लिखते हैं कि सुबह प्रसारित आपकी बात आपके गीत कार्यक्रम में मृदुल वर्मा जी ने श्रोताओं से अत्यंत आत्मीयता के साथ बातचीत करते हुए उनकी पसंद के मधुर गीत प्रस्तुत किए जो आपको बहुत पसंद आए। इसके साथ ही आपने रात्रि के प्रसारण, इंस्टा फरमाइश, ईमेल की गूंज, मन भावन तथा सूर्यामिनी कार्यक्रम की भी सराहना की है। विशेष रूप से सूर्यामिनी में पंडित जसराज जी की स्वर प्रस्तुति का उल्लेख करते हुए आपको, सभी कार्यक्रमों के प्रस्तुतकर्ताओं और पूरी प्रसारण टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। आगे अपने पत्र में आपने 1 जुलाई 2026 को प्रसारित गुंजन कार्यक्रम की भी प्रशंसा की है।
0: धमतरी के हमारे प्रिय श्रोता रामचंद माखीजा जी, श्रीमती सविता माखीजा जी तथा पूरा माखीजा परिवार, आप सभी को हमारी ओर से स्नेह भरा नमस्कार, हार्दिक धन्यवाद। आप सभी ने बड़ा ही विस्तृत और आत्मीय पत्र लिख भेजा है, और कहीं ना कहीं ये मन को प्रसन्न करने वाला पत्र है। जानकर खुशी हुई कि आपने 29 जून और से लेकर 1 जुलाई तक के सभी प्रसारणों को ध्यान से सुना है, चाहे वो आपकी बात, आपके गीत कार्यक्रम हो, इंस्टा फरमाइश हो, ईमेल की गूंज, मन भावन, सूर्यामिनी और गुंजन जैसे सभी कार्यक्रमों की सराहना आपने लिख भेजी है। और ये जो सराहना है कहीं ना कहीं हम सभी प्रस्तुतकर्ताओं के लिए अमूल्य प्रेरणा है। विशेष रूप से गुंजन में मोबाइल के संतुलित उपयोग पर आधारित विचार आपको सार्थक लगे, ये जानकर हम सभी को संतोष हुआ। हमारा हमेशा से यही प्रयास रहता है कि मनोरंजन के साथ साथ जीवन को दिशा देने वाले विचार भी श्रोताओं तक पहुँचाए जाएँ। रेडियो की असली पहचान केवल मधुर गीत ही नहीं बल्कि वे विचार भी हैं जो सुनने के बाद देर तक हम सभी के मन में गूंजते रहते हैं। और जब धमतरी के हमारे श्रोताओं का स्नेह आकाशवाणी अंबिकापुर तक पहुंचता है, तब लगता है कि दूरियां केवल नक्शे में होती हैं, दिलों में नहीं। आपका ये अपनापन हमारे लिए अनमोल है। पूरे माखीजा परिवार को आकाशवाणी अंबिकापुर की ओर से हार्दिक धन्यवाद, स्नेह और बहुत बहुत शुभकामनाएँ। इसी तरह हमारे कार्यक्रमों से जुड़े रहिए और लिखते रहिए।
1: अब बढ़ते हैं अगले पत्र की ओर। यह पत्र हमें प्राप्त हुआ है छत्तीसगढ़ के अड़ार नांदघाट से। इसे भेजा है माखन वर्मा जी ने, उनके साथ चांदनी, राहुल, गोपी, भूपेश और दीपेश वर्मा ने भी अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। अपने पत्र में आपने 29 जून को प्रातः प्रसारित आपकी बात आपके गीत कार्यक्रम की सराहना करते हुए लिखा है कि कार्यक्रम में श्रोताओं के विचारों को साझा किया गया और उनकी पसंद के मधुर गीत सुनवाए गए जो आपको बेहद पसंद आए। इस सुंदर प्रस्तुति के लिए आपने मृदुल वर्मा जी और आकाशवाणी परिवार को हार्दिक बधाई दी है। आगे आप लिखते हैं कि 1 जुलाई को प्रसारित आपकी पसंद कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रोताओं के पत्रों को शामिल करते हुए उनकी पसंद के गीत सुनवाए गए। उसी दिन दोपहर में प्रसारित फीमेल की गूंज कार्यक्रम के लिए आपने विक्की गुप्ता जी

0: और समस्त आकाशवाणी को शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। आपने रात्रि 8 बजे प्रसारित इंस्टा फरमाइश कार्यक्रम की भी भरपूर प्रशंसा की है। इस शानदार प्रस्तुति के लिए आपने खुशबू जी को धन्यवाद कहा है। अपने पत्र के अंत में आपने 2 जुलाई को प्रातः 9 बजे प्रसारित गुंजन कार्यक्रम का भी उल्लेख किया है। आप लिखते हैं कि अभिनेता मोहम्मद अजीज के गीतों और वन महोत्सव पर दी गई उपयोगी जानकारी के साथ प्रस्तुत कार्यक्रम अत्यंत रोचक, ज्ञानवर्धक और मनोरंजक रहा। इस सुंदर प्रस्तुति के लिए आपने राजीव जी को शुभकामनाएं प्रेषित की हैं।
1: राम राम, जय जोहार, नमस्कार। अढ़ार नांदघाट के हमारे प्रिय श्रोता माखन वर्मा जी, चांदनी जी, राहुल जी, गोपी जी, भूपेश जी और दीपेश वर्मा जी, आप सभी को आकाशवाणी अंबिकापुर परिवार की ओर से स्नेह भरा अभिवादन, नमस्कार। आप सभी ने बड़ा ही आत्मीय पत्र लिख भेजा है और इस पत्र में आप सभी ने 30 जून से 2 जुलाई तक प्रसारित हमारे लगभग सभी कार्यक्रमों का जिक्र किया है, चाहे वो आपकी बात, आपके गीत हो, आपकी पसंद हो, ईमेल की गूंज, इंस्टा फरमाइश, गुंजन, इन तमाम कार्यक्रमों के बारे में आप सभी ने जिस विस्तार और अपनत्व के साथ विचार साझा किए हैं वो हम सभी के लिए महत्वपूर्ण हैं और इस बात के लिए आप सभी को हृदय से धन्यवाद करते हैं। जानकर प्रसन्नता हुई कि गीतों का चयन, श्रोताओं की सहभागिता और वन महोत्सव जैसे उपयोगी विषय पर दी गई जानकारी आपको पसंद आई। आपके स्नेह भरे शब्द हम सभी कलाकार साथियों, प्रस्तुतकर्ताओं और पूरे कार्यक्रम दल का उत्साह अवश्य रूप से बढ़ा रहे हैं। रेडियो तब सबसे सुंदर लगता है जब उसकी धुनों में श्रोताओं की मुस्कान सुनाई देती है। आप जैसे श्रोता हमारे कार्यक्रमों के केवल श्रोता ही नहीं बल्कि हमारी इस प्रसारण यात्रा के सच्चे सहयात्री हैं, तो इसी तरह अपना स्नेह, सुझाव और विश्वास बनाए रखिए। अड़ार नांदघाट के पूरे श्रोता परिवार को आकाशवाणी अंबिकापुर की ओर से हार्दिक शुभकामनाएँ, ढेर सारा प्यार और बहुत बहुत धन्यवाद। और शक्ति जी, अब आगे बढ़ने से पहले क्यों ना कुछ गीत संगीत हो जाए, तो कौन सा गीत सुना रही हैं
0: जी? प्रमेंद्र जी, अभी मैं आप अपने श्रोताओं को सुनवा रही हूँ फिल्म तनु विड्स मनु का ये गीत शफाकत अमानत अली की आवाज़ में। गीतकार हैं राजशेखर और संगीत निर्देशक हैं कृष्णन।

0: एक बार फिर से स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम चिट्ठी पत्री में। आइए अब देखते हैं आज का अगला पत्र हमें कहां से प्राप्त हुआ है। यह पत्र है छत्तीसगढ़ के चूड़ी लाइन मुंगेली से। इसे भेजने वाले हमारे श्रोता हैं मोहम्मद इसहाक, खातिजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, निलोफर फातिमा तथा उनके परिवार के सभी सदस्य। अपने पत्र में आपने 25 जून को प्रसारित ईमेल की गूंज कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए लिखा है कि पूनम उपाध्याय जी की मधुर आत्मीय और प्रभावशाली प्रस्तुति आपको अत्यंत पसंद आई। कार्यक्रम में प्रस्तुत प्रत्येक गीत अपनी मधुरता, भावपूर्ण बोल और सुंदर चयन के कारण इन्हें अच्छे लगे। अपने पत्र में आपने विशेष रूप से इस बात के लिए भी आभार व्यक्त किया है कि कार्यक्रम में आपका ईमेल शामिल किया गया। इसके लिए आपने पूनम उपाध्याय जी तथा आकाशवाणी अंबिकापुर के समस्त परिवार का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित किया है।
1: मुंगेली के हमारे प्रिय श्रोता मोहम्मद इसहाक जी, आपके सभी परिजन मित्रगण, आप सभी को हमारी ओर से स्नेह भरा आदाब, हार्दिक नमस्कार। आप सभी ने बड़ा ही प्यारा और दुआओं से भरा संदेश लिख भेजा है हम सब के लिए। जानकर खुशी हुई कि 25 जून को प्रसारित ईमेल की गूंज कार्यक्रम ने आपके मन को आनंदित और आत्मीयता से भर दिया है। आपने गीतों के चयन, प्रस्तुति और कार्यक्रम की आत्मीयता की जिस सुंदरता से सराहना की है, उसके लिए हम आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। कार्यक्रम में आपका ईमेल शामिल होने से जो आपको खुशी हुई, यकीन मानिए ये हम सभी के लिए भी खुशी का विषय है। आपने शुभकामनाएं और दुआएं लिख भेजी है हमारे उद्घोषिका के लिए, और ये शुभकामनाएं कार्यक्रम के माध्यम से ही उन तक

0: पहुंच रही हैं। और देखिए रेडियो की सबसे जो मधुर धुन होती है वो प्रस्तुताओं के दिल से जब निकलकर श्रोताओं के दिल तक पहुंचती है तो वो सबसे मधुर धुन बन जाती है। आपकी मोहब्बत हमारे तालियों से भी बड़ा हमारे लिए सम्मान है और आपकी दुआएं हमारी सबसे अनमोल पूंजी है। तो इसी तरह अपना स्नेह विश्वास और दुआएं बनाए रखिए। मुंगेली के पूरे श्रोता परिवार को हमारी ओर से ढेरों शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और शक्ति जी अब चलते हैं आज के अगले पत्र की ओर।
1: जी परमेंद्र जी, यह पत्र हमें प्राप्त हुआ है उत्तराखंड के जसपुर से। इसे भेजा है हमारे प्रिय श्रोता रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज हुसैन सिद्दीकी और रिफाकत हुसैन सिद्दीकी जी ने। अपने पत्र में आप लिखते हैं कि आकाशवाणी से आपका लगभग 40 वर्षों से जुड़ाव रहा है और पिछले एक वर्ष से आप नियमित रूप से आकाशवाणी अंबिकापुर के कार्यक्रम सुन रहे हैं। आप बताते हैं कि यहाँ से प्रसारित होने वाले मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आते हैं। आपने विशेष रूप से ईमेल की गूंज, मन भावन और युववाणी जैसे कार्यक्रमों का उल्लेख करते हुए उनकी सराहना की है। आप लिखते हैं कि ईमेल की गूंज कार्यक्रम के लिए आप प्रतिदिन अपना संदेश भेजते हैं और जब आपका संदेश कार्यक्रम में शामिल होता है तो आपको बहुत खुशी होती है। पत्र के अंत में आपने आकाशवाणी अंबिकापुर के सभी अनाउंसर साथियों और पूरे प्रसारण परिवार के प्रति अपना स्नेह और आभार व्यक्त करते हुए दिल से धन्यवाद कहा है।
0: उत्तराखंड के हमारे प्रिय श्रोता रियासत हुसैन सिद्दीकी जी, आपके सभी परिजन मित्रगण, सबसे पहले तो आप सभी को स्नेह भरा नमस्कार। आप सभी ने बड़ा ही आत्मीय संदेश लिख भेजा है और ये प्रसन्नता का विषय है कि आप 4 दशक से रेडियो से जुड़े हुए हैं और विशेष रूप से पिछले एक वर्ष से आपने आकाशवाणी अंबिकापुर को सुनना प्रारंभ किया है और आप नियमित रूप से सुन रहे हैं। ये हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है, हम सभी के लिए खुशी की बात है। देश के एक कोने से दूसरे कोने तक जब आपका यह अपनापन हम तक पहुँच रहा है तो ये हम सभी को एक उपलब्धि की तरह लगता है। और भी अच्छा ये जानकर लगता है कि ईमेल की गूंज, मन भावन और युवाणी जैसे कार्यक्रम आपको विशेष रूप से पसंद आ रहे हैं। कार्यक्रम में आपकी नियमित सहभागिता और प्रतिदिन भेजे जाने वाले संदेश हमारे लिए बेहद मूल्यवान है। आपका ये स्नेह हम सभी प्रस्तुतकर्ताओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। और देखिए कहीं ना कहीं रेडियो की असली पहचान उसकी आवाज़ नहीं बल्कि उन दिलों से होती है जो रोज़ उसे सुनने के लिए धड़कते हैं। दूरी चाहे कितनी भी हो, जब दिल से जुड़ाव होता है तो हर प्रसारण अपना सा लगने लगता है। तो इसी तरह अपना स्नेह विश्वास और साथ बनाए रखिए और पूरे सिद्दीकी परिवार को, पूरे उत्तराखंड के हमारे श्रोताओं को हम सभी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह सुनते रहिए हमारे कार्यक्रमों को, जुड़े रहिए और अपनी बातें लिख कर भेजते रहिए।
1: परमेंद्र जी, चिट्ठी पत्री के इस सिलसिले में अगला पत्र आया है चिरमिरी के कुरासिया कॉलरी से। इसे भेजा है इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे और कालिंदरी लहरे ने। अपने पत्र में आपने 18 जून को प्रसारित युववाणी कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए घनश्याम जी की प्रस्तुति की सराहना की है। आप लिखते हैं कि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रोताओं के ईमेल को शामिल किया गया जिससे कार्यक्रम और भी रोचक बन गया। इसके साथ ही आपने 28 जून को प्रसारित युवा पसंद हर श्रृंगार कार्यक्रम की भी प्रशंसा की है। आपने 2 जुलाई को प्रसारित महफिल कार्यक्रम की प्रस्तुति को भी बेहद सराहा है। वहीं 29 जून को प्रसारित फोन इन पर आधारित कार्यक्रम गांवकर गीत के संबंध में आपने एक महत्वपूर्ण सुझाव भी दिया है। आपने लिखा है कि तकनीकी कारणों से उस दिन श्रोताओं के फ़ोन कॉल शामिल नहीं हो सके, भविष्य में ऐसी समस्याएं ना हो और श्रोताओं को फ़ोन इन कार्यक्रमों में सहज रूप से भाग लेने का अवसर मिले, इस ओर विशेष ध्यान देने का आपसे अनुरोध किया है।
0: जी, चिरमिरी कुरुसिया कॉलोनी के हमारे प्रिय श्रोता इंद्रभान सिंह जी, अनुभव सिंह जी, आपके सभी मित्रगण, सभी परिजन, आप सभी को सबसे पहले तो हमारी ओर से स्नेह भरा नमस्कार। आप सभी ने बड़ा ही विस्तृत और आत्मीय पत्र हमें लिख भेजा है और विशेष रूप से आपने उल्लेख किया है युवाणी, युवा पसंद, हर श्रृंगार, महफिल, गांव कर गीत जैसे कार्यक्रमों की, ये कार्यक्रम आपको पसंद आए। आप सभी ने हम प्रस्तुतकर्ताओं के लिए जो स्नेह और शुभकामनाएँ भेजी हैं उसके लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।

आपने फोन इन कार्यक्रम के दौरान आई तकनीकी समस्या और लाइव फोन इन कार्यक्रम के संबंध में जो सुझाव दिए हैं वे हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। श्रोताओं का अनुभव बेहतर हो यही हमारी प्राथमिकता होती है। आपके सुझावों पर अवश्य विचार किया जाएगा और तकनीकी व्यवस्था को बेहतर बनाने का प्रयास निरंतर जारी है और भविष्य में आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे ऐसी हमारी उम्मीद है। श्रोताओं का केवल कार्यक्रम जो कार्यक्रम से जुड़ाव है वो नहीं बल्कि वे

0: आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। श्रोताओं का केवल कार्यक्रम जो कार्यक्रम से जुड़ाव है वो नहीं, बल्कि वे कहीं ना कहीं हमारे कार्यक्रमों के सच्चे प्रहरी होते हैं। आपका सजग साथ हमें हर दिन बेहतर करने की प्रेरणा देता है। तो इसी तरह अपना विश्वास, सहयोग और आत्मीयता बनाए रखिए। चिरमिरी के पूरे श्रोता परिवार को आकाशवाणी अंबिकापुर की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्हीं बातों के साथ अब चलते हैं आज के अगले पत्र की ओर।
1: प्रमेंद्र जी, पत्र से पहले आइए हम सुनते हैं फिल्म दम लगा के हैसा का ये गीत मोनाली ठाकुर की आवाज में।
0: जी,
1: इसे लिखा है वरुण ग्रोवर ने और संगीत से सजाया है अनु मलिक ने।

0: फिल्म दम लगा के हैसा के इस खूबसूरत से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम चिट्ठी पत्री में। श्रोताओं के स्नेहिल पत्रों के क्रम में अब शामिल करते हैं एक और पत्र। यह पत्र हमें प्राप्त हुआ है छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के सारसताल सोनगरा से। इसे भेजा है प्रेम साय राजवाड़े, सोमार साय, मीर साय, श्री भगत हेमंत कुमार जी, राम खिलावन सिंह पैकरा, साथ ही देवीगंज और अंबिकापुर से राजकुमार ने भवानी, फुलसर कोरबा से नैन दास दीवान जी ने भी अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। अपने पत्र में आपने आकाशवाणी अंबिकापुर के सभी कार्यक्रमों की सराहना करते हुए लिखा है कि केंद्र से प्रसारित होने वाले विविध कार्यक्रम आपको हमेशा पसंद आते हैं। आपने 29 जून को प्रसारित आपकी बात आपके गीत कार्यक्रम की विशेष रूप से प्रशंसा की है और इसकी सुंदर प्रस्तुति के लिए मृदुल जी को बधाई दी है। अपने पत्र में आपने 2 जुलाई को दोपहर में प्रसारित ईमेल की गूंज कार्यक्रम के संबंध में एक सुझाव भी दिया है। आपका कहना है कि कार्यक्रम में अधिक से अधिक श्रोताओं के नामों को शामिल करने का प्रयास किया जाए ताकि अधिक श्रोताओं को कार्यक्रम से जुड़ने का अवसर मिल सके। इसके साथ ही आपने 1 और 2 जुलाई को प्रसारित इंस्टा फरमाइश कार्यक्रम की भी भरपूर सराहना की है और इसकी सुंदर प्रस्तुति के लिए खुशबू जी और कल्पना सिन्हा जी को हार्दिक बधाई दी है। पत्र के अंत में आपने 2 जुलाई को प्रसारित विचार बिंदु कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए अहंकार विषय पर प्रस्तुत विचारों को अत्यंत प्रेरणादायक बताया है। इस उत्कृष्ट वाचन और संकलन के लिए आपने मृदुल गुप्ता जी को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की हैं।
1: सारसताल सोनगरा के हमारे प्रिय श्रोता प्रेम साय राजवाड़े जी, अंबिकापुर के श्रोता राजकुमार नेबवानी जी और कोरबा के श्रोता नैनदास दीवान जी और इसके साथ ही आपके सभी मित्रगण, सभी परिजन, आप सभी को सबसे पहले तो हमारी ओर से सादर नमस्कार। आप सभी ने एक बड़ा ही आत्मीय पत्र लिख भेजा है और जानकर बेहद खुशी हुई कि आप सभी ने आपकी बात आपके गीत इंस्टा फरमाइश और विचार बिंदु जैसे कार्यक्रम का आनंद लिया। आपने हमारे प्रस्तुतकर्ताओं, कलाकार साथियों के लिए जो स्नेह और शुभकामनाएं भेजी हैं उसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। आपने ईमेल की गूंज में अधिक से अधिक श्रोताओं के संदेश को शामिल करने का जो सुझाव दिया है वह भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमारा हमेशा से प्रयास यही रहता है कि अधिकाधिक श्रोताओं को कार्यक्रम में सहभागिता का अवसर मिले और आपके सुझाव पर निश्चित रूप से ध्यान दिया जाएगा। शक्ति देखिए, रेडियो तभी संपूर्ण बनता है जब हर श्रोता उसमें अपनी आवाज़ और अपना पैन महसूस करे।
0: जी बिल्कुल।
1: और कहीं न कहीं जो आप सभी श्रोताओं के सुझाव हैं वो हमारी राह दिखाते हैं और आपका ये जो स्नेह है वो हमें हर दिन बेहतर बनने की प्रेरणा देता है। तो इसी तरह अपना विश्वास, स्नेह और सहयोग बनाए रखिए। आकाशवाणी अंबिकापुर परिवार की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चलते हैं आज के अगले पत्र की ओर।
0: जी, चिट्ठी पत्री की अगली कड़ी में हम शामिल करते हैं एक और आत्मीय पत्र। यह पत्र हमें प्राप्त हुआ है चांदनी चौक गंडई पंडरिया से। इसे भेजा है पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की, विक्की, नानू, रविंद्र और रौनक सेन ने। अपने पत्र में आप बड़े भावुक शब्दों में लिखते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब आप आकाशवाणी अंबिकापुर के कार्यक्रमों से परिचित नहीं थे और यह भी नहीं जानते थे कि यहाँ इतने सुंदर, मनमोहक और विविधतापूर्ण कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। लेकिन जब से आप आकाशवाणी अंबिकापुर से जुड़े हैं तब से इस केंद्र और यहाँ के कार्यक्रमों से आपको विशेष लगाव हो गया है। आप आगे लिखते हैं कि यहाँ के सभी उद्घोषकों की मधुर और आत्मीय आवाज ने आपको अपना प्रशंसक बना लिया है। कभी किसी कारणवश यदि कोई कार्यक्रम आप नहीं सुन पाते तो उसकी कमी भी आपको महसूस होती है। आपने यह भी लिखा है कि पिछले सप्ताह चिट्ठी पत्री कार्यक्रम नहीं सुन पाने का आपको अफसोस रहा। अपने पत्र में आपने 29 जून को प्रसारित आपकी बात आपके गीत कार्यक्रम का विशेष रूप से उल्लेख किया है। आप लिखते हैं कि मृदुल वर्मा जी ने अपने मनमोहक आवाज़, सहज संवाद शैली और श्रोताओं से आत्मीय बातचीत के साथ कार्यक्रम

0: को बेहद आकर्षक बना दिया। उनकी प्रस्तुति और मधुर गीतों का समागम आपको बहुत पसंद आया। इसके साथ ही आपने आपकी पसंद ईमेल की गूंज गांवकर गीत कार्यक्रमों की भी भरपूर सराहना की है। आपके अनुसार सभी उद्घोषक साथियों ने अपनी उत्कृष्ट प्रस्तुति से कार्यक्रमों को यादगार बना दिया। पत्र के अंत में आपने आकाशवाणी अंबिकापुर के समस्त उद्घोषक साथियों के प्रति अपना स्नेह सम्मान और हार्दिक धन्यवाद व्यक्त किया है।
1: गंडई पंडरिया के हमारे प्रिय श्रोता पवन कुमार सेन जी, प्रभा देवी सेन जी, आपके सभी परिजन मित्रगण, आप सभी को सबसे पहले तो हमारी ओर से नमस्कार। आप सभी ने बेहद आत्मीय पत्र और मन को भावुक करने वाला पत्र लिखा है। आपने लिखा कि एक समय ऐसा था जब आप आकाशवाणी अंबिकापुर से परिचित नहीं थे, लेकिन अब कार्यक्रमों से ऐसा जुड़ाव है कि किसी दिन यदि कार्यक्रम को ना सुन पाए तो कमी महसूस होती है। और यकीन मानिए श्रोताओं का जो ये अपनापन है, ये हम सभी प्रस्तुतकर्ताओं कलाकारों के लिए सबसे बड़ा सम्मान है। जानकर प्रसन्नता हुई कि आपकी बात, आपके गीत, आपकी पसंद, ईमेल की गूंज, गांव कर गीत जैसे कार्यक्रमों का आनंद लेते हैं और इसके नियमित श्रोता हैं। आपके स्नेह भरे शब्द हम सभी प्रस्तुतकर्ताओं और कार्यक्रम निर्माण से जुड़े साथियों तक इस कार्यक्रम के माध्यम से पहुंच रहे हैं और इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। रेडियो के बारे में ये कहा जाता है कि रेडियो केवल सुना नहीं जाता, उसे महसूस भी किया जाता है। और जब श्रोता उसे अपना परिवार मान लें तो ये हम सभी के लिए एक बड़ी उपलब्धि होती है। आपका विश्वास हमारी सबसे बड़ी ताकत है और आपका स्नेह हम सभी को और भी बेहतर करने के लिए प्रेरणा देता रहता है। तो इसी तरह जुड़े रहिए, सुनते रहिए, अपने विचार हमें भेजते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस पत्र के लिए। और अब चलते हैं आज के अगले पत्र की ओर।
0: यह पत्र आया है छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के ग्राम राजापुर से। इसे भेजा है खेलसाय मरकाम, नयन प्रकाश मरकाम, शारदा मरकाम, लकी, सीताराम, सितंबर, अमरनाथ, मंगल मूर्ति, रोशन राजवाड़े, पांडेराम राजवाड़े, नूरसाय राजवाड़े, हीरालाल प्रजापति, कविता मरकाम और आरती मरकाम ने। अपने पत्र में आप लिखते हैं कि आकाशवाणी अंबिकापुर के सभी कार्यक्रम आप नियमित रूप से सुनते हैं, विशेष रूप से चौपाल, इंस्टा फरमाइश, ईमेल की गूंज जैसे कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आते हैं और आप इनका पूरे मन से आनंद लेते हैं। 2 जुलाई को प्रसारित गांवकर गीत कार्यक्रम की भी आपने सराहना की है। कार्यक्रम की सुंदर प्रस्तुति के लिए आपने विक्की गुप्ता जी और समस्त आकाशवाणी अंबिकापुर को बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित की हैं।
1: ग्राम राजापुर, जिला सूरजपुर के हमारे प्रिय श्रोता खेलसाय मरकाम जी, आपके सभी मित्रगण, सभी परिजन, आप सभी को सबसे पहले तो हमारी ओर से स्नेह भरा नमस्कार। जानकर प्रसन्नता हुई कि आप नियमित रूप से हमारे कार्यक्रमों को सुनते हैं और चौपाल, इंस्टा फरमाइश, ईमेल की गूंज तथा विशेष रूप से 2 जुलाई का गाँव कर गीत कार्यक्रम आपको बहुत पसंद आया। आपके स्नेह भरे शब्द हमारे सभी कलाकार साथियों के लिए अमूल प्रेरणा है, सभी का उत्साहवर्धन करते हैं।
0: सर राजवाड़े, हीरालाल प्रजापति, कविता मरकाम और आरती मरकाम ने। अपने पत्र में आप लिखते हैं कि आकाशवाणी अंबिकापुर के सभी कार्यक्रम आप नियमित रूप से सुनते हैं, विशेष रूप से चौपाल, इंस्टा फरमाइश, ईमेल की गूंज जैसे कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आते हैं और आप इनका पूरे मन से आनंद लेते हैं। 2 जुलाई को प्रसारित गांवकर गीत कार्यक्रम की भी आपने सराहना की है। कार्यक्रम की सुंदर प्रस्तुति के लिए आपने विक्की

0: कुमार तिवारी जी तथा पूरे परिवार को सबसे पहले तो हमारी ओर से स्नेह भरा नमस्कार। जानकर खुशी हुई कि आप सभी ने हमारे कार्यक्रम आपकी बात आपके गीत ईमेल की गूंज तथा रात्रिकालीन प्रस्तुतियों को सुना है और ये कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आई। कार्यक्रमों की प्रस्तुति, श्रोताओं की सहभागिता, सदाबहार गीतों के चयन के बारे में आपके स्नेह भरे शब्द हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है और कहीं न कहीं ये हम सभी का उत्साहवर्धन करते हैं। आपने हमारे उद्घोषक कलाकार साथियों के बारे में जो शुभकामनाएं भेजी हैं वो कार्यक्रम के माध्यम से उन तक पहुंच रही हैं और ये उन सभी को आने वाले कार्यक्रम में और भी बेहतर करने की प्रेरणा अवश्य रूप से देंगे। जब आपका एक पत्र हमारे स्टूडियो तक पहुंचता है तो वह केवल शब्द नहीं बल्कि अपनापन और उत्साह भी लेकर आता है, तो इसी तरह अपना स्नेह, सुझाव और आशीर्वाद लिखकर भेजते रहिए। एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और शक्ति। इसी के साथ अब चलते हैं आज के अगले पत्र की ओर।
1: अगला पत्र हमें प्राप्त हुआ है छत्तीसगढ़ के बिलाईगढ़ से। इसे भेजने वाले हमारे श्रोता हैं रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन। अपने पत्र में आप लिखते हैं, आकाशवाणी अंबिकापुर के सभी कार्यक्रमों के आप नियमित श्रोता हैं। विशेष रूप से आपकी पसंद ईमेल की गूंज, आपकी बात आपके गीत और इंस्टा फरमाइश जैसे कार्यक्रम आपको बेहद प्रिय हैं। आगे आप लिखते हैं, इंस्टा फरमाइश कार्यक्रम के लिए आपने अपना समय पर संदेश भेजते हैं लेकिन वह कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सका। आपने इस संबंध में अपना सुझाव देते हुए अनुरोध किया है कि श्रोताओं के संदेशों को शामिल करते समय अधिक से अधिक सावधानी बरती जाए ताकि श्रोताओं को समान रूप से अवसर मिले। जुलाई माह के प्रथम रविवार से चौपाल में ईमेल आधारित फरमाइशी कार्यक्रम प्रारंभ होने की जानकारी सुनकर आपको बेहद खुशी हुई। पत्र के अंत में आपने आकाशवाणी अंबिकापुर के सभी उद्घोषक और उद्घोषिकाओं की सराहना की है और साथ ही आपने आपकी पसंद कार्यक्रम में आपके पत्रों को नियमित रूप से शामिल करने के लिए पूरे आकाशवाणी परिवार को हृदय से धन्यवाद कहा है।
0: भिलाईगढ़ के हमारे प्रिय श्रोता रोशन लाल देवांगन जी और आपके सभी परिजन, सभी मित्रगण, आप सभी को सबसे पहले तो स्नेह भरा नमस्कार। बड़े लंबे अरसे के बाद आपने चिट्ठी पत्री में पत्र लिखा है, ईमेल भेजा है और जानकर खुशी हुई कि आपकी पसंद ईमेल की गूंज, आपकी बात आपके गीत, इंस्टा फरमाइश जैसे कार्यक्रम सुन रहे हैं, नियमित रूप से सुन रहे हैं और ये कार्यक्रम आपको पसंद आ रहे हैं। आपने इंस्टा फरमाइश में अपना संदेश शामिल न होने की बात बड़े अपनत्व के साथ लिखी है। आपका सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमारा प्रयास हमेशा यही रहता है कि अधिक से अधिक श्रोताओं के संदेशों को कार्यक्रम में स्थान मिले, पर कभी कभी समय और उपलब्ध संदेशों की संख्या के कारण सभी संदेशों को शामिल करना मुश्किल होता है। फिर भी हमने आपकी बात को नोट डाउन कर लिया है और इस पर अवश्य ध्यान दिया जाएगा। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आने वाले इंस्टा फरमाइश के क्रम में अधिक से अधिक श्रोताओं के नामों को शामिल किया जाए। आपने हमारे सभी कलाकार साथियों के लिए जो स्नेह और शुभकामनाएं भेजी है उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। बस यही कहेंगे कि आप इसी तरह अपना स्नेह, सुझाव और शुभकामनाएं भेजते रहिए, हमारे कार्यक्रमों को सुनते रहिए, अपनी बातें लिखकर भेजते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस पत्र के लिए।
1: प्रमेंद्र जी, अब शामिल करते हैं एक और आत्मीय पत्र जो हमें मध्य प्रदेश के खंडवा स्थित ताज मंजिल लक्कड़ बाजार से प्राप्त हुआ है। यह पत्र भेजा है हमारे नियमित श्रोता मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद शाकिब पवार, मोइन छोटू पवार और मोहम्मद हुसनैन परवार ने। अपने पत्र में आपने आकाशवाणी अंबिकापुर के अनेक लोकप्रिय कार्यक्रमों आपकी पसंद चयन, घर गोसाइन, ईमेल की गूंज, गीत गंधा, आपकी बात आपके गीत, युववाणी के अंतर्गत युवा पसंद, आराधना, किस्सा कहानी, सबरंग, घर आंगन, हमर हाथी, हमर गोट, चौपाल तथा सोशल मीडिया आधारित कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश की भरपूर सराहना की है। आगे आपने पत्र में आपने ईमेल की गूंज कार्यक्रम के संबंध में एक सुझाव भी दिया है। आपका कहना है कि आपके भेजे गए ईमेल कार्यक्रम में कम शामिल हो पाते हैं। आपने अनुरोध किया है कि श्रोताओं के संदेशों को शामिल करते समय सभी को समान रूप से अवसर देने का प्रयास किया जाए।
0: जी, खंडवा के हमारे श्रोता मोहम्मद रफीक पवार जी, आपके सभी साथीगण, सभी मित्रगण, सभी परिजन, सबसे पहले तो आप सभी को हार्दिक नमस्कार। आपने हमारे लगभग सभी कार्यक्रमों की चर्चा की है अपने ईमेल में। आपकी पसंद चयन, घर गोसाइन, ईमेल की गूंज, गीत गंधा, आपकी बात आपके गीत, युवाणी, आराधना, इंस्टा फरमाइश, इन तमाम कार्यक्रमों के लिए जो आपने स्नेह व्यक्त किया है इसके लिए हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आपने ईमेल की गूंज में अपने संदेश शामिल नहीं होने की बात भी बड़े विश्वास के साथ

0: हमारे सामने रखी। आपका सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमारा प्रयास यही रहता है कि अधिक से अधिक श्रोताओं को कार्यक्रम में हम जगह दे पाएँ, सभी की सहभागिता सुनिश्चित कर पाएँ, सभी को समान रूप से अवसर मिले। यदि किसी दिन आपका संदेश प्रसारित नहीं हो पाया, आपके नाम को हम शामिल नहीं कर पाए, तो उसे इस रूप में न लें कि हम किसी के साथ भेदभाव करते हैं। कभी कभी समय के अभाव में, कभी कभी संदेशों की अधिकता के कारण हम सभी संदेशों को शामिल नहीं कर पाते हैं। बहरहाल हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम सभी श्रोताओं के साथ समान व्यवहार करें, सभी के नामों को पारदर्शिता के साथ शामिल की जाए, और भविष्य में अवश्य आपकी इन बातों पर ध्यान दिया जाएगा। और आपने ये बात हम तक पहुंचाई, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, और यही कहेंगे कि आप इसी स्नेह के साथ जुड़े रहिए, हमारे कार्यक्रमों को सुनते रहिए और अपने बातें लिखकर भेजते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस पत्र के लिए, और अब चलते हैं आज के अगले पत्र की ओर।
1: प्रमेंद्र जी, चिट्ठी पत्री के इस सिलसिले में अब पढ़ते हैं आज का अंतिम पत्र। यह पत्र हमें प्राप्त हुआ है गुजरात के डेर पाटन से। इसे भेजा है धीरज वी रबारी जी ने। आप लिखते हैं कि आकाशवाणी अंबिकापुर का लोकप्रिय कार्यक्रम आपकी बात आपके गीत आपको बेहद पसंद है। आपके अनुसार सभी उद्घोषक भाई बहनों की प्रस्तुति सहज, आत्मीय और उत्कृष्ट होती है, जो कार्यक्रम को और भी आकर्षक बना देती है। आपने ईमेल की गूंज कार्यक्रम की भी सराहना की है। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए आपने सभी प्रस्तुतकर्ताओं को शुभकामनाएं दी हैं। अपने पत्र में आपने आकाशवाणी अंबिकापुर द्वारा सोशल मीडिया, विशेषकर फेसबुक पोस्टर के माध्यम से कार्यक्रमों की जानकारी श्रोताओं तक पहुंचाने की भी प्रशंसा की है। साथ ही आपके मार्गदर्शन में तैयार किए गए सभी कार्यक्रमों की गुणवत्ता की सराहना करते हुए उन्हें विशेष बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।
0: डेर पाटन गुजरात के हमारे प्रिय श्रोता धीरज वी रवारी जी, आकाशवाणी अंबिकापुर परिवार की ओर से आपको स्नेह भरा नमस्कार, हार्दिक धन्यवाद। आपका आत्मीय संदेश पढ़कर मन प्रसन्न हो गया। पर्यावरण रक्षण संरक्षण के संबंध में आपने जो सार्थक विचार साझा किए हैं, वे हम सभी के लिए प्रेरणादायक हैं। ये जानकर खुशी हुई कि आपकी बात आपके गीत और ईमेल की गूंज जैसे कार्यक्रम आपको विशेष रूप से पसंद आते हैं। साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से कार्यक्रमों की जानकारी और श्रोताओं से निरंतर संवाद का प्रयास भी आपको अच्छा लगा। आपका ये स्नेह और विश्वास हमारे लिए महत्वपूर्ण है और पूरे कार्यक्रम दल के लिए नई ऊर्जा लेकर आता है। जब गुजरात से स्नेह भरा संदेश अंबिकापुर तक पहुंचता है, तो लगता है कि दूरियां मिट जाती हैं और पूरा देश एक परिवार बन जाता है। तो इसी तरह अपना प्यार, सुझाव और शुभकामनाएँ भेजते रहिए। डेर पाटन गुजरात के सभी श्रोता मित्रों को आकाशवाणी अंबिकापुर परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और शक्ति जी, आपने बताया कि आज का आखिरी पत्र है।
1: जी प्रवीण जी,
0: तो इससे पहले कि हम आज के चिट्ठी पत्री के इस अंक को समेटें, क्यों ना हम अपने श्रोताओं को पता बता दें और इसके बाद कुछ गीत संगीत भी हो जाए।
1: जी प्रवीण जी, अपने सुझाव और प्रतिक्रिया आप सभी हमें इस पते पर भेज सकते हैं। चिट्ठी पत्री द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी अंबिकापुर, पोस्ट बॉक्स नंबर 27, हमारा पिन कोड है 497001। आप हमें ईमेल के माध्यम से भी पत्र भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है phambikapuraiar@gmail.com।
0: जी, तो श्रोताओं इन दोनों माध्यमों का उपयोग करिए और अपनी बातें, कार्यक्रमों की समीक्षा, सुझाव हम तक लिख भेजिए, चाहे वो ईमेल के माध्यम से हो या पत्र के माध्यम से। और आपकी इन समीक्षात्मक पत्रों और ईमेल को लेकर अगले सप्ताह हम चिट्ठी पत्री के अगली कड़ी में फिर से हाजिर होंगे। तो तब तक के लिए आज के चिट्ठी पत्री के इस अंक से हमें दीजिए इजाज़त, और आप सुनिए ये प्यारा सा गीत।

0: राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषाल के गाए इस प्यारे से गीत के साथ ही कार्यक्रम चिट्ठी पत्रिका ये अंक यहीं समाप्त हुआ। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिट्ठी पत्री। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 11:55 होने वाले हैं। प्रादेशिक समाचार अब हम आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित करेंगे।
1: प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। राजधानी रायपुर में आज से 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। और मौसम विभाग ने आज मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे। कार्यशाला में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वोत्तम प्रथाएं साझा की जाएंगी और कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों पर चर्चा होगी। राजधानी रायपुर में आज से 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सम्मेलन में मुख्य अतिथि होंगे। सहकारिता विभाग और अपेक्स बैंक द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से किसान, सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि और विशेषज्ञ शामिल होंगे। कृषि मंडपम ऑडिटोरियम में होने वाले इस 2 दिवसीय सम्मेलन में सहकारिता, कृषि विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने पर चर्चा की जाएगी। इससे पहले आज सुबह रायपुर के मरीन ड्राइव में सहकार संकल्प दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौड़ में युवा, विद्यार्थी, किसान, सहकारी संस्थाओं के सदस्य और विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हुए। नागर विमानन मंत्रालय ने देशभर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और शालाओं के युक्तियुक्तकरण की नीति पर मुहर लगा दी है। इस नीति को चुनौती देने वाली छत्तीसगढ़ विद्यालयीन शिक्षक कर्मचारी संघ सहित प्रदेश भर के शिक्षकों की सभी 24 से अधिक याचिकाओं को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। जस्टिस विभुदत्त गुरु की सिंगल बेंच ने अपने फैसले में कहा कि शिक्षकों का स्कूलों में तर्कहीन या असमान वितरण सुधारने के लिए सरकार का यह कदम जनहित में है। नया रायपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM में कल 4 जुलाई से चिंतन शिविर का आयोजन किया जाएगा। 2 दिवसीय इस शिविर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ ही राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य शामिल होंगे। इस शिविर का उद्देश्य बदलते तकनीकी परिवेश के अनुरूप शासन को और प्रभावी बनाना है। शिविर में सरकार की अब तक की उपलब्धियों, चुनौतियों और भविष्य की प्राथमिकताओं की समीक्षा की जाएगी। मौसम विभाग ने आज मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी से अति भारी बारिश होने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। वहीं प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान बस्तर संभाग में 1-2 स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश हुई। वहीं दुर्ग, बिलासपुर और सरगुजा संभाग में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई है।

0: मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के औंधी क्षेत्र में कल आए आंधी तूफान में एक पेड़ 11 KV विद्युत लाइन पर गिर गया, जिससे आसपास के दर्जनों गांव में बिजली आपूर्ति ठप हो गई। सूचना मिलने पर विद्युत विभाग की टीम मौके पर पहुंची और देर शाम तक विद्युत आपूर्ति को बहाल किया गया। छत्तीसगढ़ योग आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने पदभार ग्रहण कर लिया है। इस अवसर पर आयोजित अभिनंदन समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि संजय अग्रवाल के अनुभव का लाभ प्रदेशवासियों को मिलेगा, योग और सर्वव्यापी होगा और जन जन तक पहुंचेगा, लोग अपनी दिनचर्या में योग को शामिल करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। राजधानी रायपुर में आज से 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और मौसम विभाग ने आज मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 12 बजे हैं। अब प्रस्तुत है NCERT और CIET द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग।

0: पतंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
3: नमस्कार, मैं हूँ अजीत। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, विजेंद्र कुमार, जयजान, नूर, नमन, सिमरत, मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द राहुल जी ने। लिखते हैं,
2: खुद को बेहतर बनाना ही असली प्रतिस्पर्धा है। किसी से भी ईर्ष्या का सीधा मतलब ये है कि हमने सामने वाले व्यक्ति को हमसे ज्यादा श्रेष्ठ मान लिया है।
3: बहुत बहुत सुंदर विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
2: दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू, दिव्यांश और सूरज कुमार ढाकसे जी लिखते हैं,
3: प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। हमें आपका उमंग कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। हम आपका उमंग कार्यक्रम FM और DTH के रेडियो चैनल पर सुनते हैं। आपके उमंग कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक जानकारियां सुनने को मिलती हैं, जो हमें बेहद पसंद आती हैं। धन्यवाद।
2: छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
3: आप सभी श्रोताओं को हम धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं संदेशों को भेजने के लिए। निवेदन है कि इसी प्रकार से हमारे उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहिए। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में। आइए अब चलते हैं इसकी अगली कड़ी में। इस सप्ताह श्रोताओं हम बात कर रहे हैं खनिज पदार्थों की।
2: अब तक हमारी चर्चा का विषय रहा कोयला, सोना और हीरा। तो अजीत जी, आज हमारा क्या विषय रहेगा? श्रोता बड़ी उत्सुकता से जी जानना चाहते हैं।
3: विमलेश जी, आज हमारा विषय बहुत रोचक होने जा रहा है। आज हम एक ऐसे खनिज की बात करेंगे जो पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाता है, और तो और हम उस पर चलते फिरते भी हैं। अच्छा, चलिए श्रोताओं को दीजिए कुछ हिंट।
2: ठीक है, तो श्रोताओं, उस खनिज का उपयोग हमारे कंप्यूटर, मोबाइल और अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी किया जाता है। ये हमारे शरीर में भी पाया जाता है
3: और ये कुछ पौधों में भी पाया जाता है, विशेषकर बांस और घास में तो पाया ही जाता है।
2: श्रोताओं, ये हमारे स्मार्टफोन और कंप्यूटर्स में तो होता ही है, इंटरनेट के उपकरणों और

0: अंतरिक्ष के उपग्रहों में भी चिप्स के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, और हाँ, इससे कांच भी बनता है। तो श्रोताओं, आपने समझ लिया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं।
1: अगर आप सोच रहे हैं कि वो खनिज पदार्थ सिलिका है तो आप बिल्कुल सही हैं। आइए अब जानते हैं कि सिलिका क्या है। विमलेश जी, आपसे करते हैं शुरुआत।
0: श्रोताओं, सिलिका सिलिकॉन और ऑक्सीजन से बना एक प्राकृतिक खनिज है। ये पृथ्वी की भूपरपटी में सबसे अधिक पाए जाने वाले खनिज पदार्थों में से एक है। आइए सबसे पहले जानते हैं सिलिका शब्द कहाँ से आया।
1: श्रोताओं, सिलिका शब्द लैटिन भाषा के सिलेक्स शब्द से आया है, जिसका अर्थ है चकमक या कठोर पत्थर। बता दें कि पृथ्वी की सामान्य रेत का अधिकांश भाग सिलिका से ही बना होता है। इसी सिलिका से एक विशेष वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन को अलग करके सिलिकॉन बनाया जाता है,
0: और इसी सिलिकॉन से बनते हैं मोबाइल, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में लगाए जाने वाले चिप्स। सुंदर क्वार्ट्ज क्रिस्टल वास्तव में सिलिकॉन का ही रूप है। अजीत जी, एक प्रश्न मेरे मन में आता है, वो ये है कि क्या जिस रेत या धूल पर हम चलते हैं, क्या वही सिलिका है?
1: विमलेश जी, ऐसा कहना आंशिक रूप से सही है, पर पूरी तरह से नहीं। ये जानना जरूरी है कि साधारण रेत या धूल के कण पूरी तरह से सिलिका नहीं होते। धूल कई प्रकार के कणों का मिश्रण होती है, जैसे मिट्टी, जैविक पदार्थों के अवशेष और कुछ खनिज।
0: बता दें कि सिलिका सबसे अधिक रेगिस्तान और समुद्र की रेत में पाई जाती है, लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्यों?
1: ऐसा इसलिए कि रेगिस्तान बनते हैं बहुत सारी चट्टानों के टूटने से। इन चट्टानों में खनिज पदार्थों के रूप में सिलिका पहले से ही मौजूद होती है। चट्टानों के टूटने से सिलिका के कण रेत और मिट्टी में फैल जाते हैं, और जहाँ तक समुद्र की बात है, यहाँ सिलिका की मात्रा बहुत अधिक होती है, क्योंकि नदियाँ समुद्र की ओर बढ़ती हुई पहाड़ों और चट्टानों को जब अपने जल प्रवाह से घिसती हैं, तो उन चट्टानों में मौजूद सिलिका के कणों को समुद्र तक ले आती हैं। श्रोताओं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि समुद्र तट की एक मुट्ठी रेत में मौजूद सिलिका के कणों ने हजारों किलोमीटर की यात्रा की है। तो विमलेश जी, हजारों वर्षों से मनुष्य सिलिका या रेत को देखता आया है, लेकिन ये विचार कैसे आया कि ये इतना महत्वपूर्ण है?
0: इसकी कहानी बड़ी रोचक है। 1824 में स्वीडन के रसायन शास्त्री जॉन जेकब वर्जिलियास ने पहली बार सिलिका से ऑक्सीजन को अलग करके सिलिकॉन की खोज की, लेकिन प्राचीन काल से ही मिस्र और चीन के लोगों ने इसके द्वारा कांच और आभूषण बनाने शुरू कर दिए थे, क्योंकि ये बहुत चमकदार होता है। 1906 में पहली बार इससे पहला इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाया गया।
1: फिर धीरे धीरे शोध होते गए, और आज ये मानव सभ्यता का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। आज हम इसके बिना सौंदर्य प्रसाधनों, चिकित्सकीय उपकरणों, उद्योगों, कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स, इंटरनेट, सौर उपकरणों और उपग्रहों की कल्पना तक नहीं कर सकते।
0: तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी सिलिका खनिज के बारे में। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो हमारा आज का प्रश्न है, सिलिका और सिलिकॉन में क्या फर्क है? आप हमारे IVRS नंबर पर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी CIT NCERT को फॉलो जरूर कीजिए। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है, कैसे जानते हैं हम अपना अतीत।
0: इस कार्यक्रम में विशेष रूप से इतिहास के विभिन्न स्रोतों के बारे में विस्तार से बताया गया है, और संदेश दिया गया है कि हमारी ऐतिहासिक विरासत महान है।
2: दोस्तों नमस्कार, एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपका स्वागत है। ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था या आज क्या हो रहा है, हम रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविजन देख सकते हैं या फिर अखबार पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता है?
3: है ना साथियों, अच्छा सवाल। यही सवाल निधि और आदिका के मन में भी था। वे छुट्टियों में अपनी नानी के घर गई हुई थी। हुआ यूं कि एक दिन वे समाचार पत्र पढ़ रही थीं। अचानक उनकी निगाह समाचार पत्र के एक अंश पर पड़ी, जहाँ छपा था, लगभग 2000 साल पहले। वे सोचने लगीं,
4: भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था?
5: हाँ, 2000 साल पहले।
6: नानी माँ?
7: हाँ निधि।
6: ओ नानी माँ, कहाँ हो?
7: अरे यहीं हूँ। आ जाओ निधि, आओ आदिका बेटी।
6: अरे ये क्या सारे बक्से खोल रखे हैं, क्या कर रही हो?
7: हाँ हाँ, बताती हूँ, जल्दी क्या है।
6: कितने ढेर सारे कपड़े हैं नानी माँ,

0: ये तो बहुत पुराने हैं ना?
1: हाँ बेटी, बहुत पुराने हैं, तुमसे और तुम्हारी मम्मी से भी पुराने। और पता है निधि, आधिका जानती हैं आप ये कपड़े हमने कब पहने थे?
0: नहीं पता, बताओ ना रानी माँ।
1: अरे ये कपड़े तो हमारी शादी के हैं।
0: नाना नानी के शादी के कपड़े? भाई वाह, नानी पहले और आज के कपड़े कितने अलग अलग दिखते हैं, है ना?
1: हाँ हाँ निधि, समय के साथ साथ सारी चीजें बदल जाती हैं।
0: नानी एक बात मेरे मन में भी आ रही है, और वो ये कि बहुत पुराने बातों को कैसे जाना जा सकता है?
1: अरे बिटिया, ये बताने के लिए तो हमारे पंकज से बढ़िया और कोई नहीं हो सकता।
0: हाँ हाँ, मामा जी से पूछेंगे।
1: हाँ बिटिया, वो तो पुरातत्व वेत्ता है ना?
0: मामा जी, मामा जी।
2: अरे निधि, ओ आधिका, कैसी कट रही है तुम्हारी छुट्टियाँ?
3: बहुत अच्छी तरह मामा जी, आज सुबह हम समाचार पत्र पढ़ रहे थे।
2: ये तो बहुत अच्छी बात है
0: जी, उसमें छपा था लगभग 2000 साल पहले, ये लेख किसी सभ्यता के बारे में था मामा जी। भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था?
2: अच्छा अच्छा, तो ये बात है। आओ आओ यहाँ बैठो। अरे बैठो बैठो, मैं तुम्हें कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ, जरा इसे देखो, बता सकती हो कि ये क्या है?
3: ये किसी खुदरी सी शीट की तस्वीर है, इसमें कुछ लिखा गया है, शायद गोदकर।
2: शाबाश निधि, तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना। ये खुरदरी शीट दरअसल एक पेड़ की छाल है, जिसे भूर्ज वृक्ष कहा जाता है।
0: अच्छा, भूर्ज वृक्ष।
2: हाँ, भूर्ज वृक्ष हिमालय क्षेत्र में मिलता है। इसकी छाल पर या ताड़ के पत्तों पर उन दिनों लोग हाथ से लिखते थे। हाथ से लिखी होने के कारण ये पांडुलिपि कही जाती है।
3: पांडुलिपि? ये हमें कहाँ मिली है
2: निधि? ये पांडुलिपियाँ ज्यादातर प्राचीन मंदिरों और विहारों से खुदाई में प्राप्त हुई हैं। तुम्हें पता है कुछ पुरानी गुफाओं में भी मिली हैं।
3: अच्छा।
2: और बेटी मैं तुम्हें बताता हूँ, इन पांडुलिपियों में उस समय की धार्मिक परंपराओं, राजाओं के जीवन, दवाइयों, कला और विज्ञान की जानकारी हमें मिलती है। हमें कई नाटक और कविताएं भी मिलती हैं।
0: ये किस भाषा में है?
2: बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी तुमने, ये ज्यादातर संस्कृत, तमिल और प्राकृत भाषा में है। उन दिनों प्राकृत भाषा का इस्तेमाल आम लोग करते थे।
0: मामा जी अब आगे भी बताइए ना।
2: हाँ हाँ, बताता हूँ बताता हूँ, अरे धैर्य रखो। अतीत या पुराने समय के बारे में हमें पांडुलिपियों से तो पता चलता ही है, लेकिन हमें बहुत सारी जानकारियाँ अभिलेखों और शिलालेखों से भी मिलती हैं।
0: अच्छा।
2: अभिलेख को अंग्रेजी में इंस्क्रिप्शन कहते हैं। इंस्क्रिप्शन शब्द से ही इंस्क्राइब निकला है, जिसका मतलब है लिखना, खोद कर लिखना या उत्कीर्ण करना, इसको उकेरना भी कहते हैं।
0: अच्छा।
2: और हाँ, अतीत को जानने के लिए हम अभिलेखों का भी अध्ययन करते हैं। ऐसे अभिलेख हमें पत्थर या धातु पर खोद कर लिखे हुए मिलते हैं। लगभग 2250 वर्ष पुराने पत्थर पर लिखा अभिलेख या शिलालेख हमें वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से मिला है।
0: अच्छा।
2: ये सम्राट अशोक के आदेश पर लिखा गया है। पत्थर पर लिखने की कला को एपिग्राफी भी कहते हैं, और शिलालेख को
3: एपिग्राफ।
2: शाबाश निधि।
3: मामा जी, अभिलेख और शिलालेख में क्या फर्क है?
2: देखो, अभिलेख को किसी भी कठोर वस्तु पर लिखा जा सकता है, मतलब ये कोई धातु भी हो सकती है। ये अभिलेख हमें पकी मिट्टी, सिक्के, तांबे और चांदी पर भी लिखे मिले हैं, लेकिन शिला का मतलब होता है पत्थर। ये लेख पत्थरों पर ही लिखे जाते हैं।
3: मामा जी आपने शिलालेख की बात की, ऐसे पत्थर पर हमें क्या लिखा हुआ

0: मिलता है?
1: ऐसे पत्थर पर कभी कभी राजा लोग अपने आदेशों को खुदवाते या उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उसका पालन कर सकें।
0: मामा जी, मैंने सुना है कि भूविज्ञानियों के अध्ययन से भी हमें अपने अतीत के बारे में पता चलता है।
1: आदिका, बिल्कुल ठीक सुना है तुमने। भूविज्ञानी मिट्टी के नमूनों, पुराने पत्थरों, पहाड़ों और महासागरों का अध्ययन करते हैं और पता लगाते हैं कि पहले पृथ्वी कैसी थी और आज क्या उसका स्वरूप कुछ बदला है।
0: ओह, कितना रोचक है ये सब जानना।
1: हाँ आदिका, रोचक तो है ही। तो दोस्तों, हमारा समय अब समाप्त होता है। इस वायदे के साथ कि एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपसे फिर भेंट होगी। अब आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।
2: तो साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। अब आपके लिए कुछ करने को, तो चलिए बनाते हैं अभिलेख। तो सबसे पहले आप मुलायम मिट्टी या क्ले लीजिए, फिर उसे हाथों से एक पट्टी की तरह बना लीजिए और उसे गोल या चौकोर जैसा कोई आकार दीजिए। अब सतह को किसी सपाट चीज से चिकना कर दीजिए। तो अभिलेख के लिए अब आपकी पट्टी तैयार है। इस मुलायम मिट्टी पर लिखने के लिए आप पेंसिल या किसी नुकीली लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। अब इस मुलायम मिट्टी पर अपनी मातृभाषा के कुछ अक्षर या शब्द लिखिए या कोई चित्र बनाइए। मिट्टी को सुखा लीजिए और फिर विद्यालय में अपने मित्रों और शिक्षकों को दिखाइए और इसके बाद इसे सहेज कर रख लीजिए। हो गया ना तैयार आपका अभिलेख?
3: आशा है श्रोता मित्रों, आपको ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। श्रोताओं, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह माना जाता है, लेकिन सच ये है कि इससे पहले भी बहुत से लोगों ने स्वतंत्रता के लिए स्थानीय रूप से अपनी आवाजें बुलंद की।
2: इनमें से बहुत सारे जनजातीय या आदिवासी समूह थे जिनमें बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हू इत्यादि बहुत प्रसिद्ध हैं।
3: जी।
2: लेकिन आज श्रोताओं, आपको विशेष रूप से हम बताना चाहते हैं कि कई जनजातीय महिलाएं भी रही
3: जिन्होंने स्थानीय रूप से स्वतंत्रता का झंडा बुलंद किया। इनमें आज हम सुनेंगे कार्यक्रम रानी दुर्गावती पर, जो गोंड आदिवासी समुदाय से संबंधित हैं। उनकी वीरता के किस्से आज भी गोंडवाना भूमि यानी आज के छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में गाए और सुनाए जाते हैं।
2: तो आइए सुनते हैं श्रोताओं कार्यक्रम रानी दुर्गावती।
4: हमारे देश के इतिहास में स्त्रियों के त्याग और महानता की अनगिनत कहानियां मिलती हैं। ऐसी कुछ विरल स्त्रियों में से एक है रानी दुर्गावती। दुर्गावती का जन्म मध्य प्रदेश के महोबा नामक स्थान पर सन 1524 में हुआ था। उसके पिता कीर्ति सिंह कालंजर के राजा थे। दुर्गावती अभी छोटी ही थी कि उसकी मां का देहांत हो गया। पिता ने उसे बचपन से ही घुड़सवारी और अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी और ये देखकर बहुत खुश होते कि उनकी बेटी राजनीति और शासन की समस्याओं को सुलझाने में भी उतनी ही कुशल थी जितनी तीर चलाने में। एक बार की बात है,

शाबाश शाबाश मोती शाबाश, आज तुमने खूब साथ दिया। हाँ मैं जानती हूँ कि तुम थक गए हो, तुम्हें प्यास भी लग रही है, पर क्या करो, तुम तो शिकार के पीछे इतना तेज दौड़े कि अपने सब साथी पीछे छूट गए। चलो कुछ देर यहीं आराम करते हैं, तब तक बाकी लोग भी आ जाएंगे। ये लो, कुछ लोग तो शायद आ ही पहुंचे। अरे ये क्या, ये तो हमारे साथियों में से कोई नहीं, इसके कपड़ों से तो लगता है कि ये कोई मुगल सरदार है।

0: ऐसी खूबसूरत लड़की और वो भी इस बयाबान जंगल में।
1: आपने मेरा रूप तो देखा पर शायद ये नहीं देखा कि मेरे हाथ में तीर कमान भी है।
0: जी हाँ देख रहा हूँ, पर सच पूछिए तो आप जैसी हसीन लड़कियों के हाथ में तीर कमान शोभा नहीं देते।
1: बस बस वहीं खड़े रहो, शायद तुम नहीं जानते कि मैं कालंजर की राजकुमारी दुर्गावती हूँ।
0: अखा तो आप ही हैं राजकुमारी दुर्गावती। अरे वाह, जैसा सुना था वैसा ही पाया। अरे आपकी सुंदरता और बहादुरी के किस्से तो दूर दूर तक फैले हुए हैं। इस इलाके के सभी राजे रजवाड़े आपको पाने की हसरत रखते हैं। ज़हे नसीब जो आपके दीदार हुए। अब जरा
1: फिर आगे बढ़ रहे हो, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? कौन हो तुम?
0: मैं आसिफ खान हूँ, कड़ा का सूबेदार। आपको अपनी मलिका बनाना चाहता हूँ, और आज जब ऐसा सुनहरी मौका हाथ आ ही गया है तो अभी आपको अपने साथ ले जाऊंगा।
1: जरा हाथ तो लगाकर देख आसिफ खान, तूने दुर्गावती का रूप देखा, अब दुर्गा का रूप भी देख।
0: अच्छा वाह, और
1: हाँ तो आसिफ खान अब जरा अपनी बात दोहराओ। मेरी तलवार तुम्हारा लहू चखने को बेचैन है।
0: मुझे माफ कर दीजिए राजकुमारी जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। आप तो मेरी बहन जैसी हैं।
1: ठीक है, पर आइंदा कभी किसी लड़की पर बुरी नजर मत डालना, वरना इस देश की बेटियों को दुर्गा और चंडी बनते देर नहीं लगती।
0: अजी मेरी तौबा, जो अब किसी की तरफ आंख उठाकर भी देखूं।
1: चल बेटा मोती।
0: आज की इस बेइज्जती को मैं कभी नहीं भूलूंगा दुर्गावती। तुमसे आज की इस हार का बदला ना लिया तो मेरा नाम भी आसिफ खान नहीं।
2: एक बार दलपरचाह ने राजा कीर्ति सिंह को शिकार खेलने के लिए मनियागढ़ के जंगलों में आने का निमंत्रण दिया। शिकार की शौकीन दुर्गावती भी साथ गई। दलपत शाह इस साहसी युवती पर मुग्ध हो गए और उसे अपनी पत्नी बनाने का निश्चय कर लिया। दोनों का विधिवत विवाह हुआ। डेढ़ वर्ष बाद दुर्गावती ने एक पुत्र को जन्म दिया। बालक का नाम वीर नारायण रखा गया। लेकिन दुर्गावती के जीवन का यह सुख शांति का समय अधिक दिन नहीं रहा।
3: आधार सिंह जी, आप स्वर्गीय महाराज के मंत्री ही नहीं थे, आप उनके मित्र और चिंतक भी थे। आप ही बताइए मैं क्या करूं।
4: महारानी, आप स्वयं योग्य हैं, मैं भला आपको क्या सलाह दे सकता हूं। पर हां, इतना अवश्य जानता हूं कि स्वर्गीय महाराज अपने जीवन काल में बराबर राजकाज में आपसे सलाह लेते थे और आपकी राय की कदर करते थे। वे ये कभी पसंद नहीं करते कि आप कायरों की भांति जीवन से मुंह मोड़ लें।
3: ठीक है आधार सिंह जी, घोषणा करवा दीजिए, कुमार वीर नारायण गोंडवाने के नए राजा हैं और रानी दुर्गावती आज से सिर्फ उनकी ही नहीं समस्त गोंड राज्य की माता है।
4: राजमाता की जय, राजमाता की जय हो, राजमाता की जय हो।
2: रानी दुर्गावती ने शासन की बागडोर अपने मजबूत हाथों में संभाल ली। उसने किसानों को अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित किया, उद्योगों को प्रोत्साहित किया, पानी की समुचित व्यवस्था के लिए कुएं और तालाब खुदवाए, पुराने कुओं की मरम्मत करवाई। वह राज्य के सभी भागों के अधिकारियों को बुलाकर उनके समस्याओं के बारे में बातचीत करती और कभी कभी स्वयं भी दौरा करती थी। राज्य

0: के कोष और सेना की रानी स्वयं देखभाल करती थी। उसके कुशल शासन में गोंडवाना एक संपन्न राज्य बन गया। दिल्ली के मुगल बादशाह अकबर ने गोंडवाना पर अधिकार करना चाहा। आसफ खां के नेतृत्व में मुगलों की बड़ी भारी फौज गोंडवाना की ओर चल पड़ी। रानी पहले से सतर्क थी। आक्रमण हुआ। रानी की सेना बहुत बहादुरी से लड़ी। कई मोर्चों पर तो उसकी जीत भी हुई। लेकिन रानी के एक पुराने शत्रु रेवतीगढ़ के राजा सुधार सिंह ने धोखा दिया। सुधार सिंह साधु के वेश में इधर उधर फिरता और जासूसी करता। उसी ने अकबर को गढ़ा पर हमला करने के लिए प्रेरित किया था। इनाम जागीर पाने के लालच में वो इधर की खबर उधर पहुंचाया करता था।
1: अलख निरंजन।
2: साधु बाबा।
1: अब अच्छा,
2: यहाँ कहाँ घुसे चले आ रहे हो? ये रानी दुर्गावती का किला है, साधुओं का जमघट नहीं।
1: अरे वो तो हम भी जानते हैं बच्चा, लेकिन साधु तो रमता राम होते हैं, आज यहाँ कल वहाँ। अभी मुगलों की छावनी से चले आ रहे हैं
2: क्या?
1: हाँ, बाप रे बाप, क्या लश्कर है बच्चा
2: है?
1: हाथी, घोड़े, तोप, बंदूक, बड़ा भारी इंतजाम है।
2: अच्छा,
1: हाँ
2: बहुत बड़ी फौज है।
1: और नहीं तो क्या बच्चा। अरे मुगल लोग जब चूहे के शिकार पर भी निकलते हैं ना, तो शेर के शिकार की तैयारी करके चलते हैं। और फिर यहाँ, अरे यहाँ तो रानी दुर्गावती से मुकाबला है। बड़ी जबरदस्त तैयारी करके निकले हैं बच्चा।
2: तो हमारे यहाँ भी जबरदस्त तैयारी है बाबा।
1: अच्छा,
2: रानी माँ ने रसद, पानी, हथियार सबका ऐसा बंदोबस्त किया है कि मुगल साल भर भी घेरा डाले पड़े रहे तो भी गढ़ में किसी चीज की कमी नहीं होगी।
1: हैं? क्या कहते हो बच्चा, साल भर का इंतजाम है?
2: बिल्कुल है।
1: और भगवान ना करें कोई हारी बीमारी ऐसी हो जाए कि बाहर निकलना जरूरी हो जाए तो?
2: उसका भी इंतजाम है।
1: अरे हटाओ, बाहर मुगल फौज घेरा डाले पड़ी हो तो तुम्हारी रानी भला क्या इंतजाम कर देगी?
2: देखो
1: हा?
2: तुम्हें बताने में कोई हर्ज नहीं, पर किसी और से ना कहना।
1: नहीं नहीं बच्चा, किसी से नहीं कहेंगे।
2: हाँ, हमारे महल से एक गुप्त सुरंग शहर के बाहर वाले बगीचे तक जाती है।
1: गुप्त सुरंगों का पता तुम्हारे जैसे मामूली सैनिकों को कैसे पता चलेगा? यूं ही डींग मार रहे हो तुम।
2: यूं ही डींग नहीं मारता साधु महाराज, मैं बदन सिंह हूं, बदन सिंह, रानी माँ का खास सेवक। इतना सा था जब मुझ अनाथ को रानी माँ ने सहारा दिया था।

0: पुरुष वेश में लड़ रही रानी की बहादुरी देखकर मुगलों के छक्के छूट गए। मुगल सैनिक जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। दूसरे दिन फिर घमासान युद्ध हुआ। वीर नारायण घायल हो गए थे। उन्हें रणभूमि से दूर चौरागढ़ भेज दिया गया। रानी हाथी पर बैठकर लड़ रही थी कि तभी
1: क्या हुआ रानी माँ? अरे आपकी कनपटी में तीर लगा है माँ।
2: ओ मेरा ध्यान छोड़ गनु, तू हाथी को संभाल।
1: हाथी को क्या संभालूं रानी माँ, ये तो पहले ही भालों से छिप चुका है। अब तो कुछ देर संभला रह सके तो बड़ी बात है, लेकिन आप कितना खून बह रहा है।
2: ये खून तो वीरांगनाओं का आभूषण है गनू।

0: रानी मा देर न कीजिए, आप मेरा ये घोड़ा लेकर यहाँ से शीघ्र निकल जाइए। चौरागढ़ में राजा साहब भी हैं, वहीं जाना ठीक रहेगा।
1: अब इसका समय नहीं रहा आधार सिंह जी, मुगल सैनिक चारों ओर से घिरते आ रहे हैं। आसिफ खान से मेरा पुराना बैर है, उसके हाथों अपनी दुर्गत कराने से अच्छा है आप अपने हाथों मेरा अंत कर दें।
0: नहीं नहीं रानी माँ, नहीं, ये पाप मुझसे नहीं हो सकेगा। इसकी आज्ञा मुझे मत दीजिए रानी माँ।

0: आप अपने हाथों मेरा अंत कर दें।
1: नहीं नहीं रानी माँ, नहीं, ये पाप मुझसे नहीं हो सकेगा, इसकी आज्ञा मुझे मत दीजिए रानी माँ।
0: अच्छा तो गनू बेटा, तू अपनी कटार मुझे दे।
1: मेरी कटार से अपने प्राण लेकर तुम मुझे इस तरह पापी नहीं बना सकती माँ। मैं तुम्हारा महावत हूँ, तुम्हारे साथ ही रहूंगा।
2: श्रोताओं, इसी के साथ अब हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे NCERT और CIET द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग। मीडियम वेव और FM बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं शीर्षक फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चयन। स्वागत है साथियों आप सभी का कार्यक्रम चयन में। आज के सफर में मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो साथी शक्ति। श्रोताओं, बादल आसमान में तैरते केवल जल वाष्प के समूह नहीं हैं, बल्कि प्रकृति की सबसे सुंदर और रहस्यमयी रचनाओं में से एक हैं। आज के चयन में हमारा शीर्षक है बादल। कभी रुई के फाहों जैसे सफ़ेद, कभी घने काले और कभी सूर्योदय व सूर्यास्त की सुनहरी आभा में रंगे बादल मन को अनायास ही अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो आकाश स्वयं अपनी भावनाओं को रंगों और आकृतियों के माध्यम से व्यक्त कर रहा हो। तो आइए सुनते हैं बादल पर आधारित ही अरिजीत सिंह की आवाज़ में ये गीत फिल्म जैकपॉट से। गीतकार हैं तुराज और अजीम शिराजी, संगीत निर्देशक हैं शरीब तोशी।

श्रोताओं, बादल जीवन के सच्चे दानी भी होते हैं। वे समुद्रों और नदियों से जल लेकर दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचते हैं और वर्षा के रूप में धरती की प्यास बुझाते हैं। किसान की आशा, हरियाली की मुस्कान और नदियों का कलकल बहता संगीत, इन सब के पीछे बादलों का ही मौन योगदान होता है। यदि बादल न हो तो धरती का संतुलन और जीवन की लय दोनों ही प्रभावित हो जाती है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में बेताब फिल्म का ये प्यारा सा गीत। आवाजें हैं लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है आरडी बर्मन ने।

बादल शीर्षक पर अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चयन में बातें और गीत। श्रोताओं, बादलों का साहित्य, संगीत और सिनेमा में भी विशेष स्थान रहा है। कभी वे विरह का संदेश लेकर आते हैं तो कभी प्रेम की मधुर अनुभूति जगाते हैं। बच्चों के लिए बादल कल्पना के साथी हैं तो कवियों के लिए भावनाओं की उड़ान। कभी हाथी, कभी घोड़े और कभी महलों जैसी आकृतियाँ बनाते बादल हमें यह सिखाते हैं कि कल्पना की कोई सीमा नहीं होती। आइए सुनते हैं फिल्म चक दे इंडिया का ये प्यारा सा गीत। हेमा सरदेसाई की आवाज़ में, बोल जावेद अख्तर के हैं, संगीत है सलीम सुलेमान का।

साथियों, बादल हमें जीवन का एक गहरा संदेश भी देते हैं। वे निरंतर चलते रहते हैं, कहीं ठहरते नहीं, चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, वे अपना सफर जारी रखते हैं और समय आने पर स्वयं बरसकर दूसरों के जीवन में खुशियां भर देते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि सच्चा सुख संग्रह करने में नहीं बल्कि बांटने में है। जितना हम दूसरों के काम आते हैं, उतना ही हमारा जीवन सार्थक बनता है। कार्यक्रम के अगले क्रम में बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं फिल्म हम दिल दे चुके सनम का ये प्यारा सा गीत। आवाजें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की, गीतकार हैं महबूब और संगीत निर्देशक हैं स्माइल दरबार।

श्रोताओं, जब भी आकाश में बादलों को देखें, केवल उनके रूप का आनंद ही न लें, बल्कि उनके संदेश को भी समझें। उदारता, निरंतरता और सेवा का जो पाठ बादल हमें सिखाते हैं, यदि हम उसे अपने जीवन में उतार लें, तो हमारा जीवन भी वर्षा के शीतल फुहारों की तरह दूसरों के लिए सुखद और प्रेरणादायक बन सकता है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म कश्मीर की कली से, गाया है आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी ने। बोल SH बिहारी के हैं, संगीत है OP नैयर का।

0: अभी आप सुन रहे थे शीर्षक फिल्मी गीतों पर कार्यक्रम चयन मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 1 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। श्रीमती सीतारामन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस न्यायिक क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार हैं। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि दक्षिण अमरीकी देश में भारत के मानवीय राहत प्रयासों को जनता से इसकी सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। वेनेजुएला में हाल ही में आए भीषण भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 2,595 हो गई है। इस आपदा में 12,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जबकि 189 इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई हैं। स्थिति को देखते हुए कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्से रोड्रिगेज ने देश में 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। भारत ने वेनेजुएला के अधिकारियों से नाविक राकेश चौहान के शव के साथ छेड़छाड़ और अंग निकाले जाने की घटना की गहन जांच की मांग की है। कराकस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि घटना के सामने आने के बाद से ही दूतावास संबंधित स्थानीय अधिकारियों के सामने इस मामले को उठा रहा है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची भारत की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट गई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस यात्रा से भारत और जापान के बीच महत्वपूर्ण साझेदारी और मजबूत हुई है। दोनों देशों ने साझा विकास, समृद्धि तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। जापान के कई समाचार पत्रों और मीडिया संस्थानों ने नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन को सकारात्मकता से प्रकाशित किया है। इनमें दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक सहित कई क्षेत्रों में बेहतर होते संबंधों को रेखांकित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची द्वारा शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा के बाद इन्हें मजबूत करने के लिए किए गए समझौतों के बाद जापान के मीडिया ने इन्हें प्रकाशित किया है। युवा मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश के युवाओं की प्रमुख भूमिका है। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि सरकार युवाओं के लिए चल रहे कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात दौरे पर रहेंगे। राजस्थान में वे जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को सालाना 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री राजस्थान के बालोतरा में 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इनमें पेट्रोकेमिकल, रेलवे, सड़क, ऊर्जा और शहरी परिवहन से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर में दर्शन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि अमरनाथ यात्रा देश की आध्यात्मिक विरासत और उसकी आस्था को रेखांकित करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक सनातन अध्याय बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने पूरे मार्ग पर उच्च स्तरीय व्यवस्थाएं की हैं। फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। 7 जुलाई मंगलवार को उसका मुकाबला कोलंबिया या घाना से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: हिंदी समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित कर रहे थे। ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 1:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बात। कार्यक्रम में लीजिए सुनिए भिंडी में रोग प्रबंधन विषय पर सामयिक सुझाव।
2: भाइयों, सब्जियों का हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। भिंडी भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल है। भिंडी के फल को मुख्यतः सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। भिंडी मुख्य रूप से रोगियों के लिए बहुत ही लाभदायक होती है, परंतु इसके अन्य भागों जैसे तना इत्यादि को उद्योगों में भी प्रयोग किया जाता है। अन्य फसलों की तरह भिंडी में भी अनेक कीड़ों एवं बीमारियों का प्रकोप होता है। तना एवं फलबेधक, यह कीट वर्षा भर सक्रिय रहता है। वयस्क कीट मध्यम आकार का पतंगा होता है, जिसका सिर एवं वक्ष पीले रंग का होता है। मादा समागम के पश्चात रात में या प्रातः पौधे की पत्तियों, फूलों, प्ररोहों एवं फलों पर एक एक करके 200 से 400 तक अंडे देती है, जो गोल व नीले हरे रंग के होते हैं। अंडे गर्मियों में 3 से 4 दिन में तथा जाड़ों में 1 सप्ताह में फूट जाते हैं। सुंडियों के पुष्ट भाग पर छोटे छोटे कड़े बाल होते हैं और बीच बीच में काली तथा नारंगी धब्बे वाली धारियों सुंडियों के पृष्ठ भाग पर छोटे छोटे कड़े बाल होते हैं और बीच बीच में काली तथा नारंगी धब्बे वाली धारियां भी पाई जाती है, इसलिए इसे धब्बों वाली या चित्तीदार सुंडी भी कहते हैं। गर्मियों में 19 से 21 दिन का व जाड़ों में 30 से 39 दिन का होता है। साल में इसकी 12 पीढ़ियां पाई जाती है। इस कीट की सुंडियां भिंडी के फलों, फूलों, कलियों एवं पौधों की कोमल टहनियों को क्षति पहुंचाती है। फसल के प्रारंभ में ही जब पौधे 2-3 सप्ताह के होते हैं, उसी समय सुंडियाँ निकल कर पौधों के प्ररोह में छिद्र करके प्रवेश कर जाती है। परिणाम स्वरूप वे मुरझा जाते हैं। इस तरह लगभग 50% तक फसल नष्ट हो जाती है। जब पौधे पर फूल, कलियां एवं फल आने लगते हैं तो सुंडियां उनमें प्रवेश कर जाती है। प्रवेश क्षेत्र कीट के मल मूत्र से भरे देखे जा सकते हैं। इस कीट के प्रकोप से कलियां नहीं खिलती, फूल झड़ने लगते हैं एवं फल दूषित, छोटे तथा खाने योग्य नहीं रह जाते। इसके प्रबंधन के लिए किसान भाइयों प्रभावित शाखा व फल को तोड़कर नष्ट कर दें। प्रकाश प्रपंच व फिरोमेन ट्रैप की व्यवस्था करें। फसल की प्रारंभ से निगरानी रखें। जैसे ही पौधे पर कीट का आक्रमण दिखाई दे तो ट्राइकोकार्ड नामक परजीवी कीट के 1,00,000 अंडे प्यूपा प्रति हेक्टर की दर से 5-6 बार 15 दिन के अंतराल पर फसल में छोड़ना चाहिए। अधिक प्रकोप होने पर कीटनाशक लेमडा साइहेलोथ्रिन 5 EC की 800 मिलीलीटर मात्रा या फेंटोएट 50 EC की 1 लीटर मात्रा का 500 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टर की दर से छिड़काव करना चाहिए। सफ़ेद मक्खी, इस कीट की अर्भक जू की तरह कोमल और पीले रंग के होते हैं। ये पत्तियों की निचली सतह पर चिपके रहते हैं। व्यस्क पंख युक्त 1 से 1.5 मिलीमीटर लंबे तथा पीली सफ़ेद रंग के होते हैं। इसके पंख चमकीले होते हैं। यह कीट वर्ष भर सक्रिय रहता है। मादा पत्तियों की सतह पर 100 से 150 अंडे देती है। अंडों के फूटने के साथ ही अभ्रक अपने मुखांग पत्तियों में छुपकर रस चूसते हैं और 3 निर्मोचन कर प्यूपा में बदल जाते हैं। प्यूपा अवस्था वातावरण के अनुसार 9 दिन से 12 दिनों तक होती है। संपूर्ण जीवन चक्र गर्मियों में लगभग 2 सप्ताह एवं जाड़ों में 4 सप्ताह होती है। इस कीट के अभ्रक एवं व्यस्क दोनों ही पत्तियों का रस चूसकर क्षति पहुंचाते हैं, जिससे पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और पौधे की बढ़वार रुक जाती है।

0: पौधे छोटे रह जाते हैं और उनमें फूलों तथा फलों की संख्या कम रह जाती है। इसके साथ साथ यह कीट अपने शरीर से मीठा पदार्थ निकालता है जिसके ऊपर काली फफूंदी उग जाती है जो प्रकाश संश्लेषण में बाधा पहुंचाती है। फसल को दूर से देखने से रोग युक्त एवं काले रंग के दिखाई देती है। यह कीट भिंडी के पीला सिरा मोजेक रोग के विषाणु के वाहक का कार्य भी करती है। इसके प्रबंधन के लिए किसान भाइयों खेत के पास उगे हुए परपोषी पौधे तथा खरपतवारों को नष्ट कर देना चाहिए। पीले चिपचिपे ट्रेप की व्यवस्था करें। कीटनाशी थायोमिथाक्सोम 25WP या इमेडा क्लोरोप्रिड 17.8 SL की 125 ml 1 लीटर मात्रा का 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टर छिड़काव करें। इस तरह किसान भाइयों भिंडी के कीटों एवं रोगों का एकीकृत प्रबंधन करके अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं।
1: कार्यक्रम खेती की बात में अभी आप सुन रहे थे भिंडी में रोग प्रबंधन विषय पर सामयिक सुझाव। आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 1:10 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर गोसाइन।

सत्संगी हो, सुभाष चंद्र बोस कह रहीन कि सफलता हमेशा असफलता के स्तंभ में खड़ा रहल, और जब तक हमारा सफलता के स्वाद ला नहीं चख लेती तब तक हमार सफलता के स्वाद जो है ओहर हमन ला नहीं भेटाल। एहू एक ठन सही गोटा है। तो आज ये सुघर विचार कर संगे घर गोसाइन कार्यक्रम में जमो सुनैया संगे मन कर स्वागत करत हन। जय जोहार, राम राम। आज संगे रहूँ मैं रमा बहन। देखिए आप बरखा कहूँ कहूँ हमन कहे थी कि अब देखत भी भाई कि शुरू हो गई सा है हमरो कति भाई अंबिकापुर में बरखा हराई सा है, और आज को तो चट्टी कहिया कि घामा हर होता है बकीर गिरबे करिएला हमन सोचत थी, और भाई भुला थी बरखाला भी के आ जाए और हमार जो धान पान के शुरुआती काम होता है ओहर बढ़ियन हो जाही। और में एक चीज़ हमन लाओ देखना है कि बरखा हराही पानी हराही तो जो हमार ये बरखा के पानी ला हमार संजोए कर गोइट कर थी ओला हमन करे सकत थी। देखी जो ये पानी आ है एकर हमन ला मूल्य समझना कीमत समझना बहुत जरूरी है। खबर कि देखिए हमार अपन जीवन में जो छोटका छोटका गोठ मन कर तिहा करती ना, तो वही तिहा जो है वही जागरूकता जो है तो हमन बर आगे फायदा देहल। देखिए हमार छत के जो पानी होते ओला हमन कोनो ड्रम में चाहे टंकी में इकट्ठा करके एकर उपयोग करे सकत थी कोनो कोनो चीज़ में, और देखब कि ये पानी हर भी बढ़िया सफा रहल गंदा नहीं रहल हर। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग एला हमन सुने ही जिला हमन सोखता कथी तो सोखता ही बना सकत ही, और ए बछर के जो बरखा के पानी आ है एला हमार भुया कर भीतरी संजोए के रख सकत ही। और एकर प्रयोग ले देखी हमार जो आसपास में जल के स्तर आ है ओहर तो बढ़िया होबे करी। संगे संगे भाई सब कति अगर हमन ऐसे प्रयास करब तो जम्मू कति देखी जो हमार नीचे जो जमीन के पानी कर जो स्तर है ओहर बढ़े सकता है। तो हमन ला एधा जरूर तिहा करना है। संगी तंगी देखी जैसे खेती किसानी की गोट करत रहें तो हमन ला लाभ लेना है। का चीज़ के लाभ लेना है, अभी नवा नवा देखी खेती किसानी के तकनीक आ गई सा है, ढेरे हमार भैया बहनी मन तो एकर प्रयोग करता है, और जिमन भाई नहीं करता है तो ओमन भी करे सकता है। देखी हमार पुराना जो चीज़ है वह तो है हमार भर, और बकीर कहूँ कहूँ हमन देखब कि ओकर ले हमन ला थोड़ा सा देरी भी लग जाए। जैसे नांगर बैला ले हमन भाई अपन खेत जोतत थी तो ओमें थोड़ा सा हमन ला देरी हो जाए हमन देखती, बकीर ओकरे जगह में ट्रैक्टर सेक्टर आ गई ना है तो ओकर ले हमन जोतब अपन खेत ला तो बढ़िया हो सकता है। और एक ठन आ है सटीक खेती, तो एमें GPS और सेंसर और ड्रोन के मदद से देखिए कि खेत के हर हिस्सा में निगरानी करते हैं, और एमें पानी खाद कीटनाशक कहाँ पे प्रयोग करना है ओला और कैसे कितना करना है वो जरूरत के हिसाब से एमें प्रयोग करते हैं। संगे है AI आधारित ड्रोन जो है एकर आजकल मदद लेता है, और एकर मदद से भी हमार खेती किसानी आसान हो गई सा है।

0: और आहे हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स खेती, जो बिना माटी कर खेती होता है और खेती के बहुत उन्नत तकनीका है और पानी और पोषक तत्व खाली हमन लेहत ही और उकर मदद से बढ़िया खेती होता है। एक अलावा ही बहुत सारा ऐसा खेती के नया नया चीज़ ऐसा है और नवा नवा खाद पानी सब जाता आता है, जैविक पद्धति जो आ है सब चीज़ आ है, तो नवा नवा चीज़ हमन देखब और ओला सीखब तो हमार खेती किसानी में हमन ला फायदा भेटा ही। तो देखिए आगू को बातों करब, अजय लोकगीत भी आए हमारे जगह बल अजय सुनी ये संदेश ला।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में, अरे वाह।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: हाँ तो देखिए संदेश लहान सुनने हमारे जगह है एक ठन छत्तीसगढ़ी गीत, तो ले गेला सुनी।

हाँ तो बढ़िया हमन ये छत्तीसगढ़ी गीत सुनत रहन केदार यादव और साधना यादव कर गाल रही। देखिए आज हमार हमार धरोहर एक रम रहल और में हमन आज गुट बात करब छत्तीसगढ़ कर लोक नृत्य और संगीत कर बारे में। देखिए हमार जो छत्तीसगढ़ है ना और सांस्कृतिक पहचान एक देखिया कि यहाँ से लेकर दुरिया दुरिया तक आए और एक लोक संगीत और गीत और यहाँ कर जो नाचा रहते अलग अलग प्रकार किया है यहाँ की परंपरा यहाँ की संस्कृति और यहाँ

के आदिवासी और ग्रामीण जीवन जो है वो बहुत बढ़िया ना है, और ये सब चीज़ में लोकगीत हो जाए, चाहे संगीत हो जाए, चाहे नाच हो जाए, यहाँ के सब में एकर एक ठन झलक हमन देखे सकत ही, और बहुत खास है ये सब चीज़। हम यहाँ कर जो भी सामाजिक चाहे धार्मिक कुछ भी होत रहते, चाहे कृषि से जुड़ल कुछ खास त्यौहार रहे, तो ऐसे बेरा में ये सब चीज़ होल हमन सुनत रहती, देखत रहती, और बहुत बढ़िया लगे ये सब चीज़। और आज हमन एक में से कुछ जो संगीत है और नाच है ओकर हमन गुड बात करब। तो देखिए पंथी नृत्य जो है ये जो है ये सतनाम पंथ के जो संस्थापक हैं गुरु घासीदास जी, उनकर याद में एला करते हैं, और धार्मिक और सामाजिक एकता का प्रतीक भी आए है हर, और जो एमे पुरुष नर्तक मना है जो इमन रंग बिरंगा परिधान ला पहन थे, जो हमन देखती कि भाई अलग अलग प्रकार के कपड़ा हर नाच में जो रहे लोमन पहन थे, और मादर के थाप में मस्त में नाच करते हैं हमन। देखब सुनब तो जितना भी ये नाचा है तो सब बहुत बढ़िया लगे। इसने देखी राउत नाचा है, तो यह खास करके दिवाली के अवसर में होल, और यादव समुदाय के जो मनसे मना है उमन एला करते हैं, और भगवान कृष्ण के भक्ति में समर्पित है यह। और पुरुष नर्तक जो हैं उमन लाठी और रंग बिरंगा परिधान लेके और ये राउत नाचाला प्रस्तुत करते हैं। अब सुवा नृत्य जो है तो इमें जो हमारे बहनी मना है ओमन करते, और ये हमार दिवाली के जो पर्व है यहाँ से एक शुरुआत हो, और अगहन मास तक यहर चले, और धान से जो भरल टोकरी रहल उमें तोता ला रख के सुगा हमन बोलती ओला रख के ओकर चारों धरी में बढ़िया नाचते, और सुवा गीत लगाते, और इमें लोकगीत कर माध्यम से बहनी मन अपन भावना ला भी बताते हैं। अब एक बाद आए गौर नृत्य, तो ये जो आए ये बस्तर के मोरिया आदिवासी मन करते हैं, और इमें शक्ति और उत्साह कर खास महत्व आए, और ओकरे प्रतीक आए ये गौर नृत्य है, और भैंस के सिंगला लगा के इमें नाच करते हैं पुरुष मन। अब कर्मा जो नाच है हमन जानती हमार सरगुजा में भी बहुत होल, और कर्मा पर्व के समय यह होल, और कृषि और प्रकृति कर पूजा इमें होल, और जो भैया और बहनी मना है उमन करम डार जो है ओकर पूजा करते हैं, और गीत गा के नाचते हैं। हमार जो लोक संगीत है तो लोक संगीत में हमन देखब तो हमार जीवन के हर देखब की जगह ए गीत में संगीत में मिलेल ओकर हर पहलू हमन देखे सकत ही हमारे यहाँ के लोक संगीत में। प्राकृतिक सौंदर्य के गोट कर ली, चाहे जीवन के कठिनाई के परेशानी के, चाहे खुशी के, चाहे धार्मिक जो आस्था है ओकर गोट हमन करी, सब जात ए लोकगीत में हमन सुने सकत ही। आ लोक संगीत में ढोल मजीरा बाँसुरी मादर जैसे जो पारंपरिक वाद्य यंत्र रहल ओकर प्रयोग होल, आ पंडवानी भोजली ददरिया गौरा गौरी जैसे बहुत सारा लोक संगीत है जो हमार छत्तीसगढ़ में प्रचलित है। तो आज हम एक बारे में गोट बात करें, तो कैसे लागी सला जरूर बताइए। हमार जगह है एक ठन भोजपुरी की, तो लेगी सुनी।

हाँ तो बढ़िया हमन आज भोजपुरी गीत सुनत रहन ए और अब देखिए हमर जो यातायात नियम रहे लोकर हमन ला देख के और सावधानी हमन ला बरतना चाहिए ला हमन जानती कि भाई एला पालन करना हमर सब के जिम्मेदारियाँ है। और आए दिन हमन सुनत ही देखत ही कि मारे दुर्घटना होत रहे और दुर्घटना में देखी कितना जन के जान भी जाता है एला भी हमन देखत ही और कितना बहुत गंभीर रूप से परेशान होता है। तो हमन ला एतिहा करना है कि देखी जब हमन रोड में चलत ही तो हमार जो नियम कानून है कि भाई हमन ला कौन कति चलना है बायां कति चलना है एला तिहा करना है। अब हमन रोड ला पार करत ही तो ओला देखत ही कि दाया देखना है बायां देख हमन तो नानकुन रहन ओ घनी लेला सुनत ही कि दाया देखी हमन तेकर बायां देखी तेकर फिर दाया देखी तेकर बाद हमन ला रोड पार करना है। अब जो पैदल चले आए हैं तो ओमन बर भाई चले बर भी बनी सा है तो ओमे हमन चले सकत ही संगे संगे जैसे हमन मुड़त ही बायां मुड़त ही चाहे दायां मुड़त ही तो हमार गाड़ी में आजकल इंडिकेटर बत्ती हर जुबुर जुबुर करत रहल तो ओला हमन ला जलाना है और ओला जलाए के और भाई हाथों हमन दिखा सकत ही ऐसे करके साइकिल में चढ़े हन तो बत्ती हर तो नहीं रही तो हमन हाथ दिखाए के और तेकर बाद हमन मुड़े सकत ही। तो ये थोड़ा थोड़ा चीज के जो हमन लतीहा करना है बात के और चीज़ है कि जैसे अब हमन देखब कि चौक चौक में हमार बत्ती लगी सा है तो चाहे वो बत्ती हर भाई लाल हुआता है तो हमन रुकना है और हमन सब जाना थे कि पीला बत्ती की का मतलब आ है हरा बत्ती की का मतलब आ है तो थोड़ा सा देख के सोच समझ के हमन ला काम करना है। और नशा में हमन ला गाड़ी बिल्कुल भी नहीं चलाना है कोनो प्रकार के वाहन और नशा करना बहुत

खराब बात है, इला हमारे हमेशा बोलत रहती कि भाई अपन जिंदगी भी खराब होल, हमर परिवार भी खराब होल, तो ये सब चीज़ ला हमन सोची और दुर्घटना से बाची और थोड़कुन बेरा बाची सह तो लेगी सुनिए छत्तीसगढ़ी गीत।

लिखी बहुत बढ़िया ने, गुलाब सिंह पैकरा और संगी कर गाल ए खेती किसानी कर गीत रहीस। तो हमार संगी मन भी भाई तैयारे हैं अपन खेती किसानी करे बर, और सब जन कर खेती बहुत बढ़िया होए। और हमार जैसे शुरुआती में हमन गोट बात करत रहन कि भाई बारिश के पानी ला भी हमन ला संजोना है, संगे संगे जो हमन बीजा उजा रखे है अपन घर में तोला भी हमन ला बोना है जगह जगह में रोड के धरी में, कि हमार जो पर्यावरण है वह बढ़िया बढ़े रहे। तो आज यही बढ़िया विचार कर संगे और भाई सब जी कर ही ये सोच कर संगे रमा बहिनी है चले थी, फिर भेटबो, जय जोहार, राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम घर गोसाइन, मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 1:40 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के फरमाइश पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम ईमेल की गूंज।

स्वागत है श्रोताओं आप सभी का कार्यक्रम ईमेल की गूंज में। आज के सफर में मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो साथी शक्ति। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म रांझणा से। आवाजें हैं जावेद अली, कीर्ति सागठिया और पूजा की। गीतकार है इरशाद गामिल, संगीत निर्देशक है AR रहमान। इस गीत को सुनना चाहे मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना मध्य प्रदेश से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक ने। राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता साथी हैं खेल साय मरकाम, नयन प्रकाश मरकाम, शारदा मरकाम, लकी मरकाम, सीताराम सितंबर मरकाम, अमरनाथ मंगलमूर्ति, रोशन राजवाड़े, पांडेराम राजवाड़े, नूर साय राजवाड़े, नोहर साय राजवाड़े, हीरा लाल प्रजापति, कविता मरकाम और आरती मरकाम। गांव फ्रांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और सौरभ डूडी। टोंडी लोहारा बालौद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी पूजा, राधिका प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अलकबीर। बन बघेरा राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा और आशा सारवा। पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, निधि निखिल वर्मा, ग्राम पंचायत बठेना दुर्ग छत्तीसगढ़ से। हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्ढा और अलका मिड्ढा। जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से नरेंद्र कुमार तिवारी, महेंद्र कुमार तिवारी, कौशल गोस्वामी, बेबी जोई, रिंकी गोस्वामी, यामिनी तिवारी और उमा तिवारी। आइए सुनते हैं समस्त श्रोताओं की पसंद पर ये खूबसूरत सा गीत।

कार्यक्रम के अगले गीत के लिए हमें ईमेल किया है रसीड़ा छत्तीसगढ़ से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, संध्या, कीर्ति कुमार और डिकेश साहू ने। मुड़गहन छत्तीसगढ़ से रामदुलारी प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकला, शशिकांता प्रजापति ने। नांदुरा महाराष्ट्र से हमारे श्रोता मित्र हैं श्री कृष्ण बाठे, संदीप और अमूल्य बाठे। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस न्हावकर, निर्मला न्हावकर और विशाल न्हावकर। मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान तायड़े और आशीष मुरहेकर। बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार, राजेश्वरी चौहान और उत्कर्ष चौहान। अड़ार नांदघाट से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल और गोपी वर्मा। बटिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतनमाला सुरलकर। कीर्तिनगर न्यू दिल्ली से मानसी, अनिल, गौरव, कविता, अरोरा। राजापुर सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मानिकराम प्रजापति, सविता प्रजापति, घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश कुमार, प्रशांत प्रजापति। कालापुर सरगुजा से कालापारा सरगुजा से रामचंद्र गुप्ता, पांडे राम राजवाड़े। खोंदला उदयपुर सरगुजा से जीवधन सिंह पैकरा, घुरनी पैकरा, करिश्मा पैकरा, सुमार साय, कलेश्वर सिंह, सुखराम पैकरा, हीरामणि और ऐश्वर्या पैकरा। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से हमारे श्रोता साथी हैं बबलेश पवार, डैनी पवार और मनीष पवार। कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर।

और शाइना हसन और इब्राहिम, कुंभार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी ऋषिकेश, जीविका दले, पुनावले पुणे से अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अविका सोनवने और विशाखा सोनवने, बीड शहर से किसन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया और विशाल सपकाल, जगदलपुर बस्तर से पुष्पांजलि नायडू, प्रीतम, अमृता, संतोष, मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू और राहुल साहू। आइए सुनते हैं समस्त श्रोता साथियों की पसंद पर फिल्म वांटेड का ये गीत। गाया है शान और श्रेया घोषाल ने, गीत के बोल लिखे हैं अरुण भैरव ने और संगीत से सजाया है साजिद और

आइए अब सुनते हैं फिल्म आहिस्ता आहिस्ता का ये प्यारा सा गीत। आवाजें हैं के और जयेश गांधी की, बोल इरशाद कामिल के हैं, संगीत है हिमेश रेशमिया का। इस गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता साथी हैं पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह और कुशल शाह, अमरावती महाराष्ट्र से प्रवीण हागोड़े, पार्थ हागोड़े, गुजरात गांधीग्राम से पूजा पायल, प्रवीण सोनी, कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता, नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत, पुष्पांजलि वर्मा, मोताला बाजार से बबलू ठेकेदार, शेख शगीर, शेख वजीर, सोहिल शेख, सैयद तहमूर, शामिर खान और अजलान, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता साथी हैं महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी, विदर्भ श्रोता क्लब जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले और वसुधा वज्रसेन, तेलंगाना निज़ामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना, दानिश आसिफ शेख, अमरावती से साधना रानी और किशोर गुप्ता। आइए सुनते हैं इन समस्त श्रोताओं का पसंद किया हुआ ये प्यारा सा गीत।

कार्यक्रम के अगले क्रम में आइए सुनते हैं जन्नत फिल्म का गीत केके की आवाज में। बोल है सईद कादरी और नीलेश मिश्रा के, संगीत है प्रीतम का। इस गीत को सुनना चाहा है दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू ने। ग्राम हिंगड़ी अलॉट जिला रतलाम एमपी से जगदीश धाकड़, नायमा, श्रीमती अंजू बाई, श्रीमती रंजू बाई, युवराज सिंह और शिवांगी धाकड़ ने। सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा रामटेके, श्राव्या रामटेके, बालाजी चौक से ओटी श्रीवास, शेख आजाद पोपुरानी। फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद। गोविंदपुरा अहमदनगर से जुनैद मुजावर, सबीहा मुजावर, मिखाइल मुजावर, जैनब मुजावर ने। खुर्जा उत्तर प्रदेश से हमारे श्रोता साथी हैं तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन और अंकुश अरोड़ा। आइए सुनते हैं इन सभी श्रोताओं की पसंद पर ये गीत।

कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं फिल्म बेशरम का ये गीत, गाया है अभिजीत और अलका याग्निक ने। गीत के बोल लिखे हैं राजीव बर्नवाल ने और संगीत से सजाया है ललित पंडित ने। इस गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता साथी हैं उदयपुर से रमेश नचानी, भारती नचानी, विनीत नचानी और बाबू भाई, मेलाडीला बस्तर छत्तीसगढ़ से शिव कुमार देवदास, मोहित कुमार देवदास, ओमिन उत्तरा, प्रमीला यमुना, जमुना कुमारी, अंजू मंजू और कुमारी युवती देवदास, बुड़सरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साहू। जालना शहर से हमारे श्रोता मित्र हैं सोमनाथ जाधव, गीता जाधव, ओम जाधव, सुभाष जाधव, चंदन जाधव, एकनाथ और संगीता जाधव। नेहरू चौक पैठण से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती पूजा प्रसाद जाधव, सोनल जाधव, बेबी सिया। देवरी भाटापारा से एक

AR साहू, आकाश कमलेश, गन्नूलाल रजक और मुरली क्षत्रिय, परभणी महाराष्ट्र से रूपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश संघई, प्रीतेश संघई, बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक और स्वाति जायसवाल, गमहरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल और आर्य जायसवाल, मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर चौक हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार, रायगढ़ से रोहित जयलक्ष्मी। आइए सुनते हैं इन सभी श्रोताओं की पसंद पर ये गीत।

बेशरम फिल्म के इस गीत के साथ ही अब अपनी रेडियो साथी शक्ति को कार्यक्रम ईमेल की गूंज संपन्न करने की आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ईमेल की गूंज। मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलो हर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 2:15 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में दोपहर समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अमरनाथ जी यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में शाश्वत अध्याय बताया, श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने फ्रांस के निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। भारत फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन का ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता तेज की। भूकंप से लगभग 2600 लोगों की मौत, हजारों लोग अब भी लापता। गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे।
2: हजारों की तादाद में यात्री इस समय धार्मिक उत्साह के साथ पवित्र गुफा में भगवान शिव के आशीर्वाद लेने और शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा के दोनों रास्तों पर यात्रियों को पानी, भोजन और विश्राम स्थल उपलब्ध कराए गए हैं ताकि इस कठिन यात्रा के दौरान उनकी सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उत्साहित यात्रियों ने सुविधाओं और व्यवस्थाओं की सकारात्मक प्रशंसा की है।
3: बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, यहाँ पे आ सकते हैं, सभी आ सकते हैं।
4: जो प्रशासन ने इंतजाम किया है बखूबी, बहुत अच्छा।
2: इस बीच आज सुबह जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी करके यात्रियों से निवेदन किया है कि वो केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा का आरंभ करें। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से नरेश बागशा।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि अमरनाथ यात्रा सबसे प्राचीन तीर्थ यात्राओं में से एक है। ये देश की आध्यात्मिक विरासत और उसकी आस्था को रेखांकित करती है। तीर्थयात्रियों को लिखे एक पत्र में श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक शाश्वत अध्याय बताया। प्रधानमंत्री ने श्रद्धालुओं से यात्रा के दौरान 5 संकल्प लेने का भी आग्रह किया। इनमें पूरी यात्रा के दौरान स्वच्छता बनाए रखना, सभी सुरक्षा और प्रशासनिक दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना, वोकल फॉर लोकल पहल के तहत अपने यात्रा खर्च का कम से कम 10% स्थानीय उत्पादों पर खर्च करके स्थानीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करने, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को बढ़ावा देने के लिए रक्षाबंधन पर भाई बहन को एक पौधा उपहार में देना, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन और विकसित भारत के दृष्टिकोण में योगदान देकर राष्ट्र प्रथम की भावना को आगे बढ़ाना शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि केंद्र सरकार ने पूरे मार्ग पर उच्च स्तरीय व्यवस्था की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
5: श्रीमती सीतारमन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस एआई के क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार हैं। उन्होंने आधार, यूपीआई, डिजीलॉकर और इंडिया स्टॉक जैसे डिजिटल सेवाओं का भी उल्लेख किया और कहा कि दुनिया के लगभग आधे रियल टाइम डिजिटल भुगतान भारत में होते हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत का इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर

0: वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है और इसमें निवेश तथा वित्तीय सेवाओं के नए अवसर उपलब्ध हैं। समाचार कक्ष से अमीषा।
1: भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि दक्षिण अमरीकी देश में भारत के मानवीय राहत प्रयासों को जनता से इसकी सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति जल्से रोड्रिगेज ने 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। 24 जून को देश में आए जबरदस्त भूकंप में मरने वालों की संख्या लगभग 2,595 हो गई है, जबकि 12,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और 189 इमारतें नष्ट हो गई हैं। पिछले सप्ताह कैराकस के उत्तर में 7.5 और 7.2 तीव्रता के दो जबरदस्त भूकंप आए, जिनसे भारी तबाही हुई। अधिकारियों ने बताया कि हजारों लोग लापता हैं और बचाव तथा राहत कार्य जारी है। भारत ने वेनेजुएला के अधिकारियों से नाविक राकेश चौहान के शव के साथ छेड़छाड़ और अंग निकाले जाने की घटना की गहन जांच की मांग की है। कैराकस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि घटना के सामने आने के बाद से ही दूतावास संबंधित स्थानीय अधिकारियों के सामने इस मामले को उठा रहा है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची भारत की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट गई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस यात्रा से भारत और जापान के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत हुई है। दोनों देशों ने साझा विकास, समृद्धि तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। जापान कैबिनेट के जनसंपर्क अधिकारी ने आज भारतीय पारंपरिक अभिवादन नमस्ते के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने भारत यात्रा के दौरान हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में जापान के अधिकारी ने बताया कि दोनों हथेलियों को जोड़कर किया जाने वाला ये अभिवादन अंजलि मुद्रा कहलाता है और ये सम्मान, विनम्रता तथा आदर का प्रतीक है। जापान के कई समाचार पत्रों और मीडिया संस्थानों ने नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन को प्रकाशित किया है। इनमें दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक सहित कई क्षेत्रों में बेहतर होते संबंधों को रेखांकित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची द्वारा शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा के बाद इन्हें मजबूत करने के लिए किए गए समझौतों के बाद जापान के मीडिया ने इन्हें प्रकाशित किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोलकाता के न्यू टाउन कन्वेंशन सेंटर में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने कहा कि बंगाल को वर्ष 2047 तक विकसित बनाने के लिए काम किया जा रहा है।
2: बंगाल की विरासत जो गौरवपूर्ण है, उस विरासत को भी पुनर्जीवित करते हुए आधुनिकता के समय नए युग की तरह 2047 तक विकसित भारत के सपनों को साकार करने के लिए बंगाल को विकसित बनाने का, बंगाल को सांस्कृतिक पुनर्जागरण, बंगाल को उद्योग व्यापार की दृष्टि से बेहतर बनाना, समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए आप सब मिलकर काम करेंगे।
1: श्री बिरला को उद्घाटन समारोह से पहले गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1947 में बंगाल की तत्कालीन विधान परिषद में वर्तमान पश्चिम बंगाल को भारत में शामिल करने के प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। युवा मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग जगत के हितधारकों को माय भारत के इकोसिस्टम से परिचित कराना और उद्योग संघों, कॉरपोरेट तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना था। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश के युवाओं की प्रमुख भूमिका है। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि सरकार युवाओं के लिए चल रही

0: कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने पर काम कर रही है।
1: इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ माय भारत पोर्टल के और यूथ मिनिस्ट्री के बारे में यहाँ पे मीटिंग आज हमने आयोजित की है। माय भारत प्लेटफॉर्म के साथ कैसे अलाइन कर पाए कि जिसके माध्यम से और विजिबिलिटी हमारी बढ़े और ज्यादा से ज्यादा हम डिस्ट्रिक्ट तक, विलेजेस तक ये सभी प्रोग्राम इनको लेके जाए कि जिसका ज्यादा से ज्यादा फायदा हमारे देश के युवाओं को होगा और एक अच्छा आउटपुट उसके माध्यम से हमें मिलेगा और नेशन बिल्डिंग के लिए ये हमारे यूथ आगे बढ़ के काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात दौरे पर रहेंगे। राजस्थान में वे जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को सालाना 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री राजस्थान के बालोतरा में 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 3 अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। नियुक्त किए गए अतिरिक्त न्यायाधीशों में सुनीता गंधम, अल्लापति गिरिधर और पुरुषोत्तम कुमार चिंतालापुड़ी शामिल हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार ऐप के माध्यम से आधार में ईमेल सीधे अपडेट करने की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई है। ये सुविधा 1 जुलाई से 6 महीने की अवधि के लिए लागू है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान और बिजली गिरने की भी संभावना व्यक्त की है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी तेज बारिश जारी रही। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बृहन्मुंबई नगर निगम ने अपनी आपातकालीन टीमों को अलर्ट पर रखा है।
2: सक्रिय मानसून को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन दल NDRF की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में राहत एवं बचाव दलों की अग्रिम तैनात की है। बाढ़ बचाव उपकरणों और प्रशिक्षित कर्मियों से बनी ये टीमें मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, सांगली, सतारा, धाराशिव, नागपुर तथा अन्य संवेदनशील स्थानों पर तैनात की गई है ताकि वर्षा से जुड़ी किसी भी आपत्ति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: पंजाब और हरियाणा के अधिकांश हिस्सों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में 5 से 8 जुलाई तक तेज बारिश, बिजली और गरज के साथ तूफान की संभावना है। इसे देखते हुए चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं सरफिरोजी।
3: फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। एक अन्य मैच में कैलिफोर्निया लॉस एंजेलिस स्टेडियम में खेले गए राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। आज अर्लिंगटन में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 11:30 बजे से खेला जाएगा। बेल्जियम, अमरीका और इंग्लैंड भी कल राउंड ऑफ 16 में पहुंच गए। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गाल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट मैच 23 अगस्त से कोलंबो में होगा। ये श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.4% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 291 अंक बढ़कर 77,793 पर, जबकि निफ्टी 105 अंक की वृद्धि के साथ 24,281 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अमरनाथ जी यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में शाश्वत अध्याय बताया। श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने फ्रांस के निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। भारत फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन का ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत

0: अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए मानवीय सहायता तेज की। भूकंप से लगभग 2600 लोगों की मौत, हजारों लोग अब भी लापता। गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जा रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा।

अभिजीत सावंत की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे ये गीत, बोल थे समीर के, संगीत था बिट्टू का। कार्यक्रम के अगले क्रम में आइए सुनते हैं फाल्गुनी पाठक का गाया ये गीत। गीतकार हैं ललित सेन और संगीतक निर्देशक हैं महबूब।

कार्यक्रम की अगली कड़ी में लीजिए सुनिए केके की आवाज में ये गीत। गीतकार हैं विपिन मिश्रा और संगीत निर्देशक भी हैं विपिन मिश्रा।

0: सोनू निगम के गाए इस गीत के बाद कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं कैलाश खेर की आवाज में ये गीत। लिखा है कैलाश खेर ने और संगीत निर्देशन भी है कैलाश खेर का।
1: प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी

कैलाश खेर के गाए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम गीत गंधा यहीं संपन्न हुआ। मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 3 बजने वाले हैं। आइए अब हम आपको आज के शेष कार्यक्रमों से अवगत करा दें। शाम 5 बजे रोज ही की तरह आप सुन सकेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट और 5:05 पर होगा भजन संध्या। युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी हम लेकर हाजिर होंगे शाम 5:30 पर और कार्यक्रम विचार बिंदु का पुनः प्रसारण आप सुनिएगा शाम 6:05 पर। 6:20 पर हम आपको सुनवाएंगे लोकगीतों का कार्यक्रम गोधूली माधुरी आप सुनिएगा शाम 6:30 पर और रजनीगंधा होगा शाम 7:05 पर। ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम चौपाल हम लेकर आएंगे शाम 7:20 पर

रात्रि 8 बजे आप सुनिएगा सोशल मीडिया आधारित फरमाइशी कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश। फिल्म संगीत आप सुनिएगा कार्यक्रम चित्रपट संगीत में 9:15 पर और 9:30 पर कार्यक्रम ईमेल की गूंज में। रात्रि 10 बजे हम आपको सुनवाएंगे शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम राग प्रधान और फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन भावन आप सुन सकेंगे रात्रि 10:30 पर। ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। इसी के साथ मीडियम वेव पर हमारी ये सभा यहीं समाप्त होती है। इस दौरान एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर दिल्ली के एफएम बैंड चैनल का अनुप्रसारण जारी रहेगा। मीडियम वेव पर हम अपनी सांध्यकालीन सभा का प्रसारण लेकर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे शाम 4:58 पर। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। अब हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।

0: हाथी बने गजराज
1: नमस्कार स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 58 है। ये खोड़ केसर छतौली इंजानी बरपटिया पुतकी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर में हाथियों की कुल संख्या 13 है। ये बंसीपुर बगड़ा कोरंधा दुर्ती सोनगरा धरहोरा चंदौरा सरहरी करंजवार हरिहरपुर परमेश्वरपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के वाड्रफनगर राजपुर और रामानुजगंज में हाथियों की कुल संख्या 11 है। ये पिंडारी कोटराही कोल्हुआ भगवानपुर कुंदीकला जामदोहर बदौली रेवतपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के लुंड्रा उदयपुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 6 है। ये पड़ौली अमड़ी किशुनपुर मसगाड असकला दोरना जरहाडी सत्तीमुड़ा लक्ष्मणगढ़ ससकालो तेंदुटिकरा मानपुर घटगांव दातीढा बाबा पहाड़ बरडाण कंडराजा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी पत्थलगांव कांसाबेल और बगीचा में हाथियों की कुल संख्या 32 है। ये कुंजारा लोटा पानी श्री टोली मयूर चूंदी बोडालता खड़ा माचा हरदी झरिया राजा आमा महेशपुर उदरा झरिया साजा पानी सोनार पहरी बड़नी झरिया

0: सोनगिरसा, बीजाघाट, सारू ढाप के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धरमजयगढ़ वन मंडल की छाल, धरमजयगढ़, बोरो, बाकारुमा, लेलुंगा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 108 है। ये कुड़ेकेला, पुरुंगा, छाल, बोजिया, औरानारा, बेहरामार, लोटान, कोयलार, सागरपुर, ढोढ़ा गांव, केदा टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वन मंडल के कुदमुरा में हाथियों की कुल संख्या 11 है। ये गीत कुमारी, लबेद, गुरमा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वन मंडल के केंदई, जडगा और एतमा नगर में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये लालपुर, कोयलार, गडरा, परला, चोटिया, कापानवापारा, घुचापुर, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, मड़ई, कठमोरगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 21 है। ये झिंगोल, तराईमाल, नागदरहा, पंडरीपानी, भैंसगढ़ी, बड़गांव के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के कोठारी और रवान में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये मोहदा, सहिया भाटा, बरबसपुर, फुरफुंदी, गुड़ागढ़, ताल दादर, खुदमुड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 9 और गरियाबंद वन मंडल के मैनपुर में हाथियों की कुल संख्या 15 है। ये ओर, ताराझर, डडई पानी, कोलापारा, बुडार, जिडार, छिंदौला, लूठापारा, चालकीपारा, फरसरा, दबनई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमार हाथी हमार गोट।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। मीडियम वेव और एफएमएंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 5:06 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम भजन संध्या। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अनुराधा पौडवाल और हरिहरन के स्वर में देव कोहली की लिखी इस रचना के साथ। संगीत है दिलीप सेन और समीर सेन का।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना अनुराधा पौडवाल के स्वर में ये भजन। कार्यक्रम भजन संध्या में अब सुनिए अनूप जलोटा के स्वर में ये पारंपरिक भजन। संगीत है अनूप जलोटा का।
1: भजन बिना तूने हीरा जन्म गवाया, ईश्वर के भजन के बिना, ईश्वर की आराधना के बिना हम जो कार्य करते हैं उसमें वो सुगंध पैदा नहीं हो पाती, वो जादू नहीं आता है जो लोगों को सम्मोहित करता है। इसीलिए कहते हैं कि भजले राधे कृष्ण गोविंद मुरार, उनको भजले और जो कुछ भी करेगा उसमें एक अद्भुत सुगंध आ जाएगी, एक अजीब सा जादू पैदा हो जाएगा और मनुष्य तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे, तुम्हारे काम को पसंद करेंगे। आइए इसी भावना को इस भजन में सुनते हैं।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम भजन संध्या आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से। कार्यक्रम में अब सुनिए अनुराधा पौडवाल के स्वर में ये भजन।

कार्यक्रम भजन संध्या के अंत में सुनिए नीलम कटारिया के स्वर में उन्हीं की ये रचना, संगीत है नीलम कटारिया का।

नीलम कटारे के गाई इस भजन के साथ ही कार्यक्रम भजन संध्या आज यहीं तक। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 5:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।

0: रिश्ते सिर्फ मिलने से नहीं, बात करने से भी बनते हैं। आइए कुछ बातें करें, कुछ यादें साझा करें और कुछ मुस्कान बांटें। मैं हूं चंचला यादव और आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा अभिवादन, नमस्कार। दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं आज के शुक्रवार स्पेशल क्रम हेलो फ्रेंड्स की ओर।
1: हेलो फ्रेंड।
2: हेलो फ्रेंड।
1: हेलो फ्रेंड्स।
0: स्वागत है आप सभी का क्रम हेलो फ्रेंड्स में। मुस्कुराइए क्योंकि शुरू हो चुकी है दोस्ती, बातों और ढेर सारी खुशियों की महफिल। हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए इंतजार की घड़ियां खत्म करते हैं और मिलते हैं अपने पहले श्रोता से। देखते हैं आज की बातचीत कहां तक पहुंचती है।
3: हेलो।
0: हेलो फ्रेंड।
3: हाँ जी, नमस्ते।
0: जी नमस्ते जी, कौन बात कर रहे हैं?
3: योगेश जांगड़े, सिरवा बांधा में कराते।
0: जी योगेश जी, कैसे हैं?
3: बढ़िया हैं, अच्छे हैं।
0: और क्या चल रहा है अभी बारिश के मौसम में, घर का हाल चाल कैसा है?
3: आज ही तो हुआ है बारिश, पहले हुआ ही नहीं था।
0: अच्छा, इससे पहले नहीं हुआ था
3: जी।

0: मौसम में घर का हाल चाल कैसा है?
1: आज ही तो हुआ है बारिश, पहले हुआ ही नहीं था।
0: अच्छा, इससे पहले नहीं हुआ था
1: जी।
0: तो कौन सा गीत आप लेकर आए हैं?
1: आज आप सुनवा देंगे सावन को आने दो का टाइटल सॉन्ग।
0: आइए सुनते हैं आपकी पसंद का प्यारा सा गीत।
1: धन्यवाद।

0: दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले कॉल की ओर। हेलो फ्रेंड।
1: हेलो, नमस्कार मैम।
0: जी नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
1: जी हम बेमा जी असम से बिमोल बसंत बोल रहे हैं।
0: जी जी, कैसे हैं आप?
1: जी मैम हम ठीक है, मैं दुकान में है, दुकान से फोन कर रहा हूँ मैम।
0: अच्छा, बारिश हो रही है?
1: नहीं मैम आज बहुत गर्मी है, पूरा डूब हो रहा है आम का, इधर बारिश नहीं आ रही, दो तीन दिन हो गया।
0: अच्छा अच्छा, इधर तो काफी तेज बारिश हुई है अभी।
1: उधर आप लोग का उधर बारिश हो रहा है?
0: हाँ बारिश तो हो रही है। पहली बार किए हैं आप फोन?
1: जी मैम आज पहली बार फोन कर रहा हूँ।
0: अच्छा पहली बार किए हैं?
1: जी जी।
0: चलिए बहुत बहुत बधाई आपको।
1: हमको सुनना था मैम अनारी फिल्म का जो भी गाना सुना था हो जाएगा, ये गाना हम दूसरे के लिए डिलीट करना चाहता हूँ मैम।
0: जी बताइए।
1: जी हम लोग का है, अमल कुंतरे है, रोमस पत्र है।

0: रमेश प्रजापति है, राकेश है, गोल्डी है, धर्मवीर है और शिवा लुहार है, जितना सतह है सबके लिए डेलीगेट करना चाहता हूँ और आपको भी मिलो।
1: जी आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर ये प्यारा सा गीत।
0: जी धन्यवाद मैम।
1: जी

0: साथियों, दोस्ती की महफिल अब और भी रंगीन होने वाली है। देखते हैं अगली घंटी हमें किस प्यारे श्रोता से मिलवाती है।
1: हेलो
0: हेलो,
1: नमस्ते मैम जी, चंचला मैम जी नमस्ते।
0: जी नमस्ते, कौन बात कर रहे हैं?
1: जी मैं सत्यम क्लब फुल कोना से अरविंद कुमार यादव बोल रहा हूँ मैम।
0: जी अरविंद जी, कैसे हैं आप?
1: मैं तो बहुत अच्छा मैम जी, आप लोग कैसे हैं?
0: हम लोग भी सब बढ़िया हैं। मौसम कैसा है आपके यहाँ?
1: मैम जी इधर तो अभी रोज दो तीन तीन चार दिन हो गया, अब बारिश का मौसम हमेशा बनाए रहता है मैम जी। अभी बारिश मत होने से वाली है, बना हुआ है मौसम, समय भी आ गया है बारिश वरिश मत होने, खेती बाड़ी के टाइम मैम जी।
0: हाँ सही कहा आपने, खेती करने की तैयारी चल रही है।
1: जी जी जी, मतलब खेती बाड़ी का काम चालू है मैम जी, और इथरा वरा कराई चालू है, बाजू बुनाई का, मक्का उक्का सब। आज आपसे बात हो रहा है मैम जी, बहुत दिनों बाद बहुत अच्छा मतलब लग रहा है मैम।
0: चलिए तो बहुत अच्छी बात है, कौन सा गीत लेकर आए हैं आज?
1: इस फिल्म का नाम है हनीमून, उदित नारायण जी की आवाज में बोल है, तू नीलों की रानी मैं प्यार का सपना।
0: आइए सुनते हैं आपकी पसंद का प्यारा सा गीत।
1: धन्यवाद मैम जी।

0: मुस्कुराते रहिए, जुड़े रहिए, क्योंकि अब वक्त है एक और दिलचस्प बातचीत का। चलिए सीधे चलते हैं अगले श्रोता के पास।
1: हेलो फ्रेंड्स।
0: जी हेलो, नमस्ते।
1: नमस्कार, मैं मुरैना मध्य प्रदेश से अरविलास सिंह तोमर बोल रहा हूँ।
0: जी कैसे हैं आप?
1: आपकी दुआ ईश्वर के पास है, बहुत अच्छी तरह से।
0: जी जी, तो हमारे यहाँ श्रोताओं को कुछ संदेश बताइए।
1: संदेश बस, बारिश का मौसम शुरू होने वाला, श्रोताओं से सभी से अपील है कि एक वृक्ष अवश्य लगाएं, उसकी परवरिश करें। और यही कहना चाहूंगा कि बस अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें, जब मौसम परिवर्तन होता है तो स्वास्थ्य पे असर पड़ता है, उसका भी ध्यान रखें।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने। और कोई गीत जो आप सुनना चाहें?
1: फिल्म का नाम है सौदागर।
0: जी,
1: इलू इलू वाला गीत सुना देना।
0: जी आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये खूबसूरत सा गीत।

0: कॉल की। आइए इस खूबसूरत बातचीत का समापन करते हैं अपने अगले दोस्त के साथ।
1: हेलो
0: हेलो
1: जी, नमस्कार दीदी।
0: जी नमस्कार,
1: मैं सोनीतपुर असम से बात कर रहा हूँ, अमल।
0: जी अमल जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे हो आप, पहली बार आपसे संपर्क हो पा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है।
0: चलिए तो बहुत अच्छी बात है, आपने पहली बार कॉल किया है क्या?
1: जी पहली बार कॉल लगा है आज।
0: जी चलिए आपको बहुत बहुत बधाई।
1: थैंक यू
0: जी,
1: आपको भी मेरे कॉल को शामिल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। यहाँ का मौसम कैसे है दीदी, बताइए थोड़ा।
0: यहाँ का मौसम बारिश वाला है, अभी बारिश हो रही है
1: जी। हमारे यहाँ पर तो बहुत गर्मी दिखाई दे रही है, 40 डिग्री सेल्सियस चल रहा है आज,
0: गर्मी है
1: जी। और मैं एक गाने के लिए कॉल किया था, एक गाना है, एक फरमाइश है मेरा हिंदी गानों का।
0: जी जी बताइए।
1: दुल्हन हम ले जाएंगे मूवी से एक गाना सुना दीजिए, प्यार दिलों का मेला।
0: जी आइए सुनते हैं आपकी पसंद पर खूबसूरत सा गीत।

0: दोस्तों आप सबके प्यार और साथ के लिए दिल से धन्यवाद। फिर होगी मुलाकात हेलो फ्रेंड्स के अगले अंक में। क्रम हेलो फ्रेंड्स में हमसे बात करने के लिए आप हमें हर गुरुवार के दिन दोपहर 3:30 से 4 तक फोन कर सकते हैं। क्रम हेलो फ्रेंड्स में फोन करने के लिए हमारा संपर्क नंबर है 2319917। हमारा दूसरा संपर्क नंबर है 2319918। मोबाइल या अंबिकापुर के बाहर से फोन करने वाले श्रोता साथी फोन करने के लिए STD कोड 07774 जरूर लगाएं। इसी के साथ आज का क्रम हेलो फ्रेंड्स बस यहीं तक।
1: हेलो फ्रेंड।
2: हेलो फ्रेंड।
1: हेलो फ्रेंड्स।
0: दोस्तों अब वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का। मुस्कुराइए और अपना ख्याल रखिए और आज की युववाणी से अपनी दोस्त चंचला यादव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: अभी युवा श्रोताओं के लिए युववाणी कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6 बजने को है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
2: India's position on the Indus Waters Treaty.
3: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पहले की तरह स्पष्ट है। पाकिस्तान के लगातार सीमा पार आतंकवाद को मदद देने के जवाब में सिंधु जल संधि को रोक दिया गया था। पाकिस्तान को विश्वसनीय तरीके से सीमा पार आतंकवाद को मदद देना बंद करना पड़ेगा।
1: तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं और समय समय पर उनकी समीक्षा की जाती है। वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने आज नई दिल्ली में बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि मलक्का जल डबरू मध्य की समुद्री सुरक्षा और स्थिरता में इंडोनेशिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी।

0: रक्षा मंत्रालय के अनुसार सेना के लिए आकाश तरंग इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, पैदल सेना के लिए टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली, टैंकों के लिए सक्रिय सुरक्षा प्रणाली और जेट आधारित कामिकाजे ड्रोन प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। नौसेना के लिए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, जहाज से संचालित मानव रहित हवाई प्रणाली और इलेक्ट्रिक प्रणोदन प्रणाली के परीक्षण के लिए भूमि आधारित सुविधा स्थापित करने को स्वीकृति दी गई है। वायुसेना के लिए अधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने वाले फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म और अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। 16वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 4,35,236 करोड़ रुपए की अनुशंसा की है। ये 15वें वित्त आयोग की तुलना में लगभग 84% अधिक है। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि 16वें वित्त आयोग ने पंचायतों के लिए 80% मूल अनुदान और 20% प्रदर्शन आधारित अनुदान प्रस्तावित किए हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की समस्याओं के आकलन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश दिया है। श्री चौहान ने कहा कि तोतापुरी आम उत्पादकों की आय और आजीविका की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार ने बैट, बीएमएस, इपोक आई आयन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने की आशंका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डे से होगा। इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश किया। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विचार बिंदु का पुनः प्रसारण। विषय है निरंतरता। संकलन एवं वाचन स्वर है विक्की गुप्ता के।
2: सागर भरता है और कदम कदम से मंजिल मिलती है। यह कहावत हमें जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संदेश देती है कि महान उपलब्धियां एक ही दिन में पर्याप्त नहीं होती, बल्कि निरंतर किए गए छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम होती हैं। मनुष्य के जीवन में अनेक गुण होते हैं, परंतु यदि कोई एक गुण उसे साधारण से असाधारण बना सकता है तो वह है निरंतरता। निरंतरता का अर्थ है बिना रुके, बिना थके और बिना हारे अपने लक्ष्य की दिशा में लगातार आगे बढ़ते रहना। यही गुण व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करता है, उसकी प्रतिभा को निखारता है और उसे सफलता के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाता है। आज के समय में अधिकांश लोग सफलता तो चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आवश्यक धैर्य, अनुशासन और निरंतर परिश्रम से बचना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि कम समय में अधिक सफलता मिल जाए। जब परिणाम तुरंत नहीं मिलते तो वे निराश होकर अपने प्रयास छोड़ देते हैं, जबकि प्रकृति का नियम है कि हर महान कार्य समय और निरंतर प्रयास की मांग करता है। बीज बोने के तुरंत बाद वृक्ष नहीं बनता, बल्कि उसे मिट्टी, जल, धूप और वर्षों की निरंतर वृद्धि की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार मनुष्य का व्यक्तित्व भी लगातार सीखने, मेहनत करने और संघर्ष करने से विकसित होता है। निरंतरता केवल मेहनत करने का नाम नहीं है, बल्कि हर परिस्थिति में अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित रहने का नाम है। जीवन में अनेक कठिनाइयाँ आती हैं, कभी असफलता मिलती है, कभी निराशा घेर लेती है और कभी परिस्थितियाँ हमारे विरुद्ध दिखाई देती हैं। ऐसे समय में जो व्यक्ति अपने संकल्प को नहीं छोड़

0: और लगातार प्रयास करता रहता है वही अंततः सफलता का अधिकारी बनता है। असफलता किसी भी यात्रा का अंत नहीं होती, बल्कि वह सफलता की ओर बढ़ने का एक महत्वपूर्ण पड़ाव होती है। निरंतर प्रयास करने वाला व्यक्ति हर असफलता से सीखता है और पहले से अधिक मजबूत होकर आगे बढ़ता है। प्रकृति हमें निरंतरता का सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत करती है। सूर्य प्रतिदिन बिना किसी अवकाश के उदय होकर संसार को प्रकाश देता है। चंद्रमा अपने निश्चित समय पर अपनी कला बदलता है। नदियां चट्टानों से टकराने के बाद भी अपना मार्ग नहीं बदलती, बल्कि निरंतर बहते हुए अंततः समुद्र तक पहुँच जाती हैं। ऋतुओं का परिवर्तन भी एक निश्चित क्रम में होता है। यदि प्रकृति अपने नियमों में निरंतर ना रहे तो संपूर्ण सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए प्रकृति का प्रत्येक दृश्य हमें यह प्रेरणा देता है कि जीवन में सफलता का मार्ग निरंतरता से होकर भी गुजरता है। शिक्षा के क्षेत्र में निरंतरता का महत्व अत्यंत अधिक है। कोई भी विद्यार्थी केवल परीक्षा के दिनों में पढ़कर उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त नहीं कर सकता। प्रतिदिन नियमित अध्ययन, समय का सदुपयोग और लगातार अभ्यास ही उसे ज्ञानवान बनाते हैं। इसी प्रकार खेलों में खिलाड़ी वर्षों तक कठिन अभ्यास करते हैं, तब जाकर वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश का नाम रोशन करते हैं। संगीत, नृत्य, साहित्य, विज्ञान, चिकित्सा, प्रशासन, व्यवसाय अथवा किसी भी क्षेत्र में सफलता का आधार निरंतर अभ्यास और अनुशासित जीवन ही होता है। महान वैज्ञानिक, साहित्यकार, खिलाड़ी और समाज सुधारकों का जीवन इस सत्य का परिणाम है। उन्होंने अनेक कठिनाइयों का सामना किया, अनेक बार असफल हुए, आलोचनाएं भी झेली, लेकिन अपने लक्ष्य से कभी विचलित नहीं हुए। उनकी सफलता का रहस्य कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि वर्षों तक किया गया सतत परिश्रम और अटूट आत्मविश्वास था। यही कारण है कि आज उनका जीवन पूरी मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। निरंतरता केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज और राष्ट्र के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निरंतर पालन करता है, तब एक सशक्त और विकसित राष्ट्र का निर्माण होता है। शिक्षक यदि नियमित रूप से विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें, किसान निरंतर परिश्रम करके अन्न उत्पादन करें, सैनिक हर राष्ट्र की सुरक्षा के लिए तत्पर रहे, चिकित्सक सेवा भावना से कार्य करें।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विचार बिंदु। विषय था निरंतरता, संकलन एवं वाचन स्वर थे विक्की गुप्ता के। मीडियम वेव और FM बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:10 होने को है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक छत्तीसगढ़ी समाचार, जिसे हम आकाशवाणी
2: रायपुर ही छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग किरण वर्मा के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। रायपुर में आज ले 2 दिन के राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन शुरू होइस। सहकारिता विभाग डहार ले आज राजधानी के तेलीबांधा मरीन ड्राइव में सहकार संकल्प दौड़ के आयोजन करेगीस। राज्य सरकार ह खंड और अल्प वर्षा के संभावना ला देखत किसान मन ले धान के रोपा पद्धति के बजाय सीधा बोआई यानी DSR तकनीक अपनाए के अपील करीन है। और नवा रायपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM में काली 4 जुलाई ले चिंतन शिविर के आयोजन करे जाही। अब समाचार विस्तार ले। रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में सहकारिता मंत्रालय के 5 बच्छर पूरा होए के मौका में आज ले 2 दिन के राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन शुरू होइस। शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुईन। ए मौका में उमन कहिन के सहकारिता किसान के आमदनी ला बढ़ाए और ग्रामीण अर्थव्यवस्था ला मजबूत करे के सबले प्रभावी माध्यम बनत है। उमन कहिन के सहकारिता के जरिया विकसित छत्तीसगढ़ के मजबूत नींव तैयार होही। मुख्यमंत्री है बताइन कि प्रदेश में अब तक 1300 ले ज़्यादा नवा सहकारी समिति मन के गठन करे जा चुके हैं। सहकारिता के माध्यम ले पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, वनोपज, मत्स्य पालन और ग्रामीण उद्यमिता ला घलो बढ़ावा दे जाते। मुख्यमंत्री है ए मौका में उत्कृष्ट समिति मन ला सहकार प्रेरणा पुरस्कार दिन संग्रह संग्रहण पच्छर 2023 के 7 लाख ले ज़्यादा तेंदुपत्ता संग्राहक मन पर 100 करोड़ रुपया ले ज़्यादा के पारिश्रमिक राशि के वितरण के शुभारंभ करें। एकर अलावा मुख्यमंत्री है कार्यक्रम में सहकारिता विभाग के ऑनलाइन पोर्टल के शुभारंभ घलो करें। सहकारिता विभाग डहार ले आज राजधानी रायपुर के तेलीबांधा मरीन ड्राइव में सहकार संकल्प दौड़ के आयोजन करेगीस। कार्यक्रम के शुभारंभ सहकारिता मंत्री केदार कश्यप हरा झंडी दिखा के करें। ए दौड़ में युवा, विद्यार्थी, किसान, सहकारी संस्था के सदस्य, महिला समूह और आने आने वर्ग के लोगन मन

0: हिस्सा लें। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज बिहनिया जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल रद्दा मन ले शुरू हो गए है। पूरा देश ले लाखों श्रद्धालु 57 दिन के तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करें। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह श्रद्धालु मन ला शुभकामना दिन है। राज्य सरकार है खंड और अल्प वर्षा के संभावना ला देखत किसान मन ले धान के रोपा पद्धति के बजाय सीधा बुआई यानी DSR तकनीक अपनाए के अपील करीन है। सरकार के अनुसार DSR तकनीक ले लगभग 20% पानी के बचत होते, प्रति एकड़ करीबन 5,000 रुपया तक के लागत कम आते और फसल 12 से 15 दिन पहले तैयार हो जाते। सरकार है धान के जगह में अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, तिली, रामतिल और सोयाबीन जैसे दलहन और तिलहन फसल के खेती अपनाए ऊपर जोर दिन है। किसान मन ले बीज उपचार, संतुलित उर्वरक उपयोग, वर्षा जल संरक्षण और ड्रिप के संग्रह, स्प्रिंकलर जैसे सूक्ष्म सिंचाई तकनीक ल अपनाए बर घलो कहे गए है। सुनैया मल्ला बता दन के प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषय ऊपर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में इधरी मानसून ला देखत किसान मल्ला खेती ले जुड़े सलाह ऊपर कृषि मौसम विज्ञान विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर गोपी कृष्ण दास ले गए भेंटवार्ता के प्रसारण करे जाहि। एक प्रसारण काली 4 जुलाई के आकाशवाणी केंद्र रायपुर डहाले FM और प्राइमरी चैनल में बिहानिया 9 बजे ले करे जाहि। इला छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के जम्मू केंद्र रिले करही। नवा रायपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM में काली 4 जुलाई ले चिंतन शिविर के आयोजन करे जाही। 2 दिन के ए शिविर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के संग्रह राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य शामिल हुई। ए शिविर के उद्देश्य बदलत तकनीकी परिवेश के अनुरूप शासन ला और ज्यादा प्रभावी बनाना है। शिविर में सरकार के अब तक के उपलब्धि, चुनौती और भविष्य के प्राथमिकता के समीक्षा करे जाही। राज्यपाल रमेन डेका ले आज लोकभवन में डॉक्टर मणिभद्र महाराज के अगुवाई में संचालित सर्वोदय शांति पदयात्रा ले जुड़े संत मन ले सौजन्य भेंट करें। ए मौका में राज्यपाल है कहिन कि संत समाज के विचार और जीवन मूल्य शांति सद्भाव के संग्रह मानवीय मूल्य ला मजबूत बनाए में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते। उमन सर्वोदय शांति पदयात्रा ला सामाजिक समरसता, अहिंसा और विश्व बंधुत्व के प्रेरक अभियान बताएं। बता दन कि ये पदयात्रा नेपाल ले शुरू होके लगभग 1600 किलोमीटर की दूरी तय करत छत्तीसगढ़ पहुंचे है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बढ़वो बांचे समाचार कोती। महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े है बस्तर संभाग में विभाग के योजना मन के प्रचार प्रसार गोंडी और हल्बी भाषा में करे के निर्देश दिन है। जखले दूर दराज और जनजातीय क्षेत्र के पात्र हितग्राही मन तक योजना के जानकारी आसानी ले पहुंच सके। मंत्रालय में विभागीय योजना मन के समीक्षा बैठक में उमन अधिकारी मनला योजना के फायदा आखिरी मनखे तक पहुंचाए के निर्देश दिन। उमन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका पर्यवेक्षक के खाली पद मन ऊपर जल्दी भर्ती, आंगनबाड़ी केंद्र में बुनियादी सुविधा के सुदृढ़ीकरण और पोषण पुनर्वास केंद्र मन में लयिका और महतारी मन ला बेहतर सुविधा उपलब्ध कराए ऊपर जोर दिन। संग्रह दिव्यांगजन और सियान मन ले जुड़े योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और नियमित शिविर के आयोजन के निर्देश घलो दिन। छत्तीसगढ़ योग आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष संजय अग्रवाल है पदभार ग्रहण करीन है। ए मौका में रखे गए अभिनंदन समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईन। ए मौका में उमन कहिन कि संजय अग्रवाल के अनुभव के फायदा प्रदेशवासी मन ला मिलही। योग और ज्यादा सर्वव्यापी होही, लोगन अपन दिनचर्या में योग ला शामिल करही। प्रदेश में गाज गिरे के अलग अलग घटना में 4 मनखे के मौत हो गए है। बलरामपुर जिला के राजपुर थाना क्षेत्र के पतरापारा गांव में गाज गिरे ले माँ बेटी के मौत हो गए। पुलिस के अनुसार ये दोनों खेत में काम करत रहीन, यही दौरान तेज बरसा शुरू होए ले दोनों एक ठिन रुक के नीचे खड़ा हो गिन, तभी गाज गिरे ले उखर मौकाच में मौत हो गई।

उन्हें सक्ती जिला के डबरा थाना क्षेत्र के बसंतपुर गांव में आज गाज गिरे ले एक दंपत्ति के मौत हो गई। पुलिस के अनुसार ये पति पत्नी खदान में मजदूरी करे बर गिरे हैं। यही दौरान तेज वर्षा के बीच गाज गिर गए, जेखर चपेट में आए ले दोनों मौकाच में मौत हो गए। पुलिस और प्रशासन ने नागरिक मन ले अपील करी है कि वर्षा और गरज चमक के दौरान खुला जगह और पेड़ के नीचे खड़ा होए ले बांचे और संग्रह सुरक्षित जगह मन में शरण लेके अपील करी है। रायपुर के वरिष्ठ पत्रकार सुखनंदन बंजारे के आज निधन हो गए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, सांसद संतोष पांडे और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव सुखनंदन बंजारे के निधन ऊपर गहरा दुख जताई है। ओमन सुखनंदन बंजारे के निधन ले पत्रकारिता जगत पर अपूर्णीय क्षति बताई। दुर्ग पुलिस बीमा पॉलिसी रिफंड के नाव में करीबन 1,60,00,000 रुपया के साइबर ठगी करैया अंतर्राज्यीय गिरोह के पर्दाफाश करे है। ये मामला में पुलिस दिल्ली ले 3 आरोपी मल्ला गिरफ्तार करे है। पुलिस के अनुसार आरोपी खुदला बीमा अधिकारी बता के बंद पड़े बीमा पॉलिसी के राशि लहुटाए के झांसा देत रहीन और अन्य अन्य बैंक खाता में रकम जमा करा के ठगी करत रहीन। आरोपी मन के कब्जा ले मोबाइल फोन, बैंक पासबुक, चेकबुक और सिम कार्ड बरामद करे गए है। और अब पेश है मौसम के हाल। मौसम विभाग अवैया 24 घंटा के दौरान मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में एक दो जगह में गरज चमक के संग भारी ले अति भारी वर्षा होए के संभावना जताए है। उन्हें एक दो जगह में गाज गिरे के चेतावनी दे गए है। प्रदेश के अधिकांश जगह मन में काली हल्का ले मध्यम वर्षा हो सकत है। आखिर में प्रमुख समाचार एक घंव फेर। रायपुर में आज ले 2 के राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन शुरू हुई। सहकारिता विभाग डहा ले आज राजधानी के तेलीबांधा मरीन ड्राइव में सहकार संकल्प दौड़ के आयोजन करेगी। राज्य सरकार है खंड और अल्प वर्षा के संभावना ला देखत किसान मन ले धान के रोपा पद्धति के बचाए सीधा बुआई यानी DSR तकनीक अपनाए के अपील करी है। और नवा रायपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM में काली 4 जुलाई ले चिंतन शिविर के आयोजन करे जाहि। एक रे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।

अभी हम प्रादेशिक छत्तीसगढ़ी समाचार आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:20 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम गोधूली। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं परमेश्वर प्रसाद राजवाड़े और साथियों की आवाजों में इस रमचर्चा कर्मा गीत के साथ।

कार्यक्रम गोधूली में अब सुनिए फूलचंद और साथियों की आवाजों में ये देवी भजन।

इस देवी भजन के साथ ही कार्यक्रम गुधुली आज यहीं तक। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मोहित चौहान और अलीशा चन्नी की आवाज़ में फिल्म क्रिश 3 का इस गीत के साथ। गीतकार हैं समीर अंजान और संगीतकार हैं राजेश रोशन।

कार्यक्रम माधुरी में अब सुनिए फिल्म सनम रे का ये गीत, अरिजीत सिंह और अनिरुद्ध भोला की आवाज़ में। गीतकार और संगीतकार हैं मिथुन।

कार्यक्रम माधुरी के अंत में सुनिए अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में फिल्म इश्क का ये गीत। गीतकार है राहत इंदौरी और संगीतकार है अनु मलिक।

अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में गाए इसी गीत के साथ कार्यक्रम माधुरी आज यहीं तक। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:45 होने को है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं।

प्रायोजित कार्यक्रम उडान अभी आप सब आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाल केंद्र है। 6:45 हुए हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
3: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
2: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
3: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
2: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
3: क्यों?
2: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
4: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।

0: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
1: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
0: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
0: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
1: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
4: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
1: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
3: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
5: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। रायपुर में आज से शुरू हुआ सहकारी सम्मेलन। मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारिता ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का सबसे प्रभावी माध्यम बन रही है। राज्य सरकार ने खंड और अल्पवर्षा की आशंका को देखते हुए किसानों से धान की रोपा पद्धति के बजाय सीधी बुआई करने की अपील की है। आईआईएम रायपुर में कल से होने वाले चिंतन शिविर में मुख्यमंत्री के साथ ही मंत्रिमंडल के सदस्य शामिल होंगे। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में एक दो स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। सहकारिता मंत्रालय के 5 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज से राजधानी रायपुर में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन शुरू हुआ। रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सहकारिता किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का सबसे प्रभावी माध्यम बन रही है।
6: सहकारी सप्ताह चल रहा है और उसी तारतम्य में आज यहाँ पर कृषि मंडपम में ये 2 दिन का प्रदेश स्तर का सम्मेलन आयोजित है, जिसमें प्रदेश भर से सहकारिता से जुड़े हुए विभिन्न समिति के लोग यहाँ पर पधारे हुए हैं। और इसमें हमारे विभिन्न तरह के जो समिति हैं, दूध उत्पादक हैं, मत्स्य उत्पादक हैं, उनके जो विशेषज्ञ हैं वो भी आए हुए हैं। उनका अलग से सत्र चलेगा, तो निश्चित रूप से और भी विभिन्न क्षेत्रों में जो काम कर रहे हैं सबको और जानकारी मिलेगी।
5: मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर उत्कृष्ट समितियों को सहकार प्रेरणा पुरस्कार प्रदान किए। साथ ही संग्रहण वर्ष 2023 के 7 लाख से अधिक तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए 100 करोड़ रुपए से अधिक की पारिश्रमिक राशि के वितरण का शुभारंभ किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में सहकारिता विभाग के ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ भी किया। कार्यक्रम को सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने भी संबोधित किया। इस बीच सहकारिता विभाग द्वारा आज सुबह राजधानी रायपुर के तेलीबांधा मरीन ड्राइव में सहकार संकल्प दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौड़ का शुभारंभ सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस दौड़ में युवा, विद्यार्थी, किसान, सहकारी संस्थाओं के सदस्य, महिला समूह और विभिन्न वर्गों के लोगों ने भाग लिया। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। राज्य सरकार ने खंड और अल्प वर्षा की आशंका को देखते हुए किसानों से धान की रोपा पद्धति के बजाय सीधी बुआई यानी डीएसआर तकनीक अपनाने की अपील की है। सरकार के अनुसार डीएसआर तकनीक से लगभग 20% पानी की बचत होती है, प्रति एकड़ करीब 5,000 रुपए तक लागत कम आती है और फसल 12 से 15 दिन पहले तैयार हो जाती है। सरकार ने धान के स्थान पर अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, तिल, रामतिल और सोयाबीन जैसी दलहनी और तिलहनी फसलों की खेती अपनाने पर जोर दिया है। किसानों से बीज उपचार, संतुलित

0: उर्वरक उपयोग, वर्षा जल संग्रहण तथा ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों को अपनाने के लिए भी कहा गया है। श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में इस बार मानसून की स्थिति के मद्देनजर किसानों को खेती संबंधी सलाह पर कृषि मौसम विज्ञान विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर गोपी कृष्ण दास से ली गई भेंटवार्ता का प्रसारण किया जाएगा। इसका प्रसारण कल 4 जुलाई को आकाशवाणी केन्द्र रायपुर द्वारा FM और प्राइमरी चैनल पर सुबह 9 बजे से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र रिले करेंगे। भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय PIB द्वारा आज रायपुर में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी पर मीडिया वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा ने इस योजना को रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।
1: जो मनरेगा चल रहा था उसको रिफॉर्म करके हमारे VBG राम जी स्कीम इसको लाया गया है और बहुत सारी तकनीकी खामियां जो उस योजना में थी उनको पूरी तरह से परिष्कृत करके यह नए भारत 2047 में हमारा भारत विकसित भारत होगा, तो उस दिशा में काम करने के लिए इस जो गारंटी है उसके साथ में हमारे VBG राम जी स्कीम को लाया गया है।
0: इस अवसर पर विषय विशेषज्ञ नितेश उपाध्याय और डॉक्टर अनंत रघुवंशी ने इस योजना के विभिन्न पहलुओं और इसकी विशेषताओं के बारे में मीडिया कर्मियों को विस्तार से जानकारी दी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। नवा रायपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM में कल 4 जुलाई से चिंतन शिविर का आयोजन किया जाएगा। 2 दिवसीय इस शिविर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ ही राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य शामिल होंगे। इस शिविर का उद्देश्य बदलते तकनीकी परिवेश के अनुरूप शासन को और प्रभावी बनाना है। शिविर में सरकार की अब तक की उपलब्धियों, चुनौतियों और भविष्य की प्राथमिकताओं की समीक्षा की जाएगी। राज्यपाल रमन डेका से आज लोकभवन में डॉक्टर मणिभद्र महाराज के नेतृत्व में संचालित सर्वोदय शांति पदयात्रा से जुड़े संतों ने सौजन्य मुलाकात की। गौरतलब है कि यह पदयात्रा नेपाल से प्रारंभ होकर लगभग 1600 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए छत्तीसगढ़ पहुंची है। यात्रा का उद्देश्य शांति, सद्भाव, अहिंसा और मानवीय मूल्यों का संदेश जन जन तक पहुंचाना है। छत्तीसगढ़ योग आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने पदभार ग्रहण कर लिया है। इस अवसर पर आयोजित अभिनंदन समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों से योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने बस्तर संभाग में विभाग की योजनाओं का प्रचार प्रसार गोंडी और हल्बी भाषा में करने के निर्देश दिए हैं, जिससे दूरस्थ और जनजाति क्षेत्रों के पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं की जानकारी आसानी से पहुंच सके। मंत्रालय में आज हुई समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश दिए। प्रदेश में आकाशीय बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 4 लोगों की मौत हो गई है। बलरामपुर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र के पत्रापारा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से मां बेटी की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार ये दोनों खेत में काम कर रही थीं। इसी दौरान तेज बारिश शुरू होने पर दोनों एक पेड़ के नीचे खड़ी हो गई, तभी आकाशीय बिजली गिरने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सक्ती जिले के डभरा थाना क्षेत्र के बसंतपुर गांव में भी आज आकाशीय बिजली गिरने से एक दंपत्ति की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार ये पति पत्नी खदान में मजदूरी करने गए थे, इसी दौरान तेज बारिश के बीच आकाशीय बिजली गिर गई, जिसकी चपेट में आने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस और प्रशासन ने नागरिकों से बारिश और गरज चमक के दौरान खुले स्थानों तथा पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने और सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की अपील की है। दुर्ग पुलिस ने बीमा पॉलिसी रिफंड के नाम पर करीब 1,60,00,000 रुपए की साइबर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में पुलिस ने दिल्ली से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी खुद को बीमा अधिकारी बताकर बंद पड़ी बीमा पॉलिसियों की राशि वापस दिलाने का झांसा देते थे और विभिन्न बैंक खातों में रकम जमा कराकर ठगी को अंजाम देते थे। आरोपियों के कब्जे से मोबाइल फोन, बैंक पासबुक, चेकबुक और सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। छत्तीसगढ़ भवन तथा अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा पंजीकृत श्रमिकों को अपने श्रमिक कार्ड में दर्ज जानकारी का समय समय पर सत्यापन कर आवश्यक सुधार कराने की सलाह दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि श्रमिक कार्ड में संशोधन कार्य के लिए मात्र 20 रुपए का निर्धारित सेवा शुल्क लिया जाएगा। इसके लिए श्रमिकों को आधार कार्ड की मूल प्रति तथा सहमति पत्र के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा। श्रम विभाग ने पंजीकृत श्रमिकों से अपील की है कि वे समय रहते अपने

0: श्रमिक कार्ड की जानकारी अपडेट कराएं। रायपुर के वरिष्ठ पत्रकार सुखनंदन बंजारे का आज निधन हो गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, सांसद संतोष पांडे और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने सुखनंदन बंजारे के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने सुखनंदन बंजारे के निधन को पत्रकारिता जगत के लिए अपूर्णीय क्षति बताया। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं एक दो स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर कल हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक 8 जुलाई को सुबह 11:30 बजे नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंत्रालय में होगी। और कबीरधाम जिले के भोरमदेव में पर्यटकों के लिए भोरमदेव इको ट्रेल की शुरुआत कल 4 जुलाई से होगी। वन मंडलाधिकारी निखिल अग्रवाल ने बताया कि इको ट्रेल के दौरान पर्यटकों को अनुभवी नेचर गाइड के साथ भोरमदेव के वनों का भ्रमण कराया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रायपुर में आज से शुरू हुआ सहकारी सम्मेलन। मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारिता ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का सबसे प्रभावी माध्यम बन रही है। राज्य सरकार ने खंड और अल्पवर्षा की आशंका को देखते हुए किसानों से धान की रोपा पद्धति के बजाय सीधी बुवाई करने की अपील की है। IIM रायपुर में कल से होने वाले चिंतन शिविर में मुख्यमंत्री के साथ ही मंत्रिमंडल के सदस्य शामिल होंगे। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में एक दो स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना जताई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी है अगले प्रसारण की।

मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 7 बजे हैं। श्रोताओं, आइए आपको अवगत करा दें आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले हमारे आज के कार्यक्रमों से। शाम 7:05 पर यानी कुछ ही देर में आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। 7:20 पर आप सुन सकेंगे ग्रामीण श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम चौपाल। सोशल मीडिया आधारित फरमाइशी कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश का प्रसारण होगा रात्रि 8 बजे। फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत आप सुनेंगे रात्रि 9:15 पर। ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम ईमेल की गूंज आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम राग प्रधान। रात्रि 10:30 पर आप सुन सकेंगे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन भावन। श्रोताओं, अब सुनिए एक सूचना। सत्र 2026-27 में जिले में संचालित 5 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु आयोजित प्राक्चयन परीक्षा का परिणाम घोषित किया जा चुका है। कक्षा 6वीं में प्रवेश की अंतिम प्रक्रिया के तहत काउंसलिंग केंद्र इत्यादि का विस्तृत विवरण वेब पोर्टल eklavya.cg.nic.in पर उपलब्ध है। तदनुसार कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए काउंसलिंग हेतु चयनित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे पोर्टल eklavya.cg.nic.in का अवलोकन कर ऑनलाइन काउंसलिंग एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु कक्षा 5वीं की मूल अंक सूची, मूल निवास प्रमाण पत्र, स्थायी जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, विशेष श्रेणी के अभ्यर्थी होने पर उक्त श्रेणी के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र इत्यादि के साथ काउंसलिंग केंद्र में निर्धारित तिथि को उपस्थित होना सुनिश्चित करें। सूचना समाप्त हुई।

श्रोताओं, आइए आपको अवगत करा दें हमारे केंद्र से कल प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से। प्रातः 6:05 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम विचार बिंदु का प्रसारण होगा प्रातः 6:30 पर। रामचरित मानस का गायन आप सुनेंगे प्रातः 6:35 पर। कार्यक्रम गूंजे जंगल का प्रसारण होगा प्रातः 7:00। जनसंपर्क से प्राप्त समाचार और पुराने फिल्म संगीत का कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा आप सुनेंगे प्रातः 7:30 पर। कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह और कार्यक्रम बातों बातों में, इन दोनों ही कार्यक्रमों का प्रसारण होगा क्रमशः 8:30 पर और प्रातः 9:00, जिसे हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन लेकर हम आएंगे प्रातः 9:15 पर।

फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद आप सुन सकेंगे सुबह 11:05 पर। मिश्रित गीत संगीत का कार्यक्रम सबरंग का प्रसारण होगा दोपहर के ठीक 12:00। शहरी महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन का प्रसारण होगा दिन के 1:10 पर। गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा का प्रसारण होगा दिन के 2:30 पर। प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ आप सुन सकेंगे शाम 5:00। युवा श्रोताओं के लिए युवाणी कार्यक्रम का प्रसारण होगा शाम 5:30 पर। लोकगीतों का कार्यक्रम गोधूली लेकर हम आएंगे शाम 6:20 पर और ग्रामीण श्रोताओं का चौपाल लगेगा शाम 7:20 पर। श्रोताओं ये तो थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण आज यहीं तक।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 7:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं जगजीत सिंह की गाई इस गजल के साथ। शायर हैं डॉक्टर बशीर बद्र।

कार्यक्रम रजनीगंधा के अंत में सुनिए तलत अजीज की आवाज में ये गजल, सईद सहीदी की लिखी ये रचना और जगजीत सिंह का संगीत है।

इसी गजल के साथ कार्यक्रम रजनीगंधा आज यहीं तक। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 7:20 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम चौपाल।

चपाल सुनो या मोर श्रोता संगवारी मल्ला, जय जोहार, राम राम और स्वागत हमारे कार्यक्रम में। किसान भैया बहनी हो, देखिए जेकस अभी समय चलता है, खेती बाती कर समय है, मानसून कर सुख बुघाट होएगी सा है। और भाई जो कहते रहे इनकी कैसे कि भाई मानसून चटी कम हुई, लेकिन देखिए आशा करन अनुरूप बढ़िया मानसून दिखाता है अभी तो। भाई जैसे दो दिन बरखा हो इसते में बढ़िया लगाता है और यही आशा रखबू हमन। कहे कि देखी जो हमार छोटा किसान मन है उमन हमेशा यही सोचते हैं कि भाई बढ़िया मानसून रही तो बढ़िया बछर भर में जो हमन खेती पाती ले थी वो बढ़िया हो जाही। तो यही आशा विश्वास कर साथ एक कदम हमन ला अब जैविक खेती की तरफ बढ़ाना है। कैसे भैया बहनी हो कि वर्तमान और भविष्य कर कृषि के लिए अत्यंत माने लाभकारी और संभावना वाला क्षेत्र है ये। कैसे कि लगातार रासायनिक खाद कर और कीटनाशक कर उपयोग से माटी कर जो उपजाऊपन है एकदम घट गई से है, माटी कर क्षरण हो गई से है। स्वास्थ्य संबंधी बीमारी कर कारण आज पूरा दुनिया जैविक खाद प्राकृतिक खेती कर तरफ दिखाता है। अच्छा मांग भी देखिए इतना तेजी से बढ़ता है। हमारे ना छोटे स्तर पर अगर मैं बताऊँ कि भाई हमारे बाजार में जाइए ना तो किसान मन कहते हैं कि भाई ये बढ़िया हमारे घर करके जो खाद का है गोबर खाद कर है तो ले ही 5

रुपया बगरा दाम दे के ओला खरीदते हैं। अब हाओ हाँ कथे कि हमार घर का रहना हमार नी इसना इसन डाले ही भाई कोई रसायन उसायन नहीं डाली दवा बीरो नहीं करे ही बाबू त देखी चट ले मने ओला लेहे बर आगू आ जाते हैं। कहे कि देखी जैसे जैसे जागरूकता बढ़ता है लोग मन समझाता है कि जो लगातार जो हमार फसल मनु में जैविक रासायनिक खाद का उपयोग होइस ओकर ले स्वास्थ्य संबंधी ढेरे ओकर जो रिसर्च आइस जो कर खोज हुईस कि कहाँ से इतना बीमारी आता है तो भाई एक छोर वो भी पता चलीस कि जो हमन रसायन का उपयोग खेती पाती में होता है ओकर से भी इस बार बीमारी मन बढ़ाता है। माटी का क्षरण तो होते है भाई जो हमार उपज आता है वो भी एक तरह कर बहुत शुद्ध नहीं है लेकिन जो बीमारी शरीर में होता है इंसान मन के वो बहुत ज़्यादा घातक होता है। अब देखिए वैश्विक और घरेलू मांग में भी लगातार वृद्धि होता है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक उपभोक्ता रसायन मुक्त भोजन ला पसंद कर रहता है मांग कर रहता है और चटिक बगरा दाम दे के भी वो खरीद देता है। एकर से कहा होते कि किसान के आय में भी सुधार हो सकता है। जैविक उत्पाद कर सामान्य उत्पाद कर तुलना में बाजार में अधिक और बढ़िया दाम भेटा थे। जैसे अभी आम कर गोट कर रहती है जीवन जीवन ये बढ़िया प्राकृतिक खेती ले चाहे जैविक खेती ले आम कर उत्पादन करी नहीं और कोई फल्ला पके पर भी कोई रसायन का उपयोग नहीं करी ने वो मन बढ़िया दाम में खरीद देता है। इतवार बुधवार के दिन बाजार में वो आते हैं और कहते हैं कि फिर हमारे घर कर पाकर लाम है एक को बूंद में दवाई नहीं डरी से है तो ले वो मतलब 10-20 रुपया बेसी करके वो ग्राहक मन खरीद के ले जाते हैं। तो ये चीज़ रोज मैंने साधारण भी देखे पर मिल जाता है कि केकस जो बाजार कर मांगे वो लगातार शुद्धता कर प्रति आकर्षित होता है। लागत में भी भारी कमी आते किसान भैया बहनी मन कर गोबर खाद केचो खाद हरा खाद कर घरेलू उपयोग से महंगा रसायन खाद में जो खरीदे में बचत होते। भारत में भी जो विदेश में जैविक अनाज है चाय मसाला और कपास के निर्यात कर संभावना बहुत मजबूत हुई से और जो शुद्धता कर गारंटी होते रसायन कर बिना कर उसमें मांग भी लगातार बढ़ते। अब परंपरागत कृषि विकास योजना कर अंतर्गत जो सरकार समर्थन देता है आर्थिक मदद भी इनमें किसान देता है और सब्सिडी और जैविक प्रमाणन प्रदान करता है। ये बहुत बढ़िया बात है एक ठी शुद्धता कर गारंटी मिल जाता है और सब्सिडी भी जो है हमार किसान भैया बहनी मनी में पाते हैं। अब देखब तो लाभ जैसे देखब ना तो लाभ तो इतना बगरा है माटी ले शुरू करब तो माटी का स्वास्थ्य जैविक कार्बन से बढ़ते और जिमें भूमि लंबा समय तक उपजाऊ रहते। इकर अलावा जैविक मिट्टी कर पानी सोखे कर क्षमता अधिक होते जिमें सिंचाई कर कम लगते। ये भी हमन देखे ही कि जो जैविक खाद का उपयोग करते हैं प्राकृतिक खेती का उपयोग करते हैं पानी में कम खपत होते नमी माटी कर बरकरार रहते सबले बड़का बात है और इकर से माने कि पर्यावरण अनुकूल रहते इमें जलवायु और भूमि प्रदूषण पूरा तरह से रोक जाते। फसल पोषण संबंध से भरपूर होते और कैंसर जैसा गंभीर बीमारी का खतरा भी टलते। एक समय में हम देखें कि भाई जब ये बात हर सामने आई इसकी रसायन जो हमन खाती तो उमें भाई कैंसर संबंधी बीमारी होता है वो बगरा शरीर कर कौन कौन अंग में होता है भैया बहनी सब जानता है गल कर हो जाही तो भाई पेटों कर हो जाही हड्डियों कर होता है तो माने कितना रिकिम रिकिम कर माने बीमारी हर पसर जाता है। तो ये सबले बड़ा बात है कि मानव स्वास्थ्य पर एकदम उकर जो असर है रसायन कर उस एकदम देखल गई बहुत दुष्परिणामों कर देखल गई। तो अब जो है भविष्य में बढ़िया राह चुने पर जैविक खाद कर चुनौती ला जैविक खाद कर राहला पकड़ना जरूरी है। हालांकि जैविक खेती कर अपार संभावना है फिर भी देखिए फसल उत्पादन में जैविक खेती में जब करते हैं किसान एकदम सच्चा बात है किसान मन स्वयं जानता है कि जब रसायन डालता है तो उमन जाना कि चटिक कुकर से कम आते लेकिन चुनौती का सामना तो करते ही लेकिन कृषि विशेषज्ञ मन अब सटीक कृषि संबंधी जानकारी देता है ना और केकस तकनीक नया नया विकसित होता है केकस हमन ला जैविक खेती में भी रासायनिक खेती कर बराबर खेती पाती में लाभ भेटाही फसल भेटाही ओकस में भी बहुत जानकारी देते हैं कितना कुल जमीन है जमीन कर हिसाब से कौन सा फसल लेना है कौन सा फल और सब्जी लेना है और खाद कर निर्माण जैविक कंपोस्ट खाद का निर्माण कैसे करना ये सब बुनियादी जानकारी जो है खेती किसानी में भेटाता है। अब
सबले बड़का बात है भैया बहनियों, प्रदूषण जो वातावरण में होता है।

वो भी कम होता है, पानी कर, माटी कर, और स्वास्थ्य शरीर में भी जो दिक्कत आते वो भी इसमें कम दिखल जाता है। तो इतना जब बढ़िया एक नियोजित कार्यक्रम हो ही जैविक खेती कर, तो काहे नहीं भाई किसान मन इलाक अपना ही। और चटिक शुरू में सोझेला समझना पड़ी, लेकिन आगो चल के राह हर एकदम, भविष्य हर एकदम सुरक्षित और संरक्षित रही। अगर प्रदूषण कर बात करते हैं कि जैसे भाई जैविक रासायनिक खेती से प्रदूषण होता है, तो पर्यावरण प्रदूषण भी देखिए जे बगरा होते तो कहीं ना कहीं मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत बड़ा चुनौती देते। कैसे भैया बहनियों कि देखिए अगर प्रदूषण कर जो वातावरण बढ़ी, प्रदूषण का दबाव बढ़ी, तो मानसिक रूप से भी गंभीर कर चोट कर सकता है, बीमारी दे सकता है। बहुत सारा जो माने ऐसे शोध मना है, खोज मना है, जिसमें बताल की से कि हवा में मौजूद सूक्ष्म कण, चाहे ध्वनि प्रदूषण या चाहे रासायनिक कचरा, सीधे इंसान का तंत्रिका तंत्र में जो नर्वस सिस्टम है ओला प्रभावित करते हैं। एकर कारण सिर्फ हमारे देश में नहीं, पूरा संसार में एक शोध हुई है, देखल गई है कि जैसे एंजाइटी, घबराहट होते और डिप्रेशन होते, तनाव में आते, अनिंद्रा कर मामला ज़्यादा देखल जाते और एकर मामला बहुत तेजी से बढ़त है, और अगर कहीं ना कहीं कारण प्रदूषण है। कैसे प्रदूषण हर प्रभावित करते ये भी समझना जरूरी है। मस्तिष्क में सूजन आ जाते प्रदूषण से, हार्मोनल भी असंतुलित होते, जहरीला गैस से शरीर में बहुत तरह कर हार्मोनल स्ट्रेस जो बढ़ते, जेकर से व्यक्ति में लगातार तनाव दुश्चिंता का प्रभाव देखल जाते। अब ध्वनि प्रदूषण कर जो सीधा सीधा जिला हम एकदम स्पष्ट समझ सकते ही भैया बहनियों, कभू कभू रौरे भी देखे सुने हुई है कि हमार कति कोई भाई कोई प्रकार कर आयोजन करते हैं, तो बगरा बड़खा बड़खा साउंड बॉक्स मतलब काइन लाइट देते और ऐसे बगरा तेज आवाज़ में भन भन कर ही और कि ना तो कर भाई संगीत कर कोई मजा रह जाते और खाली शोरगुल में और बदल जाते। अब देखिए एकर से कितरा तो भाई चाहे रैलियों निकालते हैं, चाहे भाई कोई जुलूस निकालते हैं, ओमे भी ओला तेज कर देते हैं। अब ओकर से का होते, हमन देखे ही कि भाई कई कई जगह तो भाई हमरो घर कति जब निकलते यही बर्तन वन टीनिर टीनिर हिले लागते हैं, घर के आगू ले जाता है इतना तेज आवाज़ में पूरा। और सियान मन तो कहते हैं भाई हमारे एकदम हृदय का धड़कन बढ़ गई सा है। तो भैया बहनियों ये चीज़ ला हमें एकदम स्पष्ट देख सकती है कि सामने जो प्रदूषण है, चाहे सड़क कर, चाहे वो बड़ा बड़ा जैसे साउंड बॉक्स होगी बाजा कर, और विमान मन कर भी ये शोर से बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव होते और मानसिक चिड़चिड़ापन और डिप्रेशन कर भी मुख्य वजह है। हृदय कर भी एकदम धड़कन और धड़ बैठ जाते, कई कई सियान मन ला देखे हूँ, लड़का मन भी छोटे छोटे रहते ना, इतना बगरा आवाज़ हुई 6 महीने 4 महीने कर ये फेंका हाथ गोड़ फेंक के जो रोते हैं, कैसे भाई अब एकदम तेज आवाज़ होएगी से, अब कैसे वो मतलब रैली में जाते हैं चाहे सामने ले जाते हैं तो कैसे वो मतलब कही तो सुनबे नहीं करे कोई, और इतना लड़का मतलब भी हमें मैंने परेशानी होते। अब एक कारण देखिए क्या है कि भाई और एक ठीक कारण है कि जेकर मानसिक तनाव बढ़ जाता है तो प्राकृतिक से भी लोग मन के मन दूर हो जाते हैं। देखिए पहले एकदम हमार प्रकृति से जुड़ के रहत रही, आगू कर समय में आज से अगर 25-30 साल पहले कर भी गोट कर ले तो इतना हमार क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा जंगल रहीस, बहुत ज़्यादा वन रहीस, और सब जन वन जंगल का लाभ भी ले आते रही और प्रकृति से जुड़ के भी रहत रही। लेकिन जैसे जैसे कंक्रीट कर जंगल भी छट जाता है, पेड़ हर कट जाता है और अकेलापन और एकाकीपन भी मनुष्य मन ला घेर जाता है। छोटा परिवार कर भी कभी कभी ये जो है मानसिक जो स्वास्थ्य कर में चुनौती देखती कि बगरा परिवार रहते तो सब तरह कर बात ला मन आपस में साझा करके भाई चिंता मन ला के कोई तरह का राह निकाले थे, लेकिन जब छोटा परिवार रहते तो भी ये हर चटिक बढ़ जाए। अच्छा देखिए वायु प्रदूषण से डिप्रेशन कर खतरा बढ़ते, एंजाइटी और बच्चा मन के सीखे कर क्षमता में भी कमी आते। मुख्य स्रोते कर का है वाहन कर धुआं और फैक्ट्री मन कर। एकर अलावा ध्वनि प्रदूषण में हमन देखब तो हाई ब्लड प्रेशर हो जाते, नींद में लगातार खलल हो जाते और स्ट्रेस भी इसमें होते, भारी ट्रैफिक निर्माण कार्य और यही बाजाबाजी मन कर कारण भी होते। भारी धातु कर, शीशा कर प्रभाव से भी चिड़चिड़ापन और मतलब जैसे
तुरंत तुरंत मूड्स

स्विंग नहीं लिखत हैं दिला ये करही तहाँ तुरंत हंसी तुरंत बतियाही तहाँ तुरंत हल्ला गुल्ला लड़ाई झगड़ा। तो रासायनिक प्रदूषण कर और मैंने कीटनाशक और औद्योगिक कचरा जो है ओकर से निकले वाला जो कई तरह कर हानिकारक वो हैं पदार्थ हैं ओमन से ये जो है एक तरह कर प्रदूषण होते और ये तरह कर स्वास्थ्य में सीधा असर पड़ते। तो भैया बहनी हो एकर से चुनौती कर का है सबला अपन अपन कर्तव्य अपना अपना अपन अपन जिम्मेदारी समझ के अपन ये प्रदूषण पर कार्य करना चाहिए। कैसे करना चाहिए कि भाई देखिए पहले तो अपन घर कर आसपास अब बरखा कर दिन है जरूर पेड़ लगाना चाहिए पौधा लगाई और ओला पेड़ बनत तक उकर तीहा करी। कई जन कैसे करते हैं कि भाई एला इको थेरेपी कहते हैं अंग्रेजी में तो कैसे भाई प्राकृतिक कर करीब जाना है जल्द ही भाई कौन ऐसा जगह में जहाँ आजकल तो जंगल में भी चटी रहे वही के सुविधा बनाए रहते मोटेल वोटेल का भाई का कहते हैं भाई जैसे झोपड़ी कस बनाए रहते हैं में जाकर रुकते हैं हफ्ता 10 दिन आनंद लेते हैं बन बनकर तो वही कस वो इको थेरेपी भी लेना चाहिए ध्वनि से।

0: कैसे भैया प्राकृति कर करीब जाना है जल्द ही भाई, कोनो ऐसा जगह में जहाँ आजकल तो जंगल में भी चटिक रहे वही के सुविधा बनाए रहते मोटेल वोटेल का भाई का कहते हैं भाई, जैसे झोपड़ी कस बनाए रहते हैं, मैं जाके रुकते हैं हफ्ता 10 दिन आनंद लेते हैं बन बन कर, तो वही कस वो इको थेरेपी भी लेना चाहिए, ध्वनि से जो ध्वनि कर प्रदूषण होकर से बचाव कर करना है। अब एक अलावा अपन जीवन शैली ला भी नियमित रखना है, प्राणायाम योग कर जरूर उपयोग कर मतलब जीवन में अपनाना है वो शैली ला, और फेफड़ा के साथ साथ जो ये जो योग और प्राणायाम है यह फेफड़ा कर साथ साथ फेफड़ा का तो मजबूत करते साथ ही साथ दिमाग ला भी शांत करते और मजबूत करते। तो भैया बहनियों यही आशा कर साथ कि ये भी जो जीवन शैली जो आजकल लगातार भागम भाग चलता है ये मेरे चटिक समय निकाल कर विचार करना है कि अगर ये तरह कर समस्या आत है अगर हमार धरती में हमार प्रकृति में तो एकर समाधान भी हमार से होकर एकर रास्ता भी हमार से होकर जाइए। चटिक संदेश मन लाइ मलसून जाए फिर आगू कोट करब
1: योजना मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: तो देखिए, खेती किसानी कर काम अब शुरू हो गई है, तो लगी एगो प्रभुनाथ वैष्णव और संगता कर गाल किसानी गीत सुनते है, फिर आगो गोट करब।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: किसान भैया बहनों, देखिए फसल कर तैयारी तो भाई सब करते हैं, और किसान भैया बहनी मन धान कर भी तैयारी करते हैं, मक्को कोई कोई लगाए बर तैयारी करते हैं। तो मक्का कर फसल कर जो बढ़िया पैदावार लेना चाहते हैं उमन सही और उन्नत किस्म कर चुनाव करें, और बुआई कर समय वैज्ञानिक प्रबंध लापना ही, और ये बहुत ज़रूरी कदम है। कहे देखिए चाहे खरीफ हो चाहे रबी सीजन पर, कुछ मजबूत माने बढ़िया किस्म कर जिम्मे मजबूत तना गहरा जड़ तंत्र और बीमारी से लड़े कर क्षमता हो बढ़िया, ऐसा लोकप्रिय किस्म कर चुनाव किसान भैया बहनी मंडला करना चाहिए। जैसे हमारे भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान जो विकसित करी है HQPM1 उच्च गुणवत्ता वाला और प्रोटीन भी बढ़िया है मेरा था, ये मक्का है विवेक हाइब्रिड 21, विवेक हाइब्रिड 25, ये बहुत बढ़िया उत्पादन देते और एक जो मक्का है वो बढ़िया मीठा भी रहते हैं, प्रोटीन भी में ज़्यादा देखल गई से है। बढ़िया फसल ले पर वैज्ञानिक तरीका अपनाना चाहिए, जैसे खेत कर तैयारी बढ़िया जल निकासी वाला दोमट बलुई दोमट मिट्टी बढ़िया कर रहे थे, और खेत में पानी भी में नहीं रुकना चाहिए। गहरा जुताई के बाद 2 से 3 बार रोटावेटर हैरो रोटावेटर चला के मिट्टी ला भुरभुरा कर लेना चाहिए। आखिरी जुताई कर समय 10 से 12 टन सड़ा गोबर कर खाद प्रति हेक्टर के रूप में अवश्य देना चाहिए। अच्छा अभी देखिए अब अभी जो समय चलत है जो हमारे बरखा खरीफ ऋतु कर ये समय हो गई सा है एकदम उचित का है मक्का कर खेती तैयारी करे बर और मक्का कर बुआई करे बर। मानसून आए से 10-12 दिन पहले पलेवा सिंचाई करके बुआई करना सबले उत्तम मानल जाते है, और जुलाई कर महीना भी है, जुलाई कर महीना भी सबले उत्तम मानल जाते हैं हमें। अब एकड़ भर सही पौधा कर संख्या सही पैदावार कर गारंटी है 20 दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़, जिसे 18 से 22 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। लाइन से लाइन कर दूरी 60 सेंटीमीटर लगभग 2 फीट, पौधा से पौध कर दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर। बीजला माटी में 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई में बीज बोना चाहिए। बीजोपचार बेहद जरूरी है, सब किसान भैया बहनी मन जानते हैं कि जे कस भाई लड़का मन कर टीकाकरण होते तो बीजोपचार भी एक तरह से वही है, सुरक्षा कवच हर बीमारी से तैयार कर देते। तो कवकनाशी कैप्टान या थायरम 3 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित करना चाहिए। बाजार में जो पैकेट लाते हैं वो जो हाइब्रिड किस्म का पैकेट होते हैं वो

0: पहले से उपचारित भी आते तो एकर जानकारी पैकेट में देहल रहते, ओला जरूर पढ़ लेना चाहिए। अब खाद प्रबंधन करे बर एक भारी फीडर फसल है मक्का, इमे सही मात्रा में पोषण करा सकता होते। मिट्टी परीक्षण कर आधार में अगर खाद दें तो बहुत बढ़िया रहते। सामान्य तौर में प्रति हेक्टेयर या एक एकड़ के अनुपात में इला रखना चाहिए। जैसे अनुपात 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। बुआई का समय पोटास फास्फोरस और पोटास का पूरा मात्रा, नाइट्रोजन का एक तिहाई और बेसल डोज में रूप में देना चाहिए। नाइट्रोजन का दूसरा खुराक 1/3 बुआई कर 30 से 35 दिन बाद, माने घुटना तक कर ऊंचाई में वो जो हो जाए मक्का कर फसल है उतना में देना चाहिए। बचा नाइट्रोजन जो है वकर आखिरी खुराक 1/3 50 से 55 दिन जब मंजरी लगे कर स्टेज हो जाए। माटी में जिंक कर कमी है तो खेत में तैयारी करते समय 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति एकड़ डालना चाहिए। ये में दाना कर भराव बढ़िया रहते। खरपतवार और जल प्रबंधन भी बड़ा ध्यान दे कर जरूरी है। बुआई कर तुरंत बाद और अंकुरण से पहले 2 से 3 दिन के भीतर एट्राजीन 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से 500 लीटर पानी मिला के स्प्रे करना चाहिए। फसल जब घुटना कर बराबर हो जाए तो हल्का गुड़ाई करके पौधा का जड़ में माटी चढ़ा देना चाहिए। अब देखिए जो किसान भैया बहनी मन देखते हैं कि अगर चटिक सूखा पड़ गई, मान ला खेत में नमी होना में अनिवार्य है तो ये में सूखा हो जाए चटिक फसल प्रभावित हो जाते, तो ये दौरान भी अगर तेज बारिश कर हो तो कर जल भराव मत हो दे और जल निकासी का पूरा प्रबंध भी करना चाहिए। अब जो आज हमारे कृषक हैं राधेश्याम यादव, बरिखा में टमाटर कर खेती करते हैं। स्मार्ट कृषि में हमर जग जो किसान गुठियाई न है राधेश्याम यादव अग्नु भैया जग बातचीत हुई से और टमाटर का खेती करते हैं बरिखा कर, कैसे कैसे कहते हैं का बात कहते ले गेला सुनल जाए।
1: किसान भाई हो, आज देखा हम अंबिकापुर शहर से नज़दीक एगो गांव है, बड़ा सुंदर गांव दिखता है, पहाड़ी गांव है और एक गांव का नाम है रामनगर और यहाँ पे बड़ा अच्छा देखा ऊंचाई वाला खेत है। उसमें किसान भाई मन साग सब्जी कर खेती करके और बढ़िया उत्पादन भी कमाता है। चारों तरफ से हरियाली वाला गांव दिखता है यार। और यहाँ मैं देखता हूँ कि टमाटर के खेती का तैयारी भी कुछ किसान भाई मन करता है, तो आज हमारे जगह को किसान भैया हैं राउर अपन नाम लो बताइए।
2: मोर नाम है राधेश्याम यादव।
1: राधेश्याम जी का कर और खेती करे ही यहाँ?
2: यहाँ मैं अभी टमाटर का तैयारी करता हूँ खेती करे पर। हाँ तो अभी यही सब तैयारी हो चुकी से, अब 25 तारीख के ग्राफ्टिंग वाला पौधा लगना है, 12,000 पौधा मंगाए हूँ। 26-27 तक लग के वो कंप्लीट हो जाही। और नॉन ग्राफ्टिंग वाला है वो के अभी गाछी नर्सरी करो था, वो लगभग 12 से 15 दिन के बीच में वो लग जाही। हाँ एम एस ए साहू वेराइटी के है, सलार है, रुकमणी सुपर है और रुकमणी है, ये 4 वेराइटी का पौधा मैं अपन लगा था।
1: राहुल कैसे विचार करें कि ये में टमाटर की बढ़िया खेती हुई और जो पारंपरिक बीज ला पहले किसान भाई में लगात रहीन और अभी एगो नया तकनीक आई से ग्राफ्टिंग तकनीकों में देखा पौधा भी मजबूत रहल और पुराना जंगली पौधा से वाला हाइब्रिड का जो पौधा है वो में ले जाके परिवर्तित करते हैं और एगो नया पौधा तैयार हुआ और बड़ा अच्छा एकर उत्पादन हो। तो राहुल कैसे एला जानें, कैसे कहाँ सुनें कि एला शुरू करें?
2: एला हन मैं टीवी में देख करके ऐसा करें और गांव तरफ हमारे क्षेत्र में लुंड्रा ब्लॉक में ये 76 सरपंच उदारी के जो हैं और बहुत बड़े बड़े किसान हैं कि जो करोड़ों में आजकल एक साल में खेती करके इनकम कमावत हैं, तो ओमन मन कला में देखें तो जो नॉन ग्राफ्टिंग वाला है जो सिंपल लगाते हैं ओकर अपेक्षा ग्राफ्टिंग वाला में कम से कम 7 गुना फल ज़्यादा लगेल
1: और रोग बीमारी भी कम
2: लगेल और एकर कोड़ा मादा का भी देह की जरूरत नहीं पड़े। एक बार मल्चिंग बिछा दें एक बाद में उसमें कोड़ा मादा लेबर को कोई जरूरत ही नहीं है।
1: अभी बरसात में कैसे होई, मान ला तेज पानी गिरी और थोड़ा ऊंचा,
2: कोई फर्क नहीं पड़ी, बहुत अच्छा पौधा हुई।
1: तो कैसे तैयारी राउर करत ही अभी एक
2: एमएन अभी मेड़ बना करके उसमें जितना भी खाद है जो जितना प्रकार का, जैसे मैं तो ज़्यादा करके पुराना गोबर डालता हूँ, DAP राखड़ पोटास यूरिया हल्का एकदम नान नहीं के बराबर जिंक और ये क्या बोलते हैं ये जो सोसाइटी में अभी जो खाद आते हैं केचुआ, यही सब जैविक खाद यही सब मन के इस्तेमाल करके मैं ये सब पौधा मैं ऐसे करता हूँ।
1: और टमाटर के खेती रहो कर अभी अगर लगाना लगा थी रहो एक कब तैयार हो जाए कब बाजार में आ लगी।

0: अक्टूबर में एकदम बाजार में चढ़ जाइए।
1: हाँ देखा, अभी तो टमाटर के दाम आसमान पर है और बाजार में आए तो 150 रुपये किलो बिकत है, तो राहुल ऐसा व्यवस्था नहीं करें कि ये सीजन में हमेशा टमाटर का भाव और बढ़े रहे, तो राहुल नहीं प्रयास करें कि तनियाव जल्दी लगाए रहते हैं और अभी ओवर निकलती
0: थोड़ा सा मोर्चे के पानी की कमी पड़ गई रही, ओकर चलते और जहाँ पानी रही वहाँ खीरा लगा ले रहे, तो से मैं अभी वाला में नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगले सीजन में उम्मीद है कि ये आजकल के सीजन में जो निकलत है ये में से निकाले के पूरा प्रयास करूँ।
1: लगभग कितना एकड़ जमीन में राहुल लगा दूँ?
0: मैं लगभग 5 एकड़ में।
1: और टमाटर के संगे संगे का खेती राहुल करती है?
0: टमाटर के साथ में वही के अभी धान की खेती करती है, मक्का की खेती करती है, अभी मक्का लगाए ही 1 क्विंटल बीज।
1: हाँ तो मक्का ला कैसे लगाया राहुल?
0: मक्का लहान पहले DAP राखड़ पोटास ये सब मिला करके मैंने जमीन में डालन, पहले तो जोताई करवाए लेन, जोताई करे के बाद पहले खाद डालन, खाद के बाद एक एक ठो बीज में डालन, एक बाद में ट्रैक्टर के पाटा से वो लहन पूरा प्लेन कर दे। हाँ अब जैसे मक्का जैसे 1 फीट का हो जाए फिर वहाँ लोडिस की स्प्रे करके फिर वो में यूरिया डालना है।
1: हाँ मक्का के खेती में भी राहुल देखा थे कि टमाटर के बराबर फायदा होएल कि?
0: अब टमाटर के बराबर कहाँ हो, लेकिन हाँ फायदा है वो में भी, कहाँ 22 रुपये किलो मक्का जा और कहाँ टमाटर, अगर सीजन में अगर अक्टूबर में निकला था और बढ़िया रेट रह जाए तो कम से कम न्यूनतम अगर 1000 रुपये ट्रे भी जाते तो एक गाड़ी में 1 लाख रुपया बन जाए।
1: हाँ और टमाटर जिसे लगे है और कब तैयार हो जाए?
0: ओ टमाटर और अक्टूबर में मार्केट चढ़ जाएगी।
1: हाँ दो समय तक रेट रहे
0: रेट जहाँ तक उम्मीद है कि 1000 रुपया से कम नहीं जाए।
1: यहाँ के किसान मन सरगुजा कर किसान मन कैसे ये सीजन ला नहीं धर पाए, मान ला मई जून में लगाती हैं तो अभी वो टमाटर निकलती तो
0: टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो ओकर चलते फूल जो है वो झड़ जाए, फल कम लगे, और फल कम लगे के कारण से एला नहीं सके, और रेट भी कभी कभी ऐसा हो जाए, पिछले साल भी आज के जैसे आज के डेट में उतना ज़्यादा रेट नहीं रही, आज के डेट में यहाँ अंबिकापुर में 3000 रुपये क्रेट बिकी से आज।
1: तो देखा टमाटर के इतना महंगाई है और बड़ा अच्छा फसल भी है, मेहनत कितना लगे राहुल का देखती कि बाकी खेती में और टमाटर खेती में कितना मेहनत?
0: मेहनत तो लगे लगे बल लागत लगे उमें है यानी 1 एकड़ में लगभग 1.5 से 2 लाख रुपये का लागत लगे।
1: हाँ और आय कितना?
0: आय उमें अगर रेट अगर न्यूनतम अगर 1000 रुपये के ट्रे जात है तो आय कम से कम 10 से 12 लाख रुपया।
1: अरे बहुत ज़्यादा उत्पादन हुए। हाँ। और आय भी हुए। और कितना साल से राहुल लगा थी टमाटर?
0: टमाटर मैं लगभग 12-14 साल से लगा था।
1: तो आज से 10 साल पहले राहुल का देखत रहा उस समय कैसा?
0: वो समय तो केवल हमन जमीन में नर्सरी करत रहे, जमीन में नर्सरी कर किसान करत रहे तो वो पोलियो टाइप को में बीमारी लग जाए जिस नर्सरी में और वो इन्हें बीच में गल के सिकुड़ जाए खत्म हो जाए, तो ये टाइप का बहुत सा बीमारी लगत रही जेकर हमन में उपचार नहीं कर पाते रहन, लेकिन आजकल मैंने वैज्ञानिक तकनीकी से ऐसा दवाई आ गई से ऐसा विधि आ गई से कि एक भी पौधा नुकसान नहीं होता है।
1: तो अभी जैसे मल्चिंग पद्धति से राहुल लगाए ना और मान ला और बड़ा हो जाए फूले के समय तो पूरा मैं देखता हूँ कि कई जगह रस्सी मतलब बांधे रहते हैं तार मतलब बांधे रहते हैं, तो राहुल भी ऐसा विधि?
0: हाँ बिना रस्सी खूंटा के में टमाटर हो ही नहीं सके, अगर जमीन में पड़ी तो तुरंत सड़ गई।
1: कौन कौन टाइप के रोग बीमारी लगे राहुल देखती?
0: ज़्यादा करके झुलसा का बीमारी लगे ओकर लिए आयल दवाई बहुत सा प्रकार के दवाई आयल जहाँ जाइए दुकान में तो जो दुकान में जाइए वही अपन अपन जो दवाई बेचे कैसन रहे तो बोलते हैं कि नहीं अकेले जा अकेले जा।
1: और फले के बाद भी कई बार शिकायत आयल कि जो
0: फल में सड़न होल नीचे साइड से तो में है कैल्शियम का कमी पड़े रहे तो में कैल्शियम बोरान कर स्प्रे कर देते तो और ठीक हो जाए।
1: तो राहुल इतना बढ़िया देखा खेती ला करती टमाटर कर राहुल कर देखा देखी आसपास पास कराऊ कोई किसान मन देखा देखी करना शुरू करी था?
0: बहुत किसान ऐसा आज के डेट में ऐसा कोई किसान नहीं है कि जो कम से कम 1-2 पैकेट ना करे। हाँ ऐसा कोई किसान नहीं है।
1: तो ये अभी जो हम देखते कि जो बीज ला कहीं दे देते हैं और ओकर संगे उद्यान विभाग में भी ओकर पौधा तैयार करके दे देते हैं, तो राहुल खुद भी ऐसा प्रयोग करते कि सीधा गाछी ला लेके लगाते?
0: नहीं हम खुद भी प्रयोग कर लेते ताकि ग्राम सेवक मन आते हैं गांव में और जानकारी बताते हैं और खुद करके दिखाते हैं कि ये विधि से ला करा तो यहाँ अच्छा हुई ये ऐसे करना है, दवा बीरो भी देते हैं मन मन। हाँ कृषि विभाग से
1: जैसे ग्राफ्टिंग विधि से जो किसान भाई मन टमाटर लगाते हैं अगर वाला कोई छोटा किसान एक दिश

0: दुई डिसिन में प्रयोग करे बर लगाए देखत है तो ओके भी मल्चिंग पद्धति अपनाना पड़ी कि साधारण तरीका से लगा सकत है।
1: साधारण तरीका से लगा सकते हैं लेकिन वो में का है कि कोड़ा मादा के ही जरूरत पड़ी और वो में ड्रिप लगाना जरूरी है क्या कि ड्रिप में ही खाद पानी जाए मल्चिंग ग्राफ्टिंग वाला में। हाँ
0: देखा राउर बड़ा अच्छा खेती पाती करती और एगो प्रेरणा भी ही राउर कि भाई शहर के नज़दीक रही के और जैसा वातावरण जैसा जमीन ला देखें राउर वैसा खेती शुरू करें राउर मकई भी बढ़िया लगाए ही टमाटर के जो बड़े पैमाने पर तैयारी कर थी तो बाकी किसान मन भी देखे पर आते का
1: आते हैं किसान मन देखे बात
0: तो राउर रोमला बताती नहीं कि
1: बताती हाँ बताए में हम कमी नहीं करती था कि हर आदमी जागरूक हो जाए हर आदमी जगाए कमाए तो हमर भारत से गरीबी के दूर हटाना है।
0: बहुत बढ़िया बात देखा
1: बहुत हमर मन के गरीबी जो है भारत में गरीबी 1% भी नहीं बचाना है।
0: बहुत बढ़िया राउर का विचार है बहुत अच्छा राउर से गोड बात हुई और मैं देखता हूँ कि राउर बड़ा जागरूक भी पूरा देश का भी चिंता राउर ला है कि गरीबी ला मिटाना है तो निश्चित रूप से जब टमाटर की खेती होता है अगर हर किसान इसे खेती करे तो जो दाम मिली जो आर्थिक आय हुई ओकर से निश्चित रूप से ओकर परिवार का भरण पोषण ओकर आर्थिक स्थिति बेहतर हुई। राउर से आज गोड बात हुई राउर का बहुत बहुत धन्यवाद।
2: ये जो हमारे कृषक रहीन देखी कितना राधेश्याम यादव आत्मविश्वास एकदम भरल रहीन और बहुत बढ़िया सोच कर साथ खेती करते हैं और जागरूक किसान तो है ही हैं। अब देखिए किसान भैया बहनियों प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना एक ना बढ़िया पेंशन योजना है। भारत सरकार छोटा और सीमांत किसान इला शुरू करी से है स्वैच्छिक और अंशदान आधारित पेंशन योजना है। एकर मुख्य उद्देश्य बुढ़ापा में किसान मन ला सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। गारंटीड मासिक पेंशन इमें मिली 60 वर्ष का आयु पूरा होकर बाद लाभार्थी किसान ला हर बच्चर इमें निश्चित पेंशन मिली और एकर साथ साथ बराबर कर सरकारी अंशदानों में जुड़ी जैसा मासिक प्रीमियम किसान जितना जमा करी ठीक उतना राशि केंद्र सरकार भी होकर पेंशन निधि में जमा करी। यदि पेंशन शुरू होने के बाद किसान कर मृत्यु हो जाते तो कर पत्नी चाहे पतिला 50% पेंशन कर पारिवारिक पेंशन के रूप में भी मिली। पूरा पेंशन योजना और फंड कर प्रबंधन जो है ये सरकार कर निगरानी में है। अब पात्र जो किसान है हमारे केवल वही छोटा किसान सीमांत किसान पात्र है जेकर पास राज्य के भूमि रिकॉर्ड के अनुसार 2 हेक्टेयर लगभग 5 एकड़ चाहे उगर से कम कृषि योग्य भूमि है। आवेदन के समय किसान का उम्र 18 से 40 बच्चर कर बीच होना चाहिए। कौन पात्र नहीं हुए में जो किसान पहले से कोई अन्य सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजना में जोड़ी ना है ओमने में जैसे कोई EFPO लेना है ये चाहे NPS कर है ये सदस्य हैं इमल में लाभ नहीं मिली। संवैधानिक पद में रहे वाला डॉक्टर इंजीनियर CF ये सब वेतन भोगी मन इमें नहीं पाही ये पेंशन के पात्र नहीं हुई। अब जो है किसान कर जो 40 बच्चर कर किसान कर 18 से 40 बच्चर कर उम्र के बीच योजना से जुड़ना होते और प्रवेश कर उम्र कर आधार पर मानसिक प्रीमियर होकर बीच तय हो जाते बन जाते। तो किसान भैया बहनी हो एक जो PM किसान सम्मान निधि है ये मनला एक फार्म भर के इला ऑटो डेबिट मैंडेट फार्म भर के विकल्प चुन सकते हैं कि पेंशन कर प्रीमियर सीधा PM किसान कर जो किस्त है उकर से काट लेल जाए चाहे अब अलग से अपन जेब से भी पैसा दे के इला शुरू कर सकते हैं। जरूरी दस्तावेज देखब तो खतौनी भूमि कर दस्तावेज मोबाइल नंबर कोई भी किसान अपन कॉमन सर्विस सेंटर में जाके मुफ्त में पंजीकरण कराए सकता है। तो किसान भैया बहनी हो देखी अब चटी बीरा बाची से तो जल्दी जल्दी मैं आजकल मंडी भाव दिखा बताए दे तो आजकल मंडी भाव में चलब तो गेहूँ 2,428 रुपया प्रति क्विंटल सरसों है 5,655 रुपया प्रति क्विंटल तीला है 6,000 रुपया प्रति क्विंटल हरा मरचा है 50 से 75 रुपया प्रति किलो और कोदो है 3,250 रुपया प्रति क्विंटल वही कजन राम तीला है 7,000 रुपया प्रति क्विंटल। अब आज कर अधिकतम तापमान है 32 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और काली कर जो अनुमानित तापमान है 33 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहकर संभावना है। अब देखिए जाति जवाति हम गीत संगीत सुना बेकर तो समय नहीं बाँची से है तो यही कहना है भैया बहनी हो कि देखिए बरखा कर समय है जो मौसम कर जानकारी लेकर पूरा जैसे हमारे भी रेडियो कर माध्यम से बतात रही और हमारे श्रोता जो किसान भैया बहनी मन है ओमन जानते हैं कि खेती किसानी करवैया जो ऐप है ओला भी डाउनलोड करके

और उमे भी मौसम संबंधी जानकारी ले लेना है। और जेकस भाई मौसम जेकस भाई ऐसा बताता है कि भाई बिजली गिरे चाहे बादल कड़के अगर संभावना है, तो ऐसा में अपन सुरक्षा जनावर बनकर सुरक्षा करना बेहद ज़रूरी है। जानवर कर बात कर रहते हैं तो टीकाकरण कर समय हो ही गई सा है, जो भाई खुरपका मुँहपका हो गई चाहे खुर कर बीमारी जो होते, ये समय बरखा कर समय में खास कर मवेशी मन ला देखल जाते। थनैला रोग भी हो जाते जो ज़्यादा नमी कर कारण भी वातावरण में फैले जो संक्रमण है ओकर से हो जाते, तो एकर से बचे खातिर समय पर अपन अपन मवेशी मन ला टीकाकरण जरूर कराई, उमन ला भी सुरक्षित रखी, स्वयं भी सुरक्षित रही। देखी बरखा में कई तरह कर मक्खी मच्छर भी ज़्यादा पनप जाते, ऐसन में स्वयं का भी सुरक्षा बेहद ज़रूरी है। तो किसान भैया बहनी हूँ यही आशा कर साथ कि स्वस्थ रहा, स्वच्छ रहा, फिर भेटब, तीजई ला बेदा दई, राम राम।

अभी ग्रामीण श्रोताओं के लिए चौपाल कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 8 बज चुके हैं। लीजिए पेश है सोशल मीडिया आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश। कार्यक्रम लेकर मैं हाजिर हूँ आपकी रेडियो साथी जयमाला। कार्यक्रम में पहले गीत के लिए हमें फरमाइश की है जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह ने। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी, दिशा गोस्वामी ने। धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू ने। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय ने। कोल सिटी बरकाकाना से अफजाल तात, साहिन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निप्पी साहनी, मोहम्मद अफजल मलिक ने। सनावत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बुड़ाना ने। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा ने। बटिंडा रोड मंडी डब्वाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग ने। गांव खोखरावली श्रीगंगानगर से विनोद बारासा, विशाल, विकास, रोशनी और सगुन बारासा ने। सत्यम क्लब फुलकोना प्रेमनगर से अरविंद कुमार यादव, रुस्तम, हिमांशु, अनुष्का, ऐश्वर्या, प्रीतम, मनोज और मिथिलेश यादव ने। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव ने। बड़ी गैबी चौहारा वाराणसी से अरुण कुमार मालवीय ने। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नहावकर, निर्मला नहावकर, विशाल नहावकर ने। मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान तायंडे, आशीष मोहरेकर ने। मालवा रेडियो श्रोता संघ ग्राम हिंगड़ी आलोट जिला रतलाम एमपी से जगदीश धाकड़, नायमा श्रीमती रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़ ने। चरडोंगरी पिपरिया जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ से दुर्गाराम साहू, अजय कुमार साहू, जय किशन साहू, श्रीमती कुमारी साहू, श्रीमती इंद्राणी और माया साहू ने। आप सभी श्रोताओं के फरमाइश पर आइए सुनते हैं फिल्म बाबू का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं राजेश रोशन।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं सोशल मीडिया आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से। कार्यक्रम में अगले गीत के लिए हमें फरमाइश की है ग्राम लसुड़िया पाता तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका और रमेश चंद्र डांगी ने। नंदन कुमार सिंह, अंकित कुमार सिंह जिला बेगूसराय बिहार से, संदीप कुमार सिंह, संजय कुमार सिंह जिला मोतिहारी बिहार से, सांगली जिले के जजशहर से अल्ताफ हुजरे, शेफुल्ला, शबाहत, कीरत हुजरे और रेहान शेख ने। दादा बाबू रोड गिरडी झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत और सादिया ने। ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा ने। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर ने। रायपुर से विनोद वर्णलकर, वीणा और विविधा वर्णलकर ने। बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद्र माखीजा, काफिर भाई, शविता माखीजा, स्वाति माखीजा, महेश कुमार कुकरेजा, संध्या कुकरेजा, दीपक, मोनू, उन्नति घनशानी, कीरत राय वांधवानी, प्रदीप कुमार साहू ने। सादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़ ने। पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और आरजू जाजोरिया साथी गुड्डू ने। आप सभी श्रोताओं के फरमाइश पर आइए सुनते हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में फिल्म मजबूर का ये गीत। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश में अगले गीत के लिए हमें फरमाइश की है हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रज़ाक मोहम्मद, समीम बेगम, इमरान खान और इरफान खान ने। खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा ने। लेवई छत्तीसगढ़ से गुलाबदास मानिकपुरी, राजादास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी ने। भोला कॉलोनी धरौड़ा जिला करनाल हरियाणा से ब्रिजेंद्र कुमार जयजान, कांता रानी, गुंजन, साहिल और वाणी जयजान ने। बुरसुंदा छत्तीसगढ़ से भगवानी सेन, संतोषी सेन, चिराग सेन और गजेंद्र सेन ने। बाजार रोड मुंगिसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुन्निशा, सबिस्ता मोहम्मद, नसीब पलक लुबना और यश मंसूरी ने। वड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा ने। बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन।

मध्य प्रदेश से विनोद मुढ़त, नेहा जैन, दीपक मयंक मुढ़त और चेतन नाहटा ने, अकोट से विनायक बेंडे, श्रीमती मंगला बेंडे, विजय शुभम बेंडे, झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीता भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया ने, मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला आरती गौरी और ओम कुमार सुरलकर ने, पद्मा टॉकेट नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन साह, पल्लवी शाह, प्रखर साह, कुशल साह, नीति साह, सुरभि साह, अश्वनी शाह, मंगलाबेन साह और राजेंद्र जी साह ने, गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार ने, गुजरात पाटन से धीरज बी रब्बारी ने, गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला राठौड़ और विशाल साथी निशानी, मिठीमुड़ा दुर्ग चौक रायगढ़ से गेंदूलाल श्रीवास, कौशल श्रीवास, कृष्ण कुमार यादव और गेंदू भाई ने, गुड़िया मौजे उस्तू से प्रदीप कुमार मंडल, आशीष मंडल, कुंदन मंडल, करीना कुमारी, पूजा कुमारी और आरती कुमारी ने, इंद्रप्रस्थ सदन रुद्री जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से चंद्रकांत सीमा साहू, सूर्यकांत राकेश साहू, शुभम सावित्री साहू और शिखा साथी सेफाली ने, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने। आप सभी श्रोताओं के फरमाइश पर आइए सुनते हैं फिल्म एक विलन का ये गीत। आवाज़ है अरिजीत सिंह का, संगीत और गीत है मिथुन की।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश और आपके साथ हूँ मैं आपकी रेडियो साथी जयमाला। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में फिल्म लोफर का ये गीत। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस गीत के लिए हमें फरमाइश की है चनौरा जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से बनवारीलाल कुशवाहा, मंजुलता कुशवाहा, राम और श्याम, रवि, आर्यन, रंजीत, रामानंद कुशवाहा ने। ग्राम लोहिड़ी जिला महोबा बुंदेलखंड यूपी से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र, अरविंद, रागिनी, रिया, रेणु, दिव्यांशी, आराधना, रोनिका यादव, चंद्रेश गोहर, सुनील पाठक ने। हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैजल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा प्रवीण ने। MLB रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना पप्पी, किरण खुराना, लव्या आरव खुराना, SK पप्पी ने। मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से दिलशाद हुसैन, फातिमा सोगरा, वकार हैदर, कनीत, सकीना, हसीना दिलशाद, वशीम फातिमा ने। मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़ ने। ऊंचे गांव नांदेड़ से देवानंद शिंदे पाटिल ने। भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, श्रीमती अर्चना जोशी, हरविंदर सिंह चावला, श्रीमती बानी चावला, लोकेश जोशी, पायल जोशी, वैदेही जोशी, कुमारी अंकिता जोशी ने। बीड शहर महाराष्ट्र से पोपटराव कुलथे, हनुमंत कुलथे और प्रथमेश कुलथे ने। हिंगोली महाराष्ट्र से साहजी बुड़के, श्रीमती नंदा बुड़के, हनुमान बुड़के, उत्तम जमदाड़े ने। मंजरू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना MP से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक ने। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, पूजा परिहार ने। सिद्धार्थनगर दरियापुर बावली से गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले और अशोक येले ने। मदरसा गेट भावपुर मड़ियाहू जौनपुर से इरशाद अहमद अंसारी, कमरान इरशाद, अरमान इरशाद, नवेद इरशाद, अंजरा तबस्सुम। रायपुर अनई जिला बनारस से मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी, नौरीन अंसारी, आफिया परवीन ने। शफीदो सिटी हरियाणा से नानक खन्ना, चंचल खन्ना, लवली खन्ना, रजत खन्ना, लव खन्ना और कुश ने। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर ने। पल्लारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन और पराग टेलर ने। आप सभी श्रोताओं के फरमाइश पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।

इस सुहाने से गीत के बाद बढ़ते हैं कार्यक्रम में अगले गीत की ओर, जिसे हमने लिया है फिल्म जीवन मृत्यु से। आवाजें हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की, गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस गीत के लिए हमें फरमाइश की है मुजफ्फरपुर बिहार से राजू कुमार, बिट्टू कुमार, अर्चना कुमारी, कल्पना कुमारी, मुन्नी कुमारी, चांदनी कुमारी और नंदनी कुमारी ने। पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा ने। दयानंद भवानीपेठ सोलापुर महाराष्ट्र से विष्णु मस्कीन, रितिका वाणी, आरव चंद्रकला, काशीनाथ, गणेश, संगीता, आरोही और प्रियांशी ने। रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से विजय सिंह माहूबिया, कविता माहूबिया और पेंटर बाबू ने। तमाशा

उसी आवाजें हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की, गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस गीत के लिए हमें फरमाइश की है मुजफ्फरपुर बिहार से राजू कुमार, बिट्टू कुमार, अर्चना कुमारी, कल्पना कुमारी, मुन्नी कुमारी, चांदनी कुमारी और नंदनी कुमारी ने। पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा ने। दयानंद भवानीपेट सोलापुर महाराष्ट्र से विष्णु मस्कीन, रितिका वाणी, आरव चंद्रकला, काशीनाथ, गणेश, संगीता, आरोही और प्रियांशी ने। रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से विजय सिंह महोबिया, कविता महोबिया और पेंटर बाबू ने। तमासा रोड हदगांव महाराष्ट्र से ओम गायकवाड़, आविष्कार गायकवाड़, अनामिका गायकवाड़ और प्रणीता गायकवाड़ ने। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमे सिंगरौल, नेहा और वानिया सिंगरौल ने। बेलाडीला बस्तर छत्तीसगढ़ से शिव प्रसाद देवदास, मोहित कुमार देवदास, ओमिन उत्तरा, प्रमीला यमुना, जमुना कुमारी, अंजू मंजू और युवती देवदास ने। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला से रवि कुमार राहुल, रणजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल ने। जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से भेरूलाल वाकतरिया धाकड़ ने, भोला वाकतरिया, प्रवीण रियांश और प्रतीक वाकतरिया ने। कुंभारगली श्रीरामपुर से अशोक डाले, सविता डेले, अनिकेत डेले, रोहिणी डेले, ऋषिकेश डेल, जीविका बल, सानिका डेल, पूनावली पुणे से अजय सोनवनी, करिश्मा सोनवनी, अविका सोनवनी और विशाखा सोनवनी ने। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किशु ताशु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद, बोहड़ागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत, गुड्डी भगत ने। मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, रसीद वारसी, अनम अब्बासी ने, सेहनाज अब्बासी और यसफ अब्बासी ने। पतरोड़ा तहसील अनूपगढ़ राजस्थान से मंगल जनागल, श्रीमती रोशनी जनागल, अंकुर इंदु, डॉक्टर सुनील जनागल ने। गांव फ्रांसी जिला हिसार से राजकुमार डुड्डी, प्रमोद कुमार डुड्डी, पुष्पेंद्र कुमार डुड्डी ने। आप सभी श्रोताओं के फरमाइश पर आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश आकाशवाणी की अंबिकापुर केंद्र से। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये आखिरी नगमा फिल्म सावरिया से। आवाज़ है शान के, गीतकार है समीर और संगीतकार है संजय लीला भंसाली। इस गीत के लिए हमें फरमाइश की है नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिठा अलका मिठा ने, कुंडलेश्वर वार्ड खंडवा से योगेश गुजराती रेखा गुजराती और अभय गुजराती ने, रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से विजय माहोबिया कविता माहोबिया विशाल विवेक सोनू मोनू रानू सपना शिवी और सलोनी ने, वाराणसी से अरुण कुमार मालवी, जिला खरगोन सनावन मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा अर्चना वर्मा अनुज वर्मा आयुषी वर्मा रमेश चंद्र वर्मा शेख मूसा भाईजान भाई राजकुमार बोड़ाना, और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी रोहित और ऋतु मुकेश जगताप ने। आप सभी श्रोताओं के फरमाइश पर आइए सुनते हैं ये गीत।

0: तो श्रोताओं, अपनी पसंद के गीत सुनने के लिए हमें अपनी फरमाइश भेजते रहें कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश में। कार्यक्रम से दीजिए इजाजत अपने रेडियो साथी जयमाला को। नमस्कार। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या।
1: साथ मैं विशाल शर्मा। सरकार ने कहा, सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9,000 लोगों की मौत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
2: India's position on the Indus Waters Treaty.
3: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पहले की तरह स्पष्ट है। पाकिस्तान के लगातार सीमा पार आतंकवाद को मदद देने के जवाब में सिंधु जल संधि को रोक दिया गया था। पाकिस्तान को विश्वसनीय तरीके से सीमा पार आतंकवाद को मदद देना बंद करना पड़ेगा।
1: तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं।
2: India's development assistance.
3: बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे।
2: तीस्ता इशू।
1: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तु निर्यात में लगभग 15% और सेवा निर्यात में 10-11% की वृद्धि का अनुमान है। श्री गोयल ने कहा कि सरकार की निर्यात रणनीति में प्रत्येक राज्य, जिले और उद्योग क्षेत्र को समान महत्व दिया जा रहा है। श्री गोयल ने कहा कि 38 विकसित देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों ने भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोले हैं। उन्होंने कहा कि भारत के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी को बढ़ाने में दुनिया भर में रुचि बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6-8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में

0: सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
1: प्राइम मिनिस्टर विल आल्सो बी विजिटिंग।
2: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान महत्वपूर्ण खनिज, साइबर सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला, उभरती प्रौद्योगिकी और अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। श्री मोदी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पिछले 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की ये पहली यात्रा होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मिले इन रक्षा खरीद प्रस्तावों से सेना, नौसेना और वायुसेना की लड़ाकू क्षमता बढ़ेगी। इसके अलावा आज के दौर में बदलती सुरक्षा चुनौतियों को बेहतर ढंग से सामना करने में भी मदद मिलेगी। भारतीय सेना के लिए एंटी ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली आकाश तरंग खरीद को मंजूरी दी गई है, जो भारतीय सेना को दुश्मन के ड्रोन से प्रभावी सुरक्षा देगी। इसके अलावा मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली और जेट कामिकाजे ड्रोन प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। वहीं भारतीय नौसेना के लिए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, जहाज से संचालित मानव रहित हवाई प्रणाली और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम के लिए भूमि आधारित परीक्षण केंद्र शामिल है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के लिए अधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने वाले फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म और अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को सतर्क रहने और किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में सलाह देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि 16वें वित्त आयोग ने पंचायतों के लिए 80% मूल अनुदान और 20% प्रदर्शन आधारित अनुदान प्रस्तावित किए हैं।
4: 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक राज्यों में कैसे तैयारी करें, कैसे परफॉर्मेंस ग्रांट का पूरा लाभ उठा सके, सभी बिंदुओं पर चर्चा करके सभी राज्यों को उसके लिए तैयार करने के लिए आज की यह कार्यशाला थी। 73वें संविधान संशोधन के तहत ये राज्यों का विषय है और राज्यों के सहयोग से ही हम पंचायतों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की समस्याओं के आकलन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश दिया है। श्री चौहान ने कहा कि तोतापुरी आम उत्पादकों की आय और आजीविका की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इस मामले में मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है। इस बीच मंत्रालय के अधिकारियों ने व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू किए जाने के नोटिस के बाद आज मेटा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मेटा को इस संबंध में विस्तृत स्पष्टीकरण देने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। सरकार ने बैट, बीएमएस, इपोक आई आयन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल एप स्टोर से हटाने का निर्देश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि पत्रकारिता को हमेशा सत्य, ईमानदारी और उच्च पेशेवर मानकों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। नई दिल्ली में ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक पत्रिका के 80वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक और उसकी सहयोग

0: की पत्रिका द मदरलैंड संविधान और लोकतंत्र की आवाज थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना की निंदा की है। संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि ये घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे पूरे समाज तथा भगवान राम के भक्तों की आस्था को गहरी ठेस पहुंची है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कश्मीर घाटी में अमरनाथ यात्रा के पहले दिन कुल 12,168 श्रद्धालुओं ने अमरनाथ जी गुफा में शिव की पूजा अर्चना की। कड़ी सुरक्षा और व्यवस्थाओं के बीच तीर्थयात्रियों ने गुफा के दर्शन किए। इससे पहले अधिकारियों ने तीर्थयात्रियों को सलाह जारी कर कहा था कि वे केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा करें। इस बीच तीर्थयात्रियों का दूसरा जत्था बालतल और नुनवान बेस कैंप पहुंच चुका है और कल सुबह तड़के पवित्र गुफा की ओर रवाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी बालूतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री बालूतरा के पचपदरा में देश की पहली हरित क्षेत्र आधारित एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के सांणंद में भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने आज 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न जिलों के मीडिया और संचार अधिकारियों का दूसरा सम्मेलन आयोजित किया। इसमें 260 से अधिक अधिकारी शामिल हुए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग का हर निर्णय संविधान, चुनाव कानूनों और समय समय पर जारी लिखित निर्देशों के आधार पर पूरी पारदर्शिता के साथ लिया जाता है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 262 अंक बढ़कर 77,764 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 95 अंक की बढ़त के साथ 24,271 दर्ज हुआ। दक्षिण पश्चिम मानसून आज गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के कुछ और हिस्सों तथा मध्य प्रदेश के शेष भागों में आगे बढ़ गया। मौसम विभाग ने कल गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले दो दिन तेज बारिश हो सकती है। अगले दो से तीन दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और सिक्किम में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। इस बीच महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी बारिश हुई। हमारे मुंबई संवाददाता से और जानकारी।
1: आज महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश हुई, जिसमें तटीय इलाकों में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और कोल्हापुर जिलों की नदियों में जलस्तर बढ़ गया है। IMD के अनुसार कल से 7 जुलाई तक राज्य में बारिश और तेज होने की संभावना है। कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जबकि कोंकण और नजदीक के घाट इलाकों में कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आंधी तूफान की भी संभावना है। IMD ने मछुआरों को 7 जुलाई तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है। इस बीच एहतियात के तौर पर NDRF की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में बचाव दल तैनात कर दिए हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: फ्रांस में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के दौरान पिछले सप्ताह मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। 22 से 28 जून के बीच लगभग 9,000 लोगों की मौत हुई है। ये पिछले सप्ताह की तुलना में 29% अधिक है। पेरिस में सबसे अधिक मौतें हुई। अस्पतालों में निर्जलीकरण, दिल का दौरा, गुर्दे की जटिलताओं और अन्य लू से संबंधित बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या में भारी वृद्धि देखी गई। कांगो में इबोला वायरस के इलाज के लिए दो संभावित दवाओं का क्लिनिकल परीक्षण शुरू हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने बताया कि इस परीक्षण में पहले मरीज को शामिल कर लिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मौजूदा प्रकोप में अब तक 438 लोगों की मौत हो चुकी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डे से होगा। राउंड ऑफ 32 का अंतिम मैच कल सुबह 7 बजे घाना और कोलंबिया के बीच खेला जाएगा। इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश

किया। स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराया, पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से, जबकि स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कहा सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित, पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9,000 लोगों की मौत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 9:15 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म सालीमार के इस गीत के साथ। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं आर डी बर्मन।

कार्यक्रम चित्रपट संगीत में अब सुनिए फिल्म कोरा कागज का ये गीत किशोर कुमार की आवाज में। संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी।

कार्यक्रम चित्रपट संगीत में अब सुनिए आशा भोसले और उदित नारायण की आवाज़ में फिल्म प्यार तो होना ही था का ये गीत। गीतकार हैं समीर अंजान और संगीतकार हैं जतिन ललित।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म प्यार तो होना ही था का ये गीत। आवाजें थी आशा भोसले और उदित नारायण की। गीतकार थे समीर और संगीतकार थे जतिन ललित। इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रपट संगीत आज यहीं तक। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 9:30 होने को है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम ईमेल की गूंज। कार्यक्रम में आज आपके साथ हूँ आपकी रेडियो साथी जयमाला। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सुनते हैं कविता कृष्णमूर्ति और शाबिर कुमार की आवाज़ में फिल्म 16 और सबनम का ये गीत। गीतकार हैं अनजान और संगीतकार हैं बप्पी लहरी। इस गीत के लिए हमें फरमाइश की है टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और टी छाबड़ा ने। लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, राजादास मानिकपुरी, रानी मानिकपुरी ने। शब्बीर हुसैन, शहजाद हुसैन, मुज्जू बाबा, आयजा अनम, मुदस्सिर हुसैन ने। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम शाबिर राही, महराज जहां, आज़ाद नगर, लक्षर, हरिद्वार, उत्तराखंड से। सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा और सोनम वर्मा ने। प्रेम मानी नाग, पूनम रानी सरकार, सीमा देवी ठाकुर, मुकाम लाल बाग, जगदलपुर बस्तर छत्तीसगढ़ से। जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून ने। रामगंज खंडवा की विजय सिंह माहोबिया, कविता माहोबिया, सपना सीवी सलोनी, ईशु बाबा और पेंटर बाबू ने। अकोला से सुयस राय, अलका राय, दरियापुर बाबली से गजानन येले, नवदीप येले और विश्वदीप येले ने। आप सभी श्रोताओं के फरमाइश पर आइए सुनते हैं ये गीत।

कार्यक्रम ईमेल की गूंज में अगला मेल हमें किया है ग्राम बगबुड़वा पथरिया छत्तीसगढ़ से नरेन नेताम और कुसुम नेताम ने। सतेंद्र कुमार चंसौलिया आदर्श सार्थक अलौकिक चंसौलिया ग्राम पंजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा कपिल छीपा और पूजा परिहार ने। जे के परमार गांधीनगर गुजरात से, चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन प्रभा देवी सेन लक्की विक्की रविंद्र रौनक सेन ने। पार्थ रेडियो क्लब छत्रपति संभाजीनगर से राजेश शाबले पाटिल राजदीप राजेश राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश ने। मीरा सिंह ज्योति सिंह अनामिका सिंह समस्तीपुर बिहार से। जिला नांदेड़ एताला महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल गणेशलाल जायसवाल शुभम प्रसाद अर्णव दुर्गेश्वरी राखी और तृप्ति जायसवाल ने। रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा सोमनाथ कालियानी सुनील पाठक कमल पाठक दीपिका मल्होत्रा गाव्या मल्होत्रा भाई सुच्चा सिंह पाठक अनारकली बजराव जंगराव पंजाब से। सहारनपुर से आशा नारंग सुरेश नारंग और सोनाली पाठक ने।

बन्ने बुजुर्ग तहसील पलेरा जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा आशीष विश्वकर्मा ने, लक्षणपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू पंकज साहू और तिरुपति साहू ने, रायपुर से विनोद वंडलकर वीणा और विविधा वंडलकर ने। आप सभी श्रोताओं के फरमाइश पर आइए सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म रोटी का ये गीत। गीतकार है आनंद बख्शी और संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: राहुल, तुम्हारी नई दुकान का कलेक्शन तो जबरदस्त है, पर दुकान में सन्नाटा क्यों है?
1: वही तो परेशानी है रिया। कपड़े तो बेस्ट हैं, पर पूरे अंबिकापुर को पता कैसे चले?
0: अरे तो शहर के सबसे बड़े लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करो ना, 230-600।
1: क्या 230-600?
0: हाँ, आकाशवाणी अंबिकापुर, यहाँ एक विज्ञापन और तुम्हारी दुकान पर ग्राहकों की लाइन।
1: पक्का?
0: हाँ, बस कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600। अब अपनी दुकान को बनाओ शहर की शान।
1: आकाशवाणी अंबिकापुर, सफलता की पक्की गूंज।
2: कार्यक्रम ईमेल की गूंज में आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम में अब सुनिए फिल्म प्यासा सावन का ये गीत, लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाजों में। गीतकार है संतोष आनंद और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस गीत के लिए हमें फरमाइश की है अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला श्याम कुंवर, चीनू आसमा, टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई से, कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रणजीत कौर मन्नत, गुरकिरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल ने, और एन सिटी नागपुर से विट्ठल जाधव, अनसुईया जाधव ने, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर, धनंजय कटनकर, सरोज चौक अमरावती से कमरुल्ला ठेकेदार और नसीम बेगम ने, मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज गिरडी झारखंड से, वी पूनम नायडू, साजन के मास्टर, शिवांशु ऋषु, वी चैतन्य, गुर्गेश कुमार, अक्षय अभिषेक नायडू, धनोरा बस्तर छत्तीसगढ़ से, नंदकुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू ज्योति ठाकुर, ग्राम चरौदा बाजार नवापारा अभ्यारण जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से, प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नवीन कुमार साहू, युवराज साहू, ग्राम धूरा बांधा भाटापारा से, देवीगंज रोड अंबिकापुर से राजकुमार नेभवानी, संगीता आकाश आयुषी सागर यशी हनी पूजा और सीता ने, बंगाली पंजा नागपुर से प्रकाश रंभाणे, भारती रंभाणे, जानवी रंभाणे, वैष्णवी और हर्षल रंभाणे ने, संबलपुर कांकेर से फागुराव यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव ने, ग्राम सिंधवा बाजार पारा जिला बलरामपुर छत्तीसगढ़ से धनेश्वर निषाद, दीपिका निषाद, शिवांश निषाद, दीपिका निषाद, राम भरोस पैकरा, नरेश सिंह ने, मिट्टू मुड़ा दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास और गेंदू भाई ने, मछली गोदाम कैंदी मुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह, ऋषभ सिंह, प्रियंका, पूजा सिंह, लीलू रितु सिंह ने, कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी, ऋषभ मरावी, लोरमी ग्राम चचेड़ी से। आप सभी श्रोताओं के फरमाइश पर आइए सुनते हैं ये गीत।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम ईमेल की गूंज। कार्यक्रम में अगला मेल हमें किया है दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से बसंत कुमार सिन्हा, श्रीमती रेखा देवी, अजय कुमार गुप्ता, रिम्मी, तनुश्री गुप्ता, अन्विका और पीहरा बाजार झुमरी तलैया गिरडी से अभय कुमार सनातनी, शिवानी कुमारी, प्रियंका कुमारी साहू, गुड्डू कुमार गुप्ता, मुन्नी देवी, जयप्रकाश साव, रिया, जिया, तुसी, आयुषी, अनिरुद्ध बाबू और बसंत लाल साव ने। वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद शादिक, मुस्ताक अहमद, मोहम्मद अल्तमश खत्री, मोहम्मद शादाब खत्री ने। मेन रोड तेलाहारा से प्रकाश पोहराकर, नर्मदा पोहराकर, कुमारी सुजाता पोहराकर ने। मामूलीवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान तांडे, बसंतराव भोज ने, पी एस नाहवकर ने, के पुष्पा देवी, कृष्णा कुमार, आकाशनगर बस्तर छत्तीसगढ़ से। आप सभी श्रोताओं के फरमाइश पर आइए सुनते हैं फिल्म दीवार का ये गीत आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ों में। गीतकार हैं शाहिर लुधियानवी और संगीतकार हैं आरडी बर्मन।
1: हाँ
2: या चुप रहूं
1: ना
2: दिल में मेरे आज क्या है।

आशा भोसले और किशोर कुमार की गाय इसी गीत के साथ कार्यक्रम ईमेल की गूंज आज यहीं तक। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 10 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम राग प्रधान। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म परिचय के इस गीत के साथ। आवाजें हैं लता मंगेशकर और भूपेंद्र की। गीतकार हैं गुलजार और संगीतकार हैं आरडी बर्मन। ये गीत आधारित है राग मारू बिहाग पर। राग मारू बिहाग हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक अत्यंत मधुर, गंभीर और भावपूर्ण राग है। इसमें राग बिहाग की मधुरता और मारवा अंग का हल्का स्पर्श मिलता है। वैसे तो इसकी सभी विशेषताएं बिहाग से मिलती हैं, किंतु बिहाग और मारू बिहाग में मुख्य अंतर है कि बिहाग में तीव्र मध्यम का प्रयोग यदा कदा होता है, किंतु मारू बिहाग में तीव्र मध्यम मुख्य स्वर होता है और शुद्ध मध्यम का प्रयोग यदा कदा होता है। यह राग शांति, माधुर्य, भक्ति और कोमल श्रृंगार का सुंदर वातावरण निर्मित करता है। इसकी आलाप और बंदिशें अत्यंत आकर्षक होती हैं।

कार्यक्रम राग प्रधान में अब सुनिए राग खमास पर आधारित फिल्म बुड्ढा मिल गया का ये गीत। राग खमास हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक अत्यंत लोकप्रिय और मधुर राग है। यह अपनी कोमलता, श्रृंगार रस और भावपूर्ण प्रस्तुति के लिए प्रसिद्ध है। रात्रि का दूसरा पहर इसका गायन समय है। यह खमास थाट से संबंधित सड़द संपूर्ण जाति का रात्रिकालीन राग है। आरोह में ऋषभ वर्जित और शुद्ध निषाद व्यवहार में लाए जाते हैं। अवरोह में कोमल नी का प्रयोग होता है और ये शांत प्रकृति का राग है। राग खमास का प्रयोग ठुमरी, दादरा, टप्पा, भजन और कई उपशास्त्रीय गायन शैलियों में भी व्यापक रूप से किया जाता है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राग प्रधान आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से। कार्यक्रम में आप सुनिए फिल्म बैजू बावरा का ये गीत। ये गीत आधारित है राग मालकौंस पर। राग मालकौंस हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक अत्यंत प्राचीन, गंभीर और ध्यानमय राग है। इसे रात्रि के सबसे प्रभावशाली रागों में माना जाता है। ये भैरवी थाट का राग है। इसमें ऋषभ तथा पंचम स्वर वर्जित हैं। ग, ध, नी, ये तीन स्वर कोमल हैं। इस राग में मध्यम स्वर प्रमुख स्वर है तथा षड्ज को संवादी माना जाता है। ये राग मध्य रात्रि में गाया जाता है। ये प्राचीन और मौलिक राग है।

कार्यक्रम राग प्रधान का अगला गीत पेश है संत तुलसीदास से। ये गीत आधारित है राग जौनपुरी पर। राग जौनपुरी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक अत्यंत लोकप्रिय और भावपूर्ण राग है। ये अपनी करुणा, गंभीर और भक्तिमय प्रकृति के लिए प्रसिद्ध है। इसका गायन समय है दिन का दूसरा पहर। इसकी प्रकृति गंभीर, करुण और भक्तिपूर्ण है। आरोह में ग कोमल का प्रयोग सामान्यतः वर्जित माना जाता है। अवरोह में कोमल ग, कोमल ध और कोमल नी का प्रयोग होता है। शेष स्वर शुद्ध होते हैं। यह राग भाव प्रधान है और आलाप में अत्यंत प्रभावशाली लगता है। भजन, ख्याल तथा उपशास्त्रीय संगीत में भी इसका प्रयोग किया जाता है।

कार्यक्रम राग प्रधान में अब सुनिए फिल्म सीमा का ये गीत। शैलेंद्र गीतकार हैं और आवाज़ है लता मंगेशकर की, और ये गीत आधारित है राग जय जयवंती पर। राग जय जयवंती हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का अत्यंत मधुर, भावपूर्ण और मनोहर राग है। इसमें राग खमास तथा काफ़ी अंग का सुंदर समन्वय मिलता है। यह राग श्रृंगार, करुणा और भक्ति रस की अभिव्यक्ति के लिए प्रसिद्ध है। इस राग का गाने का समय है रात्रि का दूसरा पहर अर्थात मध्य रात्रि। इसकी प्रकृति गंभीर, मधुर एवं भाव प्रधान है। सभी सातों स्वरों का प्रयोग होता है, कोमल ग, कोमल नी तथा शुद्ध ग, शुद्ध नी दोनों का प्रयोग विशेष शैली में किया जाता है। यह मिश्रित स्वर प्रयोग इस राग की प्रमुख पहचान है। इस राग में शुद्ध और कोमल ग तथा नी का संतुलित प्रयोग अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ख्याल, ठुमरी और भजन गायन में इसका विशेष स्थान है। यह राग अत्यंत भाव प्रधान है और आलाप में इसकी सुंदरता विशेष रूप से उभर कर आती है।

कार्यक्रम राग प्रधान में पेश है फिल्म घूंघट का ये गीत, जो आधारित है राग भैरवी पर। राग भैरवी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का अत्यंत प्राचीन, लोकप्रिय और भावपूर्ण राग है। इसे प्रायः किसी संगीत समारोह के समापन पर गाया या बजाया जाता है। यह राग भक्ति, करुणा और शांति का भाव उत्पन्न करता है। कोमल रे, कोमल ग, कोमल ध और कोमल नी का प्रयोग होता है। म और प शुद्ध होते हैं। प्रस्तुति में कभी कभी अन्य स्वरों का अल्प प्रयोग भी किया जाता है, इसीलिए इसे अत्यंत लचीला राग माना जाता है। राग भैरवी का प्रयोग ख्याल, ठुमरी, दादरा, भजन, गजल और लोक संगीत में भी व्यापक रूप से होता है। संगीत समारोह के अंत में भैरवी प्रस्तुत करने की परंपरा बहुत प्रसिद्ध है। यह राग अत्यंत भावपूर्ण और अभिव्यक्तिपूर्ण माना जाता है।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम राग प्रधान आज यहीं तक। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन भावन। कार्यक्रम लेकर मैं हाजिर हूँ आपकी रेडियो साथी जयमाला। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं हरिहरन और साधना सरगम की आवाज़ में फिल्म सपने का ये गीत। गीतकार हैं जावेद अख्तर और संगीतकार हैं एआर रहमान। इस गीत के लिए हमें फरमाइश की है चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लकी विक्की नानू रविंद्र सेन, चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पप्पू छोटू सेन, लता और पूजा सेन ने। पीपरपारा पालचुआ मुंगेली छत्तीसगढ़ से उत्तरा दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, योगिता दिवाकर, नितिन दिवाकर और वंशिका दिवाकर ने। गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले ने। आप सभी श्रोताओं के फरमाइश पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत।

0: चौपाल में नवा कार्यक्रम शुरू हुई सवे रविवार संझा के ठीक 7:30 बजे से।
1: हौ फरमाइशी कार्यक्रम हवे, संगी अपन फरमाइश भेजी और हमन गीत बजाबो।
0: कौन सा गीत?
2: सुघर गीत जैसे ए...

0: बस हमर कार्यक्रम में मेल करी किसानवाणी अंबिकापुर 2026@gmail.com। जुलाई के पहला रविवार से कार्यक्रम शुरू होही।
1: चौपाल फरमाइश।
2: कार्यक्रम मनभावन में अब सुनिए आशा भोसले और सुरेश वाडेकर की आवाज़ों में फिल्म सत्या का ये गीत। गीतकार हैं गुलजार और संगीतकार हैं विशाल भारद्वाज। इस गीत के लिए हमें फरमाइश की है गौरी नगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस, तपस्या और करिश्मा कामले ने। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम शाबिर राही, मेहराज जहां आज़ाद नगर लक्षर हरिद्वार से, धरसीवा से छेंदूलाल यादव, श्रीमती सीता यादव, अर्चना अरुणा यादव, अनुराधा और अल्पना यादव ने। आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत।

0: मेरा गाना चला तो डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला तो डीजे वाले बाबू
1: बेबी को बेस पसंद है
2: इंस्टा फरमाइश आपकी पसंद मनभावन और ईमेल की गूंज के बाद हम आपके लिए लेकर आए हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का एक और कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश। इसके लिए आपको करना है ये कि आकाशवाणी अंबिकापुर के इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज पर पोस्ट किए गए पोस्टर पर अपनी फरमाइश नाम और पता कमेंट सेक्शन में लिखना है।

0: बस हो गया आपका काम खत्म और हमारा शुरू। फिर हम शामिल करेंगे आपको कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश में, जिसे आप सुनेंगे हर रात 8:00 से 8:45 तक। तो देर किस बात की, आज ही अपने पसंदीदा गीत की फरमाइश भेजें और सुने कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश।
1: बेबी को बेस पसंद है।
2: कार्यक्रम मनभावन में अब सुनिए मोहित चौहान की आवाज़ में फिल्म जब वी मेट का ये गीत। गीतकार हैं इरशाद कामिल और संगीतकार हैं प्रीतम। इस गीत के लिए हमें फरमाइश की है चार मीनार चौक गंडई पंडरिया से दरिया नामल, अनीता मोटवानी, राजेश रेशम, अलिल राज मोटवानी, झूलेलाल चौक तिल्दा से हरीश, कमल, सेतपाल, भूमिका और सुशीला ने। जतुका किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नास, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, फिरोज आलम और चांदनी इन्नाज ने। मेहरानगर उमरखेर महाराष्ट्र से अभिजीत गम्हाड़कर राही, श्रीमती सरिता गम्हाड़कर, प्रिंस एकांश गम्हाड़कर, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गम्हाड़कर, प्रणीता गम्हाड़कर, अर्जुन गम्हाड़कर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली, शैलेश गम्हाड़कर, सुमित गम्हाड़कर और कुमारी ध्वनि गम्हाड़कर परी ने। आप सभी श्रोताओं के फरमाइश पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन भावन। कार्यक्रम में आप सुनिए लकी अली और राम्या की आवाज में फिल्म कहो ना प्यार है का ये गीत। गीतकार हैं इब्राहिम अश्क और संगीतकार हैं राजेश रोशन। इस गीत के लिए हमें फरमाइश की है मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा सारदा, दामिनी वर्मा ने। अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रेयांश ठाकुर और गुड़िया ठाकुर ने। देवीगंज रोड अंबिकापुर से राजकुमार नेभवानी, संगीता नेभवानी, आकाश नेभवानी, पप्पू जायसवाल, सुमैया राजवाड़े, पूजा और सीता ने। साथ ही सागर, आयुषी और हनी ने। कन्या परिसर रोड अंबिकापुर से राखी श्रीवास्तव, महिमा श्रीवास्तव, नितिन श्रीवास्तव, सोनू वंदना ने। छत्तीसगढ़ भाटापाड़ा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और जावेंद्र कुमार वर्मा ने। आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर लीजिए पेश है कार्यक्रम का ये अगला गीत।

फिल्म कहो ना प्यार है के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम मन भावन आज यहीं तक। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी। तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमत के आधार पर चलती हैं।
1: India's development assistance.
2: बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे।
0: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नागरिक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तु निर्यात में लगभग 15% और सेवा निर्यात में 10-11% की वृद्धि का अनुमान है। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। 16वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 4,35,236 करोड़ रुपए की अनुशंसा की। ये 15वें वित्त आयोग की तुलना में लगभग 84% अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
3: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्याकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इस मामले में मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है। इस बीच मंत्रालय के अधिकारियों ने व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू किए जाने के नोटिस के बाद आज मेटा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सरकार ने बैट, बीएमएस, इपोक आईआईएन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। यह कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन ऐप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालताल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

इन सभा संपन्न होती है। कल प्रातः 5:51 पर अपनी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।